107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, चैत्र मास की आज गुरुवार है, चैत्र मास की 7वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 28 मई 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव पुत्र कृष्ण जो पापों और दुखों को दूर करने वाले हैं, परमात्मा हैं जो आत्मसमर्पण करने वालों के कष्टों का नाश करने वाले हैं, गोविंद को कोटि कोटि प्रणाम है। इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। पुष्पांजलि का प्रथम पुष्प अर्पित है प्रथमेश्वर श्री गणेश के चरणों में।

0: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला। गो अज्ञान के अंधकार को दर्शाता है जबकि रू अज्ञान के को दूर करने वाले को इंगित करता है। गुरु ब्रह्मा यानी कि सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी कि संरक्षक और महेश्वर अर्थात शिव संहारक की दिव्य त्रिमूर्ति का प्रतीक है। गुरु केवल एक मानव शिक्षक नहीं बल्कि उन्हें परम ब्रह्म का साक्षात अवतार माना जाता है जो सभी द्वैत से परे परम वास्तविकता है। इसीलिए तो गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है।
1: श्रम पर जन्यता

रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम श्रीराम भद्र श्रीरामचन्द्र इनके अनेक स्वरूप श्री रघुनाथ ऐसे जिनके कई नाम हैं, माँ सीता जी के स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी का हम सब वंदन करते हैं।

आपकी शरणागति में वह शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। विश्वास रखिए, जो आपके पास है वह उनकी कृपा है, और जो आपको नहीं मिला उसमें उनकी कोई ना कोई बड़ी योजना छिपी होगी।

सारा का भाव है, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सारा, सदवन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रेम प्रेम क्या होता है ये मीरा को सुनो तो जानो, ब्रज के विरह से पूछो या माधव के प्रेम में लीन होकर जानो।

राधा तो बड़भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे मध्यन। हमारी राधा रानी विषभान दुलारी संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हैं, क्योंकि त्रिलोक के स्वामी माधव स्वयं आपका आलिंगन करते हैं।

धन अकिंचन का श्री कृष्ण शरणम ममः, लक्ष्य जीवन का श्री कृष्ण शरणम ममः, दीन दुखियों का निर्बल का दृढ़ सहारा श्री कृष्ण शरणम ममः।

प्रसन्नता का सबसे सरल मार्ग समर्पण है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है और मन शांत हो जाता है। आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम आकांक्षा के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

भौरे हित हरि सम नहीं कोई, एहि अवसर सहाय सोई होई। प्रभु मेरे कल्याण के लिए आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार ईश्वर हम सब की मनोकामनाएं हम सब का मंगल करे, इसी भावना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शहर की म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो सुन रहे हैं आप 102.2 FM।

जी हाँ, सुबह के बज चुके हैं पूरे सात, कनेक्ट है आप शहर के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, और सबसे पहले आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बनाने आज की इस सुबह को और भी खास, जी हाँ, हाजिर हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ शहर की हलचल से लेकर देश दुनिया की खास खबरों को पहुंचाने आप तक आ चुके हैं फिलहाल अभी यहाँ पर हम। और शुरुआत करें बेहतरीन से गाने के साथ आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम की शुरुआत।

जी हाँ, 28 मई गुरुवार का दिन, सुबह के 7:06 का वक्त यहाँ पर हो रहा है पूरा। और मई का आखिरी वीक भी चल रहा है, इसके साथ और क्या चल रहा है, 9 तपा चल रहे हैं, जिसका असर हम देख सकते हैं। रात में कैसी उमस भरी गर्मी हो रही थी, मौसम सुबह का थोड़ा सा कूल हो चुका है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों की मान्यता है कि ये जो 9 तपा होते हैं, जितना तपता है उतना ही बरसता है। तो ऐसा कहना हमारे बड़े बुजुर्गों का, जिसके पीछे एक सकारात्मक सोच छुपी हुई कि अच्छे मानसून को लेकर फिलहाल अभी हम यहाँ आज ब्रॉडकास्ट होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपसे शेयर कर लें, जो रेनबो कानपुर से ब्रॉडकास्ट होने वाले, एंजॉय करने वाले हैं आप। सुबह 8:30 पर होंगे कुछ नगमे खास, सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम के साथ 9 बजे हाजिर होंगे हम इंटरेस्टिंग बातों और एनर्जेटिक सॉन्ग्स के साथ रस बहार प्रोग्राम में। और विविध रंगों से सजती है हर दिन विविधा, आज बारी है विविधा में लोक रंग की। समय होगा सुबह 9:45 का। और आपका मोस्ट फेवरेट शो हम नवा दिन में 11 बजे लेकर आएंगे, होंगे महिमा और सीमा आपके साथ में। और महिमा के साथ ही आज के म्यूजिक कार शो एंजॉय करेंगे, दिन में 3 बजे से होंगी गर्मी से रिलेटेड कुछ खास बातें। तो ये थी जानकारी रेनबो कानपुर से ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले प्रोग्राम से। कनेक्ट रहिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू और 102.2 की फ्रिक्वेंसी में हमारे साथ सभी प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के लिए। फिलहाल अभी आपके लिए एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक प्ले करने के लिए एकदम है तैयार। तो बस कनेक्ट रहिए आज के गुड मॉर्निंग कानपुर शो पर। सुबह के 7:08 का वक्त हो रहा है, पूरा बढ़ते हैं, बढ़ते हुए वक्त के साथ हम भी आगे पॉजिटिव

जी हाँ, धीरे धीरे से इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, हर दिन की शुरुआत अगर सकारात्मक सोच और अच्छी ऊर्जा से हो तो पूरा दिन खूबसूरत लगने लगता है। तो क्या है आज की पॉजिटिव वाइब? ये प्रेरक विचार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कि जिंदगी किसी एक बड़ी छलांग का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश है। जब हम रोज़ थोड़ा सीखते हैं, संभलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वही छोटे छोटे कदम हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए, छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, क्योंकि लगातार बढ़ते कदम ही बड़ी सफलता की पहचान बनाते हैं। नए दिन की शुरुआत इसी पॉजिटिव वाइब के साथ।

और क्या कह रहे हैं आज के सोशल मीडिया संदेश खास आपके लिए। और ये संदेश है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स हैंडल पर ये शेयर किया है कि गर्मी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण संदेश ये साझा किया है सभी के साथ में देश के नागरिकों से। जब देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से कई कठिनाइयां बढ़ गई हैं, तो जितनी अधिक सावधानी बरत सकें अवश्य बरतें, खुद को हाइड्रेट रखें, घर से निकलते समय पानी ज़रूर साथ रखें। ऐसे में जो है आपकी संवेदनशीलता और भी सहारा बन जाती है जब किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी की ज़रूरत होती है और आप देते हैं। और ऐसे लोगों की सराहना भी की है उन्होंने कि अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में जो लोग जल रखते हैं ताकि कोई भी अपनी प्यास बुझा सके। तो प्रधानमंत्री जी के इस संदेश के साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कुछ बेहद ज़रूरी बातें और सावधानियां बताई गई हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। जब तक ज़रूरी ना हो 12 से 4 के बीच यानी कड़ी दोपहर में धूप में बाहर ना निकलें, हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्र पहनें, सिर को ढकें। इस मौसम में अपने आसपास बेजुबान पक्षियों और जानवरों के लिए थोड़ा सा पानी ज़रूर रखें। अच्छा, इसी के साथ ही एक और संदेश हम आपके साथ में यहाँ शेयर करेंगे और ये संदेश है

एक्स हैंडल पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है एचपीवी वैक्सीन को लेकर। एचपीवी वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो 14 वर्ष की बच्चियों को ये सुरक्षा कवच अवश्य दिलाएं। ये वैक्सीन जो है किशोरों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक प्रभावी कदम है। तो यदि सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ खास अपडेट, जहां सिर्फ ट्रेंड्स ही नहीं चलते हैं, संवेदनशील और ज़रूरी संदेश भी आपके साथ साझा किए जाते हैं, तो बस अगली अपडेट के लिए बने रहना होगा आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में हमारे साथ। फिलहाल सुबह के 7:24 का वक्त हो रहा है पूरा, और बढ़ते हैं यहाँ पे अगले गाने के साथ। हम भी इस प्रोग्राम में आगे सुनवाते हैं एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आपको।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शहर के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो 102.2 पर, और रेनबो से इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आज सुबह, जी हाँ सुबह से 7 से 8 का गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम सीमा के साथ। और अब आपको लेकर चलते हैं अतीत के आईने में, देखते हैं क्या खास है आज का दिन, क्या ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई आज के दिन से। 28 मई 1884 में आज ही के दिन नासिक में जन्म हुआ विनायक दामोदर सावरकर का। वे एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 1908 की जासूसी उपन्यास जेम्स पॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म आज ही के दिन लंदन में हुआ था। अंतरिक्ष का वो सफर जिसने बंदरों को बनाया स्पेस हीरो, जी हाँ आज ही के दिन साल 1959 में आज ही अमेरिका ने एबल व बेकर नामक दो बंदरों को अंतरिक्ष भेजा था, जिन्होंने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। तो अतीत कहने में ये थी आज के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं 28 मई से जुड़ी हुई, और आगे नजर डालेंगे देश विदेश की ताजा खबरों पर। अभी आपके लिए खूबसूरत सा ट्रैक यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं।

और अब आइए रुख करते हैं देश विदेश की ताज़ा खबरों पर। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ। इसके साथ ही असम देश का ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें, इस पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं और पोर्टल का एड्रेस है www.awards.gov.in के माध्यम से आप इस पोर्टल पर 5 जुलाई तक अपने आवेदन भेज सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 28 और 29 मई यानी आज और कल नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जहां नई तकनीक, वैज्ञानिक सोच और कृषि नवाचार के माध्यम से खेती को अधिक समृद्धि, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल होगी। इसके साथ ही भारत की कूटनीति को बड़ा मंच मिला है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की हाई लेवल जिमनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में यूरोपीय, पश्चिम एशिया और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों पर मंथन होगा, जिसमें सऊदी अरब भी अहम भागीदारी निभाएगा। तो ये थी देश विदेश से जुड़ी हुई कुछ ताज़ा खबरें, और कुछ खबरें भी आपके लिए यहाँ पर बाकी हैं, लेकर आ रहे हैं बस इस ट्रैक के बाद।

और आइए एक नजर डालते हैं सिटी अपडेट्स पर। क्या है आज सुबह की खास खबरें शहर से जुड़ी हुई? तो यूं तो रात भर वही चहल पहल रही है शहर की सड़कों पर। बकरीद की खासी तैयारियां चल रही थी, शॉपिंग वॉपिंग हो रही थी। और इससे जुड़ी एक खास अपडेट आपके लिए है कि बकरीद के मौके पर आज सुबह 5 बजे से शहर के सड़कों पर डायवर्जन लागू किया गया है। बकरीद की नमाज के मद्देनज़र बड़ी ईदगाह के आसपास सवेरे 5 बजे से ही विशेष डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। सुरक्षा और सुगमता के लिए कई रास्तों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा गया है, लोगों के आवागमन में दिक्कत ना हो, इसलिए ट्रैफिक विभाग ने बजरिया कर्नलगंज पी रोड पर डायवर्जन व्यवस्था की है। और कहाँ रहेगा ये डायवर्जन, ये भी हम आपको बता देते हैं। परेड और लाल इमली चौराहे की तरफ से आने वाले वाहन कर्नलगंज चौराहे से बकरमंडी ढाल नहीं जाएंगे, उन्हें शनि देव तिरहे से होकर जाना होगा। वहीं गोल चौराहे और हैलट से आने वाले वाहन ईदगाह चौराहे आने के बजाय बेना झबर तिराहे से वाया चांदी नर्सिंग होम के रास्ते जा सकेंगे। वहीं पी रोड से आने वाले वाहन रामबाग चौराहे से बजरिया चौराहे जाने के बजाय रामबाग चौराहे ब्रह्मनगर होते हुए जाएंगे। तो ये रूट डायवर्जन नमाज समाप्ति तक लागू रहेगा बकरीद के मौके पर। और क्या खास खबर है शहर से जुड़ी हुई, ये भी हम आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहे हैं। और ये है खास खबर, जी हाँ, आज 114 साल का हो जाएगा IMA कानपुर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कानपुर शाखा गुरुवार को 114वें वर्ष में प्रवेश कर लेगा। देश की सबसे पहली शाखा की शुरुआत 28 मई 1912 को हुई थी। तो ये थी शहर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। फिलहाल अभी एक गाने के साथ प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये बढ़ता हुआ वक्त बढ़ता जा रहा है आगे, इससे पहले ये और आगे बढ़े। एक गाना और इसके बाद में शहर से जुड़ी हुई कुछ खास अपडेट लेकर आएंगे खेल से संबंधित आपके लिए। तो कहीं मत जाइए, बस आज के गुड मॉर्निंग कानपुर में बने रहिए। फिलहाल अभी हमारे साथ

और चलिए खेल से जुड़ी हुई अपडेट आपके साथ यहाँ शेयर कर लेते हैं हम। राष्ट्रीय ताइक्वांडो के लिए खिलाड़ी गए हुए हैं शहर के हल्द्वानी, और ये हमारे खिलाड़ी हैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की 13वीं राष्ट्रीय ओपन क्यों रुंगी और पूम से ताइक्वांडो के लिए जो चैम्पियनशिप चल रही है यहाँ पर शहर के 12 खिलाड़ी हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए हैं, जो 29 से 31 मई तक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पदक के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ ही शहर की प्रतिभा के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, और ये हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं आदर्श मेहरोत्रा। 100 और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीत चुके आदर्श जो है जुलाई में होने वाली नेशनल स्केटिंग चैम्पियनशिप में शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की ओर से होने वाली इस स्पर्धा में देश भर के खिलाड़ियों के बीच वे पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। स्पेशल प्रतिभा के धनी खिलाड़ी अपनी रफ्तार के चलते हमेशा चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 2024 में गुरुवार में हुई स्पेशल नेशनल स्केटिंग चैम्पियनशिप के 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर परिवार और शहर का मान बढ़ाया था। तो ये थी खेल अपडेट शहर से जुड़े ही प्रतिभाओं की।

अनुसार आगामी 3 दिनों में मौसम आसमान में मौसम आसमान साफ रहने के कारण हीट वेव का प्रकोप जो है वो जारी रहने के आसार बताए गए हैं। 29 से 31 मई के मध्य आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान आज का 44.3 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो भीषण गर्मी के बीच अपनी सेहत का खास वाला ख्याल जरूर रखें। फिलहाल इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम का वक्त यही हो रहा है पूरा।

0: और बस अगली जो यहाँ प्रसारण के लिए आपको जोड़ेंगे देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे दिल्ली केंद्र के साथ।
1: चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की, मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस

0: दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है।

0: इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
1: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल

0: से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रूपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
0: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

जी हाँ, रेनबो सुन रहे हैं आप शहर के म्यूजिकल हार्ट बीट 102.2। सुबह के आज बजकर 30 मिनट का वक्त यहाँ पर हो चुका है, पूरा शुरू हो रही है शुरू की पुरानी महफिल। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ, फिल्म का नाम दिल का क्या कसूर, और गायक हैं आशा भोसले के साथ कुमार सानू। समीर का लिखा हुआ गीत, आनंद मिलन का संगीत।

प्रोग्राम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज है, रविंद्र रावल का लिखा हुआ ये गीत है, बाबुल बोस का संगीत, फिल्म का नाम जीना तेरी गली में।

और अब आपको सुनवाते हैं सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में जाने तमन्ना फिल्म का गाना उदित नारायण रंजना जोगलेकर की आवाज है, आदेश श्रीवास्तव का संगीत, मदन लाल का लिखा हुआ ये गीत है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर

0: कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: और अब आइए आपको प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं ये गाना प्यार प्यार फिल्म से, कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज है, नदीम श्रवण का ये संगीत है, सुनते हैं इस गाने को।

और अब आपको बलमा फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोसले कुमार सानू की आवाज है, समीर का संगीत है, नदीम श्रवण का, समीर का लिखा हुआ गीत है, नदीम श्रवण का संगीत।

और इसी गीत के साथ ही आज की शुरू की पुरानी महफिल प्रोग्राम का समय यही हो रहा है। पूरा रस बाहर के साथ मिलते हैं, बस आपसे कुछ ही देर में। कनेक्ट रहिए हमारे साथ 102.2 FM रेनबो कानपुर पर।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
4: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

जी हाँ, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो सुन रहे हैं आप, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट 102.2 पर। घड़ी में बज चुके सुबह के पूरे 9 टाइम है। आज की इस खूबसूरत सी मॉर्निंग को थोड़ा और एनर्जेटिक बनाने का जिसके लिए सीमा हाजिर हो चुकी है लेकर रस बहार शो करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें और सुनवाएंगे फुल ऑन एनर्जेटिक सॉन्ग आपको। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत आने वाले इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।

जी हाँ, सुबह के 9:07 का वक्त यहाँ हो रहा है पूरा, और इस वक्त अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 33 डिग्री के लगभग यहाँ का टेम्परेचर भाई मौसम का हो चुका है, जहाँ गर्मी अभी अपना पूरा रंग दिखा रही है। तो वही बकरीद के त्यौहार की चहल पहल जो है लोगों के दिलों में अपनापन, मिलन और खुशियों की ठंडक भर रही है। हवाओं में गर्मी का एहसास है, लेकिन होठों पर बिखरी मुस्कान खास है। यही तो मौसम और त्यौहार का सबसे प्यारा संगम है। फिर भी हम यही कहेंगे आपसे कि इस भीषण गर्मी के बीच अपना खास ख्याल जरूर रखें, क्योंकि त्यौहार की असली खुशी तभी है जब आप स्वस्थ हैं। और आपके हेल्दी मनोरंजन के लिए आपके 90 वर्षों का ये साथी हर पल ही है आपके साथ, जिसकी बड़ी सारी अनमोल यादें हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का रहा है साथ हमारा और आगे भी चलता रहेगा। यूं ही आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहे हैं हम। 9 दशकों के इस साथी ने मौसम की खबरों से लेकर त्योहारों की खुशियां तक हर एहसास की अपनी आवाज दी है। कभी गर्मियों की दोपहर में ठंडी छांव बनकर, तो कभी त्योहारों में अपनों की मिठास बनकर साथ रहा है ये साथी। तो इसी बात पर मेरा एक छोटा सा सवाल आपके लिए कि भारत का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन किस शहर में है, आपको ये बताना है। और फिलहाल ये जश्न का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, बताएंगे हम आपको, सुनवा रहे हैं पहले अभी आपको ये ट्रैक जो पहुंच रहा है आप तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, इस वक्त आप कनेक्ट है शहर के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो के साथ और रेनबो की घड़ी में बज रहे सुबह के 9:16 और इस वक्त जी हाँ लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के थ्रू भी आप हमसे जुड़े हुए देश दुनिया के कोने कोने से। आकाशवाणी की आवाज हर पल है आपके साथ, घर पर हो या फिर सफर पे मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू। तो कभी वो दौर भी रहा है दोस्तों जब बड़े और छोटे ट्रांजिस्टर के इर्द गिर्द पूरा मोहल्ला बैठा हुआ करता था। रेडियो की अनमोल ये यादें हैं, रियल में बड़ी ही अनमोल हैं। तो जब हम आकाशवाणी के 90 बेमिसाल सफ़र का जश्न मना रहे हैं तो उस बुनियाद को याद करना भी ज़रूरी है जहां से भारत में रेडियो की आवाज़ जो है पहली बार गूंजी थी, जिसने उड़ान भरी थी। और हम यहाँ बात करेंगे जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा देश का पहला जी हाँ निजी और अनौपचारिक प्रसारण किया गया था, और ये शहर था मुंबई जिसने भारत को पहली रेडियो की गूंज दी थी। तो इस जगह को आज आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो द बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब के नाम से जाना जाता है। दक्षिण मुंबई का एक बहुत ही शानदार और मशहूर प्लेस है ये, और जिसे जाना जाता है सोशल स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट क्लब के लिए, जो अब पूरी तरह से ये बन चुका है। जहाँ पर रेडियो स्टेशन तो नहीं है लेकिन रेडियो से जुड़ी अनमोल यादें हैं। और जब हम आवाज़ की दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी के 90 सालों का जश्न मना रहे हैं तो इस ऐतिहासिक पल को कैसे भूल सकते हैं। तो इस सेलिब्रेशन को जारी रखते हुए यहाँ सुनवा रहे हैं आपको एक और अगला ट्रैक, और आगे हम आपसे बात शेयर करने वाले हैं फेडरेशन कप 2026 में इतिहास रचने वाले दो युवा सितारों के। और कौन है ये युवा सितारे बताएंगे आपको, बस कनेक्ट रहना होगा जी हाँ आज के रसबहार शो पर हमारे साथ। फिलहाल ये ट्रैक आपके लिए पहुंच रहा है आप तक। Either you stay out of it, or you go in all the way, but it can't fail.

और यहाँ पे कहानी नहीं भाई, हिस्ट्री बनी है जिनके बाद अब हम आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसी हौसले और जी तोड़ मेहनत ने ट्रैक और फील्ड में लहराया कामयाबी का एक नया परचम। हम बात करें हाल ही में संपन्न हुए फेडरेशन कप की, जहां भारतीय एथलेटिक्स के दो सितारों ने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पहले बात करते हैं केरल के युवा धावक विशाल टीके की। 400 मीटर की रेस में जब विशाल ट्रैक पर उतरे तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज दशकों का पुराना बड़ा बैरियर जो है वो टूटने वाला है। विशाल ने ये दूरी तय की मात्र 44.98 सेकंड में पूरी की है, यानी कि जो है 45 सेकंड से भी कम के समय में उन्होंने ये जो है अपना रिकॉर्ड बनाया है। इस टाइमिंग की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि महान एथलीट द फ्लाइंग सिख, जिन्हें इस जो है सम्मान के साथ हम जानते हैं, मिल्खा सिंह जी के 45.6 सेकेंड के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए उन्होंने ये इतिहास बनाया है। जहां विशाल टीके ने 400 मीटर के रेस में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह की, जिन्होंने 100 मीटर के सबसे तेज स्प्रिंट में तूफान ला दिया है। और गुरिंदर वीर ने 100 मीटर के रेस को सिर्फ 10.9 सेकंड में पूरा कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो इस विस्फोटक दौड़ के साथ ही जो है वो देश के सबसे तेज धावक बन चुके हैं। तो फेडरेशन कप के ये दो नतीजे सिर्फ दो मेडल की कहानी नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भारतीय खेलों के लिए एक नए सुनहरे दौड़ की दस्तक है। आप दोनों यंगस्टर्स को इस हिस्टोरिक जो है कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। फिलहाल 9:25 हो रहा है, पूरा दिन जो है वो पूरे धूप जो है अभी अपने चरम पर पहुंच रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो अपना खास वाला फिलहाल ख्याल रखिए। और त्योहार का दिन है, जश्न का माहौल है, तो चलिए हम भी जश्न में डूबते हैं इस गाने के साथ।

0: जस्ट
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर लेते हैं। सुबह के 9:30 का समय हो रहा है पूरा और इस वक्त आप कनेक्ट है शहर की म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो के साथ और रेनबो पे इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, आज का रस बहार फिलहाल अभी आपसे खास बातें करने वाले खास ड्रिंक के बारे में। फिलहाल ये ट्रैक अभी आप इंजॉय कीजिए। इस ट्रैक के बाद वो क्या खास ड्रिंक है जो गर्मियों में आपको बनाएगा कूल, शेयर करेंगे आपके साथ में बस इस गाने के बाद।

तो हम यही कहेंगे कि ना रात में चैन है ना दिन में आराम है, गर्मी की तपिश जो है अभी हम महसूस कर पा रहे हैं, ऐसी भीषण गर्मी की जो है शुरुआत हो चुकी है। जब सुबह से ही गर्मी अपना असर दिखाने लगे तो ऐसे में शरीर को सिर्फ पानी की नहीं सही हाइड्रेशन और फ्रेशनेस की भी ज़रूरत होती है। और वो फ्रेशनेस और हाइड्रेशन मिलेगी आपको इस ड्रिंक से जिसके बारे में अब हम आपसे बात करने वाले हैं। ये है हर्बल इन्फ्यूज़ ड्रिंक जिसे इस नाम से जाना जाता है, या फिर समर डिटॉक्स ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप अपने किचन में तैयार कर सकते हैं। खीरा, पुदीना के पत्ते, नींबू, काला नमक या सेंधा नमक, ये सारी चीज़ें आपके रसोई में मौजूद है तो तैयार कर सकते हैं। और कैसे तैयार करना है कि जो है एक मध्यम जो आकार के खीरे को स्लाइस में आपको काट लेना है, फिर 8 से 10 मिनट लीव लेने हैं यानी कि पुदीने के पत्ते लेने हैं, एक नींबू को पतले स्लाइस में काट लेना है। इन सब को जो है 1 लीटर पानी में ढककर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है, फ्रिज या ठंडी जगह पर रख देना है ताकि इन सभी चीज़ों के जो पोषक तत्व पानी में अच्छे से मिल जाए। तो लीजिए, तैयार हो गया आपके लिए एक इन्फ्यूज डिटॉक्स वाटर ड्रिंक, और स्वाद के अनुसार जब आपको पीना हो तो इसमें सेंधा या काला नमक डालकर आप पी सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखेगा बल्कि स्किन और डाइजेशन के लिए भी है बेस्ट। एक्सपर्ट कहते हैं कि गर्मी के मौसम में इस डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल रोज़ाना किया जा सकता है। तो चलिए, रहिए हाइड्रेट और कूल हर्बल इन्फ्यूज ड्रिंक के साथ। और फिलहाल अभी प्रोग्राम में इस गाने के साथ हम होते हैं थोड़ा सा और कूल।

और दोस्तों प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर हो रहा है, जी हाँ 9:41, ये वक्त बढ़ रहा है और लगभग पूरे होने के कगार पे है। उससे पहले हम याद करेंगे आज के दिन को, और आज का दिन बेहद ही खास है। भारतीय सिनेमा के इतिहास का वो पन्ना जिससे पलटे बिना हमारी फिल्मों का जो सफ़र है वो पूरा नहीं हो सकता है। आज पुण्यतिथि है सिनेमा के उस सुल्तान की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को पहली बार ऑस्कर की दहलीज पर खड़ा किया था, द लेजेंडरी महबूब खान साहब, एक प्रमुख फिल्म निर्माता और निर्देशक। साल 1957 जब गूंजा था मजर इंडिया का डंका, उनके निर्देशन में बनी थी ये फिल्म जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऑस्कर की नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल होने वाली ये फिल्म देश की सबसे पहली फिल्म बनी। उन्होंने अंदाज जैसी फिल्म में राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस को एक साथ पर्दे पर लाकर रिश्तों की एक नई परिभाषा लिखी थी, तो आन जैसी फिल्म में भारत को पहली भव्य टेक्निकलर फिल्म दी। और महबूब खान साहब ही थे जिन्होंने महबूब स्टूडियो की नींव रखी। साल 1954 में जो आज भी फिल्म मेकिंग के लिए हिस्टोरिक सेंटर प्लेस माना जाता है। और अभी उन्हीं की फिल्म से ये गाना आज के दिन पर उनको याद करते हुए हम आप सभी के साथ जो है शेयर कर रहे हैं।

28 मई 1964 को सिनेमा का ये सितारा हमेशा के लिए कहीं खो गया, लेकिन उनका विजन आज भी निर्देशकों को प्रेरित करता है। हमारे आकाशवाणी टीम की ओर से इस महान रचनाकार को शत शत नमन। और इसी के साथ ही आज का रसबार यही हो रहा है पूरा। मिलेंगे आपको अभी बस कुछ ही देर में विविधा के साथ में, और विविधा में आज बारी है लोक रंग की। सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी धुनों पर आधारित लोकगीत, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। मिलते हैं आपसे बस कुछ ही देर में।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

एक बार फिर से जुड़ गए आप रेनबो कानपुर के साथ और इस वक्त ये प्रोग्राम आपको सुनवा रहे हैं विविधा विविधा में। अभी आप सुन रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

और इसी गीत के साथ ही जी हाँ संपन्न हो रही है आज की विविधा। सुना आज आपने विविधा में विविध रंग थे लोक रंग के, इसी गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है पूरा। और अब हम मिलेंगे आपसे दिन में 11 बजे आज की हमनवा महिमा के साथ में, और मैं रहूँगी सीमा, दोनों ही रहेंगे साथ में। तो बस कनेक्ट रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.2। और बस अब से कुछ ही देर में आपको हम कनेक्ट करेंगे हमारे लखनऊ केंद्र के साथ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बना

आना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में से 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीड़ा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व श्रद्धा उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अमरोहा, शामली, उन्नाव और जौनपुर समेत विभिन्न जनपदों की ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली सहित मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियो साझा न करने की अपील की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
4: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मूल में
3: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
4: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
3: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
4: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
3: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
4: आओ के लखनऊ को जरा याद करें हम।
5: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।
6: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
7: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
8: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
6: आपके अपने रेनबो की जबानी।
7: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
9: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
10: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
6: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 10:05 का समय और अभी कुछ ही पलों में होने वाला है 10:06 का समय और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 एफएम रेनबो पर, जिस पर मैं रतन आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और दोस्तों, जैसा कि आज का 28 मई का ये दिन है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये दिन, आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। इस त्यौहार को बहुत प्यार से मनाइए और बहुत एंजॉय कीजिए, बस हम यही आपके लिए दुआ करते हैं। और दोस्तों, अगले घंटे आप बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुनेंगे, 90s के वो ट्रैक जिनको सुनकर वाकई में आपकी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा थिरकने लगती थीं, धड़कने लगती थीं। और आज हम उन्हीं यादों के गलियारों में उसी म्यूज़िक के बीच हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो उम्मीद में यही करूंगा कि आज के ये सॉन्ग्स आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो बस हमारा साथ यूं ही इसी प्यार के साथ निभाते रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर आज आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन और प्रोग्राम का नाम है सुपरहिट सॉन्ग।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जिस पर चल रहा है प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और आपको ये गीत, ये ट्रैक्स बहुत पसंद आ रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 10:54 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग प्रोग्राम को अब हम यहीं पर वाइंड अप करें और अगले प्रोग्राम में आपसे पुनः मुलाकात करें। तो न्यूज ब्रेक के बाद ठीक 11:02 पर आपसे होगी पुनः मुलाकात आपके अपने प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे पर। तो बस आप हमारे साथ यूं ही इसी प्यार के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, इसी इश्क के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बस ये प्यार यूं ही बनाए रखिए।

0: दिन के 11 बज चुके हैं। हाजिर है हम नवा के साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत और हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम में मैं सीमा और मेरी हम नवा महिमा है मेरे साथ।
1: जी हाँ, मैं हूँ आरजे महिमा और सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गर्मी के बीच खुशियों की लहर

0: ताज साफ देखी जा सकती
1: जी
0: है।
1: महिमा।
0: हाँ, क्योंकि आज है ईद उल अजहा का त्योहार, बकरीद का मुकद्दस त्योहार आज देश दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस त्योहार का असली पैगाम समर्पण और निस्वार्थ त्याग है, और ये त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के उस जज्बे की याद दिलाता है जहाँ उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देने पर संकोच नहीं किया, और उनकी इसी नियत और अटूट विश्वास को देखते हुए ये परंपरा शुरू हुई। इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के को सपने में आकर उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी, और हजरत इब्राहिम को अपने बेटे हजरत इस्माइल से सबसे ज्यादा प्यार था, जैसा कि अमूमन होता है
1: जी
0: कि पिता को बच्चों से प्यार होता है। तो अल्लाह के हुक्म का पालन करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया उन्होंने, और जब इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने चले तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली ताकि एक पिता की ममता उनके फर्ज के आगे ना आए।
1: बिल्कुल सही कहा महिमा आपने। आज जब ये त्योहार मनाया जा रहा है, तो इस त्योहार को मनाने के पीछे ये ऐतिहासिक जो है मान्यता है, तो अल्लाह ने उनकी नियत और वफादारी को कबूल कर लिया, और फरिश्ते के जरिए हजरत इस्माइल जो उनके बेटे थे, उनकी जगह एक दुम्बे को वहां रख दिया। हजरत बिल्कुल सुरक्षित रहे और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। तो त्योहार को मनाने के पीछे की ये मान्यता है, जिसका असली मकसद सिर्फ त्याग जानवर की कुर्बानी नहीं देना है महिमा, बल्कि अपने अंदर के अहंकार, स्वार्थ और बुराई को भी कुर्बान करना है। तो आज के दिन का ये खास पैगाम है, जब ये आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो आप सभी को इस त्यौहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गाने के साथ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत।

0: देखिए, हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी महिमा यहाँ पे प्रोग्राम की, और जैसा कि अभी गर्मी हाल फिलहाल तेजी से बढ़ गई है, तो त्योहारों के साथ साथ अपना खास ख्याल रखे, अपने को हाइड्रेट रखे, धूप से थोड़ा सा बचिए जिस हिसाब से अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल, और जितना हो सके पेय पदार्थों का सेवन करिए, और बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में बिल्कुल भी ना निकलिए।
0: जी,
1: और सीमा, अब हमारे लिसनर्स के साथ हम शेयर करते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या, किन टॉपिक्स पर हम उनसे प्रोग्राम हम नवम में बात करेंगे।
0: बिल्कुल महिमा,
1: तो पहला टॉपिक है कि भाई सुबह की अच्छी आदतों का जीवन और स्वास्थ्य में क्या महत्व है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपका उस रूटीन का आपकी लाइफ में और आपके हेल्थ पर क्या इफेक्ट है।
0: जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो शुरुआत की सुबह से हो जाती है वो आपका होल डे बना देती है, और वैसा ही रूटीन आपका सेट हो जाता है हेल्थ को लेकर भी ना। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आकाशवाणी एट द रेट 90 की युवाणी के संदर्भ में। हम बात करने वाले हैं कि हमारे युवा जब ये युवाणी से कनेक्ट हुए तो क्या, मतलब उस टाइम पे उनका कनेक्शन रहा आकाशवाणी के साथ में, और कितना ही एक्साइटमेंट था इस युवाणी को लेकर, इस बारे में हम बात करने वाले हैं।

0: अलावा वीर दामोदर सावरकर की आज जन्म जयंती है और उस पर उनको नमन करेंगे, याद करेंगे और उनका जो देश के प्रति समर्पण रहा हम उसको भी याद करेंगे
1: और बिल्कुल तमाम सारे लोगों को इंस्पायर करेगा आज का स्वयं सहायता समूह जिसके बारे में हम आप सभी से बात करने वाले हैं। तो इन सभी जी हाँ जो सारे हमारे कंटेंट है, टॉपिक है, इसको सुनने के लिए आपको कनेक्ट रहना होगा आकाशवाणी एफ एम रेनबो कानपुर के साथ में। और साथ ही आप अगर अपना कोई भी मैसेज हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है महिमा
0: AIRKANSOMEDIA@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए AIRKANSOMEDIA@gmail.com। और आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत कितने बजे से करते हैं या कितने बजे उठते हैं और उठने के बाद आप क्या करते हैं। बहुत मामूली सा एक जनरल क्वेश्चन है, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए और प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाइए। तब तक आगे की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आकाशवाणी@90 युववाणी के संदर्भ में। महिमा क्या कहोगी तुम?
1: देखो महिमा, कुछ आवाजें सिर्फ वक्त की गवाह नहीं होती बल्कि वो खुद में एक पूरा दौर होती हैं। जब हम मिलकर जश्न मना रहे हैं ऐसी ही एक कालजयी आवाज का आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों का।
0: 9 दशकों का ये सफर कितना अद्भुत रहा है। आज हम इस मुकाम पर खड़े होकर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आता है साल 1936 जब रेडियो की आवाज ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। तब शायद सीमा किसी ने नहीं सोचा होगा कि आवाज का ये माध्यम आने वाले दशकों में करोड़ों लोगों की भावनाओं, सूचनाओं और सपनों का साथी बन जाएगा।
1: बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। जन जन की वाणी आकाशवाणी बना और हकीकत का ये साथी भी बना, विश्वसनीयता का भी साथी बना आकाशवाणी। चाहे वो सीमा पर देश की रक्षा करते हुए जवानों के लिए अपनों का पैगाम हो या दूर दराज के गांवों में किसानों को फसलों की नई तकनीक सिखाना हो या फिर शास्त्रीय संगीत से लेकर सुगम संगीत की मधुर तानों को हर दिल में उतारना हो, आकाशवाणी हमेशा देश की धड़कन भर कर धड़का है।
0: जवानों की बात की तो मुझे याद आ गया अपना जो थर्सडे को प्रोग्राम एक शाम को 4 बजे से जाता है एफएम रेनबो से, वो है संदेश टू सोल्जर। हाँ, नाम से
1: बिल्कुल। तो और हम बात करें तो हमारा जयमाला का जी हाँ रोजाना ही शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाता है।
0: लोग उतने ही चाव से सुनना पसंद करते हैं और वाकई में हम भी जब होते हैं विविध भारती के स्टूडियो में जब जयमाला की सिग्नेचर ट्यून बजती है तो एक अलग ही मतलब दुनिया में पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई जयमाला शुरू हो गया है और बहुत अच्छे अच्छे संदेश आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले होते हैं। तो जयमाला एक ऑथेंटिक प्रोग्राम है अगर देखा जाए तो।
1: तो कनेक्ट हो जाते हैं आज भी हम ऐसे प्रोग्राम्स को साथ में जिसने हर भारतीय परिवार का एक ऐसा हिस्सा रहा है आकाशवाणी के साथ, जिसमें अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य पर गर्व करना हमें सिखाया है।
0: जब हम आकाशवाणी की इस 90 वर्षों की भव्य यात्रा और उसकी दूरदर्शिता की बात करते हैं सीमा, तो एक ऐसी लहर का जिक्र लाजमी है जिसने देश की युवा सोच को एक नया आसमान दिया, एक ऐसा क्रांतिकारी मंच जिसे हम सब जानते हैं युववाणी के नाम से।
1: बिल्कुल सही कहा, इस बारे में ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे साल 1969 जब देश बदल रहा था और युवा अपनी पहचान तलाश कर रहे थे तब आकाशवाणी ने शुरुआत की युववाणी सेवा की, युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं को रचनात्मक मंच प्रदान करने वाला ये कार्यक्रम।
0: और उस दौर में जब युवाओं के पास अपनी बात रखने के लिए आज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तब देश के युवाओं को उनके विचारों को युववाणी ने पंख दिए।
1: तो चाहे वो फिर करियर की राह चुनना रहा हो, खेल जगत की हलचल हो या फिर समसामयिक विषयों पर बाग चर्चा, युववाणी हर युवा के दिल की आवाज बना।
0: और इस कार्यक्रम ने कई बेहतरीन पत्रकारों और रेडियो पेशेवरों को मीडिया की दुनिया में अनुभव प्राप्त करने में मदद की। और वो कार्यक्रम जिसमें ना सिर्फ हुनर को तराशा, बल्कि देश को कई बेहतरीन विचारक और कलाकार भी दिए।
1: बिल्कुल महिमा सही कहा आपने, वक्त बदला, तकनीक बदली, माध्यम भी बदले, लेकिन देश को आगे ले जाने का जो जोश कल युवाओं में था

0: वही आज भी है आकाशवाणी की युववाणी इस अटूट जज्बे का सबसे बड़ा गवाह रही है।
1: आज आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर को सलाम करते हैं हम, और हम युववाणी के उस दौर को याद करते हैं जिसने हमारे युवाओं को सोचना सिखाया, जिसने हमें जड़ों से जोड़े रखा। और अब हम आपको जोड़े रखते हैं एक बेहतरीन से सॉन्ग के साथ।
0: लेकिन अभी बात महिमा यही खत्म नहीं हुई है भाई। अपने आज हम अगर हम करंट कनेक्टिविटी की बात करें तो अपने जो हमारी आकाशवाणी वो मोबाइल फोन से लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंच गया है। 90 सालों के गौरवशाली सफर का साथ ही हमारा आकाशवाणी आज भी उसी आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है अपने श्रोताओं के साथ। और हमारे इस शानदार सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।
1: तो जश्न मनाते हैं आइए हम सब मिलकर इस बेहतरीन से सॉन्ग के साथ।

0: तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो भाई दिन चढ़ता है और हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है, लेकिन दिनचर्या हमारी सबकी अपनी अलग अलग दिनचर्या होती है। कोई देर से उठता है और कोई सूर्योदय के समय उठ जाता है, कोई सूर्योदय के पहले भी उठ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिनचर्या अगर आपकी सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय शुरू होती है तो वाकई में आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। आप खुद इस बात से रिलेट करते होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सुबह की अच्छी आदतों का हमारे जीवन और स्वास्थ्य में क्या महत्व है। सीमा, कहते हैं कि अगर सुबह अच्छी हो जाए हमारी तो पूरा दिन बेहतर बन जाता है।
1: बिल्कुल, बेहतर महिमा इसलिए भी बन जाता है जब हम इन टाइम उठते हैं तो सारा रूटीन है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है।
0: और हमें काम का प्रेशर भी नहीं समझ में आता कि नहीं अभी तो ये बचा है करने को, अभी तो ये बचा है करने को।
1: ऐसे क्या है, हमारी जो नजरें रहती है घड़ी की सुइयों पे रहती है कि
0: भाग रही है, हम पीछे हो रहे हैं लेकिन घड़ी अपने समय से चल रही है। लेकिन देखो होता क्या है कि आजकल की जो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, और उसमें हमारा जो मोबाइल फोन है साथ ही सोशल मीडिया जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं रात में सोने में देर करवा देता है, क्योंकि हाथ में फोन रहता है और कब 11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गए, पता नहीं चलता है।
1: लेकिन जो ये नेचर है हमारी, जो प्रकृति है हमारी, इसका सबसे सुंदर और सकारात्मक समय सुबह का ही माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: पॉजिटिविटी भी आपको मॉर्निंग से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है नहीं, जैसे ही सूर्योदय होता है या बिफोर सूर्योदय भी आप उठे हैं तो कितना जो है पॉजिटिव फील, फ्रेश फील करेंगे आप नहीं सुबह के वक्त में।
0: बिल्कुल,
1: हवा भी शुद्ध होती है और मन भी ताजगी महसूस करने लगता है। इस सुबह की सबसे अच्छी बात यही होती है कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और उनमें पूरे दिन की एनर्जी
0: रहती है। लेकिन जैसा भी मैंने कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की वजह से आप टीवी देख रहे हैं रात में, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे जेन्युइन रीजन होते हैं कि हम रात को देर से सोते हैं, कभी हमें कहीं जाना है, कभी कुछ इमरजेंसी आ गई। लेकिन अगर आप डेली अपने घर पे हैं तो रूटीन वही फॉलो करिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर हम देर से सोते हैं और सुबह देर तक सोते हैं तो इसका सीधा असर हमारी सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है।
1: तो बिल्कुल महिमा, ये जो बातें हम कर रहे हैं यहाँ सही है। जब हम लेट उठते हैं तो हमारा रूटीन भी लेट होता है, या लेट नाइट सोते हैं तो इन सब चीज़ों का जो है मानसिक हमारे इफेक्ट पड़ता है हमारी सेहत का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जो लोग सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठते हैं उनके मेंटल हेल्थ औरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है, और साथ ही उन्हें स्ट्रेस भी कम रहता है।
0: और होता है क्या है ना कि सीमा की जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास खुद के लिए सेल्फ टाइम होता है, और इस टाइम में हमें एक्सरसाइज, योगा, फैमिली के साथ कुछ शांत पल बिताने का भी मौका मिलता है। साथ ही सुबह का जो वातावरण होता है वो शांत होता है, हवा शुद्ध होती है और मन भी हमारा ताजगी महसूस करता है। तो सबसे अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना।
1: अच्छा, एक खास बात महिमा और है कि सुबह टहलने से ब्लड सर्कुलेशन जो वो अच्छा रहता है, आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। योग और प्राणायाम भी सुबह करने की सबसे अच्छी एक्टिविटीज में से एक है। इससे लंग स्ट्रॉन्ग होते हैं और मन को शांति मिलती है। पर आजकल देखो जैसे मोबाइल और कंप्यूटर की वजह से लोग फिजिकल एक्टिविटीज से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में सुबह का व्यायाम शरीर को फिट रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है।
0: और सुबह की अच्छी आदतों के बारे में और उसका जीवन और हमारे स्वास्थ्य में क्या महत्व है, इस बारे में हमारे साथ एक हाउस वाइफ है सुमन जी, वो जुड़ चुकी है और वो आपसे शेयर करेंगे कि सुबह उठना वाकई में हमारे लिए साथ ही हमारे बच्चों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है।
1: तो आइए।

0: सुनते हैं उनकी इस बात को।
1: मैं सुमन त्रिपाठी, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं FM रेडियो की नियमित श्रोता हूँ। रेडियो सुनना मेरी दिनचर्या से भी जुड़ा है। रही दिनचर्या की बात, तो आज मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सूर्योदय के साथ जग जाना, उठ जाना अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप स्वयं भी जल्दी उठिए, सूर्योदय के साथ उठ जाइए, बच्चों को भी जगाइए। और इस समय तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, घर पे हैं बच्चे, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों को स्कूल जाने की, ना आपको कोई जल्दी है कि हाँ जल्दी में हमें सारे काम करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी मॉर्निंग वॉक के लिए भेजिए, खुद भी मॉर्निंग वॉक करिए। जैसे खुले स्थान में जाइए, पार्क है, व्यायामशाला है, बहुत सारी ऐसी खुली जगह है जहाँ आप बच्चों को लेकर के जा सकते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों का एंजॉय भी होगा, पार्क में बच्चों को झूले मिलेंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप स्वयं भी अपना वहीं पे योगा करिए। इसके साथ साथ उसके बाद नाश्ते की बात आती है, तो इस समय गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लाइट का भी आना जाना और लाइट की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है हर जगह पे। तो मेरा कहने का है ये कि अपना जो है अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे नाश्ता भी आपका है तो समय से लीजिए, समय का ध्यान रखना ही हमारे विकास का कारण बनता है कि हम अपने समय से अपना हर काम समय से कर लें। और सुबह जल्दी उठने से क्या है, सेहत भी अच्छी रहेगी, मानसिक शांति रहेगी और हम अच्छे से अपना अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अपने सारे काम भी समय से करेंगे। और जैसे नाश्ते में हम ले सकते हैं अंकुरित चने हैं, अंकुरित दाल है, बच्चों को इस समय घर में अपना छाछ है, दूध है, इस तरह की आइसक्रीम है, जो घर पे जितना जो कुछ नाश्ता अच्छे से अच्छा दे सके वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हम अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।

तो प्रोग्राम में लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार अभी आपसे और ढेर सारी बातें करनी बाकी हैं। बस कनेक्ट रहिए हमारे साथ, हम नवा शो पर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 102.2 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: 102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम हम नवा, मेरे यानी RJ महिमा और RJ सीमा के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं हम नवा प्रोग्राम लेकर, और आप बात करते हैं स्वयं सहायता समूह की। तो सीमा, आज स्वयं सहायता समूह में हम किस समूह की बात करने जा रहे हैं?
6: बिल्कुल, हम ये बात करने जा रहे हैं मुरादाबाद का स्वयं सहायता समूह है जिसके बारे में आज बात करने वाले। जब ये समूह साहस और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़कर आ रहा है, बदलाव की नई कहानी लिख रहा है, तो आज अपने प्रोग्राम में हम इसी समूह की बात करते हैं जिसमें स्थानीय महिलाओं को न सिर्फ पहचान दी है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बनाया है।
5: बिल्कुल, मुरादाबाद के इस स्वयं सहायता समूह ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए महिलाओं को गृह उद्योग और विभिन्न कौशल विकास के कार्यों से जोड़ा है। अक्सर हमारे समाज में महिलाओं के पास हुनर तो होता है लेकिन उन्हें सही मंच और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो इस स्वयं सहायता की अध्यक्ष रजनी ने इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया है।
6: और उनका ये समूह माँ शारदा स्वयं सहायता समूह, जिसमें महिलाएं जो है आलू और चिप्स के पापड़ बनाने का कार्य कर रही हैं। घरेलू स्वाद और साफ सफाई के कारण इनके प्रोडक्ट को पसंद बेहद ज्यादा किया जा रहा है। जहाँ पे व्रत के अलावा महिमा और भी कई प्रकार के इनके यहाँ पापड़ बनाए जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों में इसकी काफी डिमांड बढ़ चुकी है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफी पसंद कर रहे हैं।
5: भाई, जब अच्छी चीज होगी तो

0: ऑब्वियसली बात है कि लोग पसंद करेंगे और उनके काम में भी बढ़ोतरी होगी जब लोग खरीदेंगे. तो महिलाओं की आमदनी की बात करें अगर, तो 10 से 15 हजार आसानी से इस काम को करके बचत हो जाती है, जिससे इस जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं वो काफी खुश हैं.
1: तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक तो ये महिलाएं घर पर रहती हैं और घर पर ही इस काम से जुड़ी हुई हैं, तो एक पंथ दो काज
0: वो अपने घर को भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं और अपना काम भी कर रही हैं.
1: और इस समूह के साथ जुड़कर वो आत्मनिर्भर भी बन रही है. तो वहीं अन्य बेरोजगार महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रहा है मुरादाबाद का ये स्वयं सहायता समूह.
0: बिल्कुल. तो भाई अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो हिचकिचाइए नहीं, कदम बढ़ाइए, क्योंकि छोटे प्रयास ही कल बड़े बदलाव की नींव रखते हैं. तो
1: बिल्कुल सच कहा महिमा. तो इसी बात के साथ हम अपने लिसनर्स को सुनाते हैं एक और खूबसूरत सा गाना. सुन रहे हैं आप हम नवा शो और इस वक्त हम नवा पर 11:37 का वक्त हो रहा है पूरा. जुड़े हुए हैं महिमा और सीमा के साथ.

0: जी हाँ बिल्कुल, यूथ की आज यही डिमांड है कि हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना, क्या कहती हो सीमा?
1: और होना भी नहीं चाहिए, जब समय के साथ हम चल रहे हैं तो कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तभी हमारी तरक्की है।
0: टेक्नोलॉजी आजकल इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि यूथ जो है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर नित्य नए आयाम खड़े कर रहा है, और आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भाई मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उस चीज को जो यूथ है वो कहीं ना कहीं साकार भी कर रहे हैं इस बात को।
1: यूथ क्या, यूथ के साथ साथ में जो भी हमारी जनरेशन है आगे की पीछे की, वो भी जो है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो उनको भी पता है कि समय के साथ ही बढ़ना जो है हमारी असली तरक्की है।
0: बिल्कुल है, लेकिन अगर हम समय के पीछे जाएं और बात करें उस समय की जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो तब बहुत सारे ऐसे हमारे देशभक्त थे, हमारे ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बहुत ज्यादा समर्पण दिया, और उनमें से एक थे विनायक दामोदर सावरकर जी, जिनकी आज जन्म जयंती है। तो आज 28 मई को वीरता, विचार और वतन के रखवारे, महान क्रांतिकारी, साहित्यकार और राष्ट्रभक्त को हम याद कर रहे हैं, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, और आज 28 मई को उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं उस व्यक्तित्व को जिसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व समर्पित किया बल्कि अपने लेखन और विचारों से भी देशभक्ति की नई चेतना जगाई।
1: बिल्कुल महिमा, और जब आज ये दिन मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ में हम वो भावना को महसूस करने लगते हैं जब हमारे क्रांतिकारी, हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मतलब इनकी गाथाएं हम सुनते हैं, देशभक्ति की गाथाएं सुनते हैं और आपका नाम आता है, तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना से भर जाता है, और हम भी उसी अरा में चले जाते हैं, महसूस करते हैं कि कितनी मतलब तकलीफें रही होंगी देश के साथ में उस वक्त, जब उसको निकाल कर आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसको उसको लेकर आप लोग आगे बढ़े, यहाँ तक सबको एक साथ लेकर आए, सबको साहस का मार्ग दिखाया,
0: और उन लोगों को ये था दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसे भी तुमने कहा सीमा, तो ये मालूम था कि आज हमारी कुर्बानी जो है, आज जो हम देश के लिए कर रहे हैं वो यूं ही नहीं जाएगी, देश आज़ाद होगा, और आज उस आज़ादी का हम सभी स्वतंत्र हैं, हम सभी अपने मन के हिसाब से सब काम करें, देश स्वतंत्र है, लेकिन उनकी कुर्बानी जो है हम उसको भूल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो कुर्बानी जो थी उनकी वो सर्वोपरि है हमारे लिए, और अगर मैं विनायक दामोदर सावरकर जी की बात करूं तो 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में जन्मे थे ये, और बचपन से ही तेजस्वी और निर्भीक स्वभाव के थे। उन्होंने युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का बीड़ा उठाया, और विदेश में रहकर भी उनका मन केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए धड़कता था।
1: और हाँ, इसलिए भी कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित किया, और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसे ही

0: ऐतिहासिक पुस्तक भी लिखी। सावरकर जी का जीवन संघर्ष, साहस और संकल्प का प्रतीक रहा है।
1: और उनके इसी संकल्प की वजह से सीमा अंडमान के सेलुलर जेल में उन्होंने अमानवीय यातनाएं झेली, लेकिन देश प्रेम की ज्योति कभी मंद नहीं होने दी। इसके अलावा सीमा उनकी लेखनी में भी ओज था, शब्दों में क्रांति थी और विचारों में राष्ट्र के लिए समर्पण था। उनका मानना था कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आज उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की एकता, अखंडता और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और
0: वीर सावरकर जी की जयंती पर उनको हमारा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके लिए कुछ लाइन यहाँ पर आज हम बोलेंगे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: बहुत अच्छी लाइन बोली सीमा, और ये लाइन बिल्कुल सावरकर जी के लिए ही है जिन्होंने अपनी इतने सारे सेक्रीफाइस किए अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो आज उनको हम नमन करते हैं, उनकी जयंती पर उनको याद करते हैं और ऐसे राष्ट्रभक्त को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और फिलहाल हम नवा प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक बेहतरीन से नगमे का, तो प्ले करते हैं ये सॉन्ग, एंजॉय कीजिए।

0: और महिमा, अब हम आ गए प्रोग्राम में, अपने रेसिपी सेगमेंट में, जिसका हमारे लिसनर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की रेसिपी है गर्मी के इस मौसम में कच्चे आम से बनने वाली लौंजी, जो टेस्ट में खट्टी मीठी और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है।
1: हाँ, और इस कच्चे आम की लौंजी को बनाने के लिए हमें चाहिए दो

0: और महिमा, अब हम आ गए प्रोग्राम में अपने रेसिपी सेगमेंट में, जिसका हमारे लिसनर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की रेसिपी है गर्मी के इस मौसम में कच्चे आम से बनने वाली लौंजी, जो टेस्ट में खट्टी मीठी और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है।
1: हाँ, और इस कच्चे आम की लौंजी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कच्चे आम, 2 बड़े चम्मच गुड़ या चीनी, आप जो भी लेना चाहें, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 बड़े चम्मच ऑयल।
0: और अब आपको बनाने के लिए इसको कच्चे आम को धोकर छील लेना है, छोटे टुकड़ों में काट लें। एक पैन या कढ़ाई में ऑयल डालकर गैस पर अच्छे से गरम करने के लिए रख दें। फिर उसमें जीरा, सौंफ, मेथी, हींग डालकर तड़का लगाएं। अब इस तड़के में आम के टुकड़े और हल्दी पाउडर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे ढककर पकाएं और 3 से 4 मिनट तक पकाने पर आम के टुकड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें गुड़ या चीनी डाल दें। इसके बाद इस मिक्सचर को धीमी आंच पर तब तक पकाना है आपको जब तक मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। जैसे जैसे ये जेली जैसा हो जाए तो वैसे ही जो है उसकी कंसिस्टेंसी आपको पता चल जाएगी। तुरंत गैस को ऑफ कर देना है। आपकी लौंजी बनकर तैयार हो गई है। इसे रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
1: हाँ, और इसके बेनिफिट्स भी हैं भाई। कच्चा आम जो है वो शरीर को लू और गर्मी से बचाने में हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है
0: और पाचन सुधारने में भी सहायक है, भूख बढ़ाता है। गुड़ और मसालों की वजह से ये आपकी जो है एनर्जी, आपको एनर्जी भी देता है, साथ ही गर्मियों में पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है।
1: तो इस गर्मी अपने खाने में शामिल कीजिए स्वादिष्ट और पौष्टिक कच्चे आम की लौंजी और पाइए स्वाद और सेहत का खजाना एक साथ। फिलहाल आपके खजाने को और बढ़ाने के लिए हम प्ले कर रहे हैं प्रोग्राम का ये लास्ट सॉन्ग।

0: जी हाँ, बहाना है, मौका है, खुशियां हैं, सब एक साथ है। और आज जैसा कि हम ईद उल अजहा का त्योहार मना भी रहे हैं यहाँ
1: हाँ
0: पे,
1: जी, और बहाना देखिए मिल गया है सॉन्ग को प्ले करके एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देने का।
0: सभी
1: तो आरजे महिमा और आरजे सीमा की तरफ से आप सभी को
0: को
1: ईद
0: ईद उल
1: उल अजहा
0: अजहा
1: की
0: की हार्दिक
1: हार्दिक शुभकामनाएं।
0: शुभकामनाएं।
1: और प्रोग्राम में वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सीमा, प्रोग्राम हम नवा को वाइंड अप करना पड़ेगा, तो चलते हैं
0: जी हाँ
1: प्रोग्राम से
0: जी
1: अपने
0: हाँ, क्योंकि
1: लिसनर्स
0: घड़ी की
1: को।
0: सुइयां पूरी तरह से इशारा कर चुकी हैं कि अब ये प्रोग्राम यहीं पर हम वाइंड अप करें। तो फिलहाल अभी के लिए सीमा चलेगी फाइनली, और महिमा रहेंगे आपके साथ दिन में 3 बजे म्यूजिक
1: और
0: आर
1: मैं
0: में।
1: आरजे महिमा, और मुझे सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम म्यूजिक आर में दोपहर 3 बजे से। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय
0: बाय।
1: बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी। सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रदेश में प्रस्तावित 3 लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को अब रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की 4थी बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए 1 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ पूर्वांचल, जेवर और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण जून अंत तक पूरा करें। सीएम ने प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतरीन कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगी। बैठक के दौरान बताया गया कि फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 55% भूमि मिल चुकी है। वहीं मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे का एयरलाइनमेंट मंजूर हो चुका है। इस दौरान सीएम ने नोएडा, ग्रेनो और यीडा क्षेत्र में 500 ई बसों के संचालन की प्रगति की भी समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश

सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईद उल अजहा का पर्व समाज में भाईचारा और प्रसन्नता की भावना को प्रगाढ़ करेगा। इस मौके पर उन्होंने सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना भी की। इसके साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:05 आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई है। नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून, और आज के त्योहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साथ में। और आपका अपना प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। शत्रुपा का आज सेगमेंट है कौन सा? इंटीरियर डिजाइनिंग है, बागवानी है, लेकिन इसी सेगमेंट के साथ एक खूबसूरत सा, इस चंक के साथ एक खूबसूरत सा आज हम मुद्दा टॉपिक लेकर के आए हैं। और उस टॉपिक को तो जानना है, उसके बारे में बात करनी है। बहुत खास दिन है आज, आपसे हमसे यानी कि हम महिलाओं से जुड़ा हुआ, उसके बारे में बात करनी है। बस उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक खूबसूरत सा गाना सुनना पड़ेगा पहले। और वो खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर बस आ रहा है, आप इसे सुनिए, एंजॉय करिए। तुरंत वापस आते हैं हम लेकर वो खास दिन और खास बात।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और ये जो बात है हम आपसे करने वाले हैं, जिस बात के बारे में आपसे कुछ खास बात बताने वाले हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप अपना प्रोग्राम शत्रुपा का सेगमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग और बागवानी आज सुन रहे हैं। आज होता है थर्सडे है आज, लेकिन एक खास दिन है, इसलिए हम बागवानी और इंटीरियर के साथ उस खास दिन को मनाते हुए, उसको याद करते हुए, उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे और जिंदगी को बेहतर, खूबसूरत, सुकून भरा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा देखिए ना, महीना भी कौन सा चल रहा है, मई, और ये जो जून का महीना है ना, ये सिर्फ गर्मी अपने साथ नहीं लेके आता है, ये मौसम हमारे शरीर, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे घर के माहौल, खास तौर पर जो हमारे घर की महिलाएं हैं उनकी हेल्थ पर बहुत बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए आज का जो हमारा खास सेगमेंट डेडिकेटेड है एक खास दिन को। आज कौन सा दिन है आपको बताएं, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है आज। तो इस डे को लेते हुए हम आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं की सेहत, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गर्मियों के समय में खुद को हेल्दी रखना, फ्रेश एनर्जेटिक रखना, और साथ ही हमारे घर का जो एनवायरमेंट है, इंटीरियर है, रंग है, खुलापन है, हरियाली है, ये सब हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है। साथ ही एक खास बात और भी जानेंगे हम कि ये जो मौसम है और ये जो सेगमेंट है, ये आपस में जुड़ा हुआ क्यों है, आज ही का दिन खास क्यों है। आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो को, हम तुरंत आते हैं जल्दी से।

जी, और ऐसे ही गुनगुनाते बात करते करते हम पहुंच गए हैं, समय हो गया है 12:19, और प्रोग्राम शत्रुपा का ये जो सेगमेंट है, खूबसूरत सा चंक है बागवानी इंटीरियर, इसके साथ हम लेकर के चल रहे हैं। आज एक खास दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ, और साथ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए।

जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज का एक खूबसूरत सेगमेंट, ये जो सफर है हमारा आज का, ये हमारी आपकी यानी कि महिलाओं की सेहत को अपने ध्यान में रखते हुए अपने घर को खूबसूरत, कूल, काम, हेल्दी, पॉजिटिव बनाने वाली बातें कर रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम ये भी बात करने वाले हैं, चाहे हरियाली हो, चाहे इंटीरियर की बात हो, जो सुकून होता है ना वो कैसे मिलता है। हर वक्त हमें सुकून की ज़रूरत होती है और हर तरह की महिला को ज़रूरत होती है। और साथ ही बात करने वाले हैं कि किस तरह मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमारे पर्यावरण और एनवायरमेंट की स्वच्छता की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। पहले तो अगर हम ये बात करें कि महिलाओं की जो सेहत है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, गर्मी के मौसम में अगर इस बारे में बात करें तो क्या है। गर्मी के मौसम में शरीर में पसीना ज्यादा आता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए, इचिंग, रैशेस, बदबू, इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। और सैनिटरी पैड को हर 4-6 घंटे में बदला न जाए अगर, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज्यादा जो खुशबू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, सेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इग्नोर करना जरूरी है। इसमें साफ पानी से वॉश करना, हार्श जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, उनको इग्नोर करना, उनको डिनाई करना, गर्मी और नमी मिलकर के बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शन को बढ़ाती है। सही हाइजीन महिलाओं को कई इन्फेक्शन से बचा

जाती है, साथ में डिहाइड्रेशन है, वीकनेस है। गर्मियों में ऑलरेडी शरीर से पसीना इतना बुरा, इतना ज़्यादा निकल चुका होता है, किचन में काम करते सिर्फ एक घंटे में ही शरीर के कई सारे मिनरल्स पसीने के जरिए जो है बह जाते हैं। और जो हम सोचते हैं कि खाना बनाना बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है भाई। कमजोरी, चक्कर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी, शरीर में भारीपन, ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं उसको इग्नोर तो नहीं करना है। दिन भर पानी पीना है, 4 लीटर तो पीना ही है, और नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, सौंफ का पानी, ये सब पीना है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से बचना है। ये तो मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ ना, मेन मुद्दे की तरफ लौटना है हमें। मेन मुद्दे की तरफ लौटने के लिए मैं आपको बताऊँ क्या करना है। ये खूबसूरत सा गाना और सुनना है एक। ये ब्रेक नहीं लेते रहेंगे अगर हम बीच बीच में, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, चलिए आप ये खूबसूरत सा गाना सुनिए और हम तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं उस मेन मुद्दे के बारे में कि क्या है वो बात आज की खास।

0: बिल्कुल भी रोना नहीं है और ना ही हंसना है, बस एक काम करना है और वो ये काम है कि एंजॉय करते जाना है, हर दिन सेलिब्रेट करते जाना है और आज का दिन है इसे भी सेलिब्रेट करना है। हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप में कहता है, उस दिन को जानना है, उस चीज को, उस बात को जानना है। बस इसी तरीके से आगे चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल क्या पूछूंगी मैं आपको बताने वाली हूँ। सवाल पहले है लेकिन छोटा सा, ये है कि आज कौन सी तारीख है। आज 28 मई है और 28 मई को ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्यों मनाते हैं और 28 मई को ही ये दूसरा खास दिन मनाने की, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, ये भी सेलिब्रेट करते हैं हम, लेकिन 28 तारीख को ही क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का एक कारण है, चलिए कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूं इसके पीछे का कारण क्या है। कारण यह है कि ये दिन और ये महीना मीनिंगफुल माना जाता है। आज के दिन को चुनने का एक कारण खास रहा है, महिलाओं का जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लगभग 28 दिनों का होता है और आज 28 तारीख है और ये जो माहवारी होती है, पीरियड्स होते हैं, सामान्यतः जो है करीब 5 दिनों तक ही चलते हैं और इसी वजह से साल के 5वें महीने यानी मई की 28 तारीख को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में चुना गया, ताकि महिलाओं की सेहत, साफ सफाई और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और इसी समय वुमेन्स हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर खास तौर पर चर्चा की जा सके, क्योंकि महिलाओं की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। 28 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि महिलाओं की सेहत, सम्मान, जागरूकता और हाइजीन के महत्व को बढ़ावा देने का, उसके बारे में अवेयरनेस का एक संदेश है। देखिए कितना खास और कितना इम्पोर्टेंट दिन है ना आज, और बात करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, 12:30 हो गए। वैसे तो ढेर सारी बातें आपसे करनी है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हो और कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है एक खूबसूरत सा गाना हो और गाने के बाद जो है आप वापस आएं और इसी बारे में जो आज का हमारा खूबसूरत सा चंक है उसी के बारे में बात करते हुए आगे निकलें। और मैं सोच रही हूं कि बिना देरी के आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो अपनी यात्रा को खूबसूरत और बनाया जाए।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बिल्कुल, ये खूबसूरत सा दिल आपका है, आपके लिए है, और ये जो हाजिरी हमने लगाई है ना ये खूबसूरत से प्रोग्राम में, और ये खूबसूरत सा चंक आज का, और आज का जो खास दिन है, ये सब मिल करके एक ही बात बोल रहे हैं कि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपको बार बार बोलती रहूँगी भाई, ईद मुबारक हो। और ये ईद का जो खास दिन है, और आपके पास मुझे पता है दुआओं का और खुशियों का भंडार होगा आज। आपके आसपास, आपके दोस्तों में, जानने वालों में ढेर सारी खुशियां भरी होंगे, और मतलब यकीन मानिए दूसरों को खुश देख के तो अच्छा ही लगता है, नहीं? और त्योहार एक ऐसा मौका होता है जब आप खुशियां ना चाहते हुए भी फैलाते हैं, ना चाहते हुए भी। आपका दिल नहीं कर रहा होगा ना कि सामने वाले से बात ना करूं मैं, फिर भी त्योहार ऐसा मौका होता है जब आप सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लगते हैं, गले मिलते हैं और जश्न मनाते हैं, एक दूसरे की सलामती की दुआ करते हैं। ऐसे ही अगर खुद सलामत रहे तो बाकी सबके लिए कर सकेंगे। खुद का सलामत होना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये तो महिलाओं को डेडिकेटेड है। अब देखिए ना, आज ईद है, त्योहार है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं तो कहूंगी कि महिलाएं निभा रही हैं घर पे। भाई जो त्योहार बन रहा है, पकवान बन रहे हैं, जो रसोई जल रही है, वो तो सब महिलाओं से है बॉस। और मैं सुन रही थी कि जो ईदी महिलाओं को नहीं दे रहे हैं लोग, भाई कितने कंजूस हैं वो लोग, क्यों नहीं मिल रही है ईदी, मिलनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन और एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है इसके बारे में बात करते हैं। पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक सामान्य है, नेचुरल हिस्सा है। इस दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाइजीन की कमी इन्फेक्शन, इरिटेशन और कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। और अगर बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो सिर्फ महिलाओं की पर्सनल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है ये, इसका सीधा सीधा रिलेशन एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से भी है। और आज बड़ी मात्रा में सैनिटरी वेस्ट पैदा होता है, आपको पता है, अगर इस्तेमाल किए गए पैड्स या अन्य प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्पोज न किया जाए, गंदगी, पॉल्यूशन, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये। इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब सिर्फ खुद को साफ करना नहीं है, बल्कि एनवायरमेंट को भी क्लीन और सेफ रखना है। रीयूजेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। अब देखिए ना, हम इन खूबसूरत चंक्स में, इन खूबसूरत सेगमेंट्स में डेली बात एनवायरमेंट की, बागवानी की, इंटीरियर डेकोरेशन की, ऐसे प्लांट्स की करते हैं जो हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छे होते हैं। अब सोचिए अगर हम बाहर अपने हाइजीन का ध्यान न रखने के साथ साथ एनवायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं, कितना निगेटिव इम्पैक्ट है भाई, कितना निगेटिव इम्पैक्ट है। मैं तो ये कहूंगी कि हमें इस बात को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, और बस गहराई तक सोचने की ही जरूरत नहीं है, इसके बारे में बहुत बहुत विचार करने की जरूरत है। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, और भी सीरियस मुद्दों पर बात करेंगे, हैं इतने सीरियस नहीं, मौका अच्छा है, बात सीरियस लग सकती है लेकिन जरूरी है बात, जरूरी, सीरियस से ज्यादा जरूरी बात है, इसको तो ध्यान रखना जरूरी है। एक खूबसूरत सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। अच्छा, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, इसमें शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, और गाना भी पसंद है, एक्टिंग भी पसंद है, और वाइब भी पसंद है, और गाने वाला गवैया भी पसंद है। सोचिए, सुनिए, एंजॉय करिए, मुबारक हो आज का ये खूबसूरत दिन आपको।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: जी हाँ, ये है धड़कन लखनऊ की और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। और बात मेंस्ट्रुअल हाइजीन की हो रही थी और मैं सोच रही हूँ कि आपको फटाफट से सारी जरूरी बातें बता दूं, याद दिला दूं आज के खूबसूरत चंक में। और ये जो खूबसूरत सेगमेंट है आज का, ये आपको बार बार आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन का रिलेशन आपके एनवायरमेंट से कैसे है ये बता रहा है। हमने अभी बात की कि एनवायरमेंट का रिलेशन आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से कैसे है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर देखें, पर्सनली अगर जाएं, तो आपका वॉशरूम, बाथरूम मेंस्ट्रुअल हाइजीन से कनेक्टेड है और इंटीरियर में भी तो आता है। आपका वॉशरूम भी तो खूबसूरत होना चाहिए, बाथरूम भी तो अच्छा दिखना चाहिए, वाइब अच्छी आनी चाहिए वहां से भी। ये नहीं कि स्टिंकी है, बहुत ही खराब दिख रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, ये भी तो नहीं होना चाहिए। वो भी जिंदगी का अहम हिस्सा है, न जाने दिन भर में कितना समय हम वहां बिताते हैं। खैर, आपकी हमारी मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ होती है वो बाथरूम हाइजीन की बहुत बड़ी उसमें भूमिका होती है। अगर वॉशरूम साफ ना हो, वेंटिलेशन सही ना हो और हाइजीन मेंटेन ना किया जाए तो इन्फेक्शंस का हब बन सकता है बाथरूम। और बाथरूम कैसा होना चाहिए? साफ, सूखा, अच्छा, वेंटिलेशन वाला, हल्का, नेचुरल फ्रेग्रेंस वाला और उसमें लाइट भी अच्छी खासी होनी चाहिए। रेगुलरली क्लीन्ड होना चाहिए। यह है कि डस्टबिन जो आपका होना चाहिए हमेशा ढक्कन वाला ही लीजिए। अगर ढक्कन वाला डस्टबिन आपका नहीं है तो आप कोशिश करिए कि ले आइए ढक्कन वाला, और ऐसा ले आइए जो पैर से आप उसको प्रेस करके ओपन कर सके। वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और उसके बाद वो ढक्कन बंद रहता ना, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैनिटरी प्रोडक्ट्स का आपको हाइजीनिकली डिस्पोज करना है और ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनके बारे में खासकर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनका जो डस्टबिन या इनका जो बैग आप बनाएं वो अलग बनाएं डिस्पोज करने के लिए। जो भी आपके सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कप्स होते हैं, पैड्स होते हैं, इनको आप अलग से

पेपर में रखें और अलग सा ही उसकी पैकिंग आप डिस्पोज करें। उसको किसी भी गीले कचरे में या खाने वाली चीजों के साथ या जो भी मतलब इजी वेस्ट होता है उसके साथ ना रखें। इतने तो आप अवेयर हैं, हैंड वॉश, साफ पानी, फ्लोर्स, कॉर्नर्स, ये सब रेगुलरली साफ आप करते ही हैं। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और साथ में बाथरूम के इंटीरियर की अगर बात करें और आपकी वेलनेस उससे कैसे कनेक्टेड है इसकी बात करें, तो आज इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि हेल्थ और कंफर्ट से भी जुड़ चुकी है। हल्के रंगों वाला एयरी क्लीन बाथरूम आपको, हमको, मतलब हम सभी महिलाओं को मेंटली कंफर्टेबल महसूस करवाता है। अब देखिए कितना चिड़चिड़ापन होता है, नहीं गर्मी है, ऊपर से इतना पेन है, क्रैम्प्स है, और पीरियड है, पसीना है, इरिटेशन है। इंडोर प्लांट्स भी फ्रेशनेस बढ़ाते हैं, अच्छी खुशबू स्ट्रेस थोड़ा कम कर देती है।

क्लीन बाथरूम आपको, हमको, मतलब हम सभी महिलाओं को मेंटली कंफर्टेबल महसूस करवाता है। अब देखिए कितना चिड़चिड़ापन होता है, नहीं, गर्मी है, ऊपर से इतना पेन है, क्रैम्स है, और पीरियड है, पसीना है, इरिटेशन है। इंडोर प्लांट्स भी फ्रेशनेस बढ़ाते हैं, अच्छी खुशबू स्ट्रेस थोड़ा कम कर देती है। साफ और ऑर्गेनाइज्ड जो स्पेस होता है हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेवेंडर, लेमन, सैंडलवुड जैसी जो माइल्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं, वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं मूड को ठीक रखने में। और जब भी हम आप महिलाएं हाइजीन का ध्यान रखती हैं तो एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, घर में साफ, हेल्दी, पीसफुल माहौल बनाते हैं, तब उनकी फिजिकल और मेंटल वेलनेस दोनों बेहतर होती है। स्वच्छ स्वस्थ महिला स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरा खुशहाल हेल्दी जीवन बनाती है। अच्छा देखिए, इन सारी बातों के साथ मैं आपको याद दिलाना भूलूं, आज तो खास दिन है, त्योहार का दिन है, लेकिन रेगुलर डेज पे भी आप, चाहे मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात हो या मेंसेस के डेज के दिनों की बात हो या नॉर्मल डेज के दिनों की बात हो, आपने नोटिस किया है कि काम से चिड़चिड़ापन, ये करना है, वो करना है, घर का इतना सारा काम करना है, आप अपना हुलिया कैसा बना के रखती हैं? अगर आपको अपना हुलिया ठीक बना के रखने को कहा जाए तो और गुस्सा हो जाते हैं, क्या मैं साड़ी पहन के काम करूं सारा, या बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसमें और चिड़चिड़ापन आता है। पर मैं आपको बताऊं, सारी चीजें हमारी हेल्थ से ही तो जुड़ी हैं। अगर सुबह उठ करके 2 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें से 5 मिनट अगर अपने आप को ठीक करने में दे दें तो क्या बुराई है। ढेर सारी बातें हैं मुझे आपसे करने के लिए, लेकिन देर हो रही है जाने की, जाना है, अगले प्रोग्राम में जंप करना है जो आपका अपना प्रोग्राम है, खूबसूरत है, लेकिन जाने से पहले थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। आयरन की कमी हो सकती है इस दौरान, हमें शरीर से खून बहुत ज्यादा बहता है भाई, तो विटामिन सी वाली चीजें आप ज्यादा लीजिए। आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है, नींबू, आंवला, संतरा, ये सारी चीजें। कॉटन के कपड़ों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय। सिंथेटिक कपड़े थोड़े से डिस्कम्फर्ट बढ़ाते हैं, स्वेटिंग, इचिंग, रैशेस हो सकते हैं। कॉटन से हवा इजीली पास होती है, पसीना एब्जॉर्ब होता है, स्किन इरिटेशन कम होती है और शरीर को कूल कंफर्टेबल रखता है। लूज फिटिंग क्लोथ्स, हल्के कलर्स, ब्रीदेबल फैब्रिक्स, कंफर्टेबल कपड़े मूड को भी अच्छा करते हैं, शरीर को कंफर्टेबल रखते हैं और बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी फील होती हैं। ढेर सारा ज्ञान हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, त्योहार की बधाई के साथ, शुभकामनाओं के साथ साथ आपको ये बार बार बोलूंगी भाई कि हर दिन अपने आप को 5 से 10 मिनट उठने के बाद दीजिए, अपना चेहरा ठीक करिए, अपने बाल सही करिए। ये क्या जरूरत है, माना कि काम बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, पर आपको मंजोलिका बन के रहने की जरूरत नहीं है। खैर, ढेर सारी बातें और भी करेंगे हम, लेकिन आप ट्यून इन करके रखिए, खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजती हूँ। और आज प्रोग्राम शत्रुपा के खूबसूरत सेगमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग और बागवानी, जिसमें हमने बात करी थी महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, क्योंकि आज है 28 मई वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का प्रोग्राम और अगले में करते हैं जंप।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हुए लिखा कि वीरता और बौद्धिकता से भरा उनका व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की क्रांतिकारी चेतना और संघर्षपूर्ण जीवन ही हमें सदैव राष्ट्रहित में समर्पण, साहस और अटूट संकल्प का मूल्य संदेश देता रहेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान तथा अन्य हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों की आजीविका बेहतर बनाएं और पोषण युक्त आहार भारत की जनता को उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15

जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। वहीं नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

1:05 हो गए हैं और ये खूबसूरत समय, खूबसूरत दिन, आज का जो प्रोग्राम है होंठों पे तेरी बात, इसकी शुरुआत हो चुकी है। खूबसूरत दिन, खूबसूरत समय की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज का जो दिन है ना वो खास है। त्योहार है और त्योहार के जो समय है ना वो खुशियां ही खुशियां होती हैं, इसीलिए खूबसूरत खुशियां खूबसूरत होती हैं। आपको फिर से मुबारक हो ईद की, और इन मुबारकबाद के साथ ही मैं आपको जल्दी से आज के प्रोग्राम का ये जो टॉपिक है होंठों पे तेरी बात का ये बता देती हूँ। और ये होंठों पे तेरी बात का टॉपिक रहा कि आज खुशी के मौके पे ये मुद्दा जो है, त्योहार क्या होता है, बस इसी पे आप जो है अपनी बात लिख करके हमें भेजिए। 100.7 FM रेनबो ट्यूनिंग किया है और FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com ये जो हमारी मेल आईडी है, इस पर अपने मेल्स पहुंचा दीजिए।

0: में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमद और रफ्त के लिए पहले मरहले में 110 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी यकीनी करने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी मीटिंग में सदारत करते हुए वजीर आला ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गीडा हल्के में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से मुजव्वजा परवाज से कबल अवामी नकलो हमल निजाम को पूरी तरह मुस्तहकम किया जाए। मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से तौसी पर भी जोर दिया। ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के जरिए अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे की याद में मनाया जाता है। सुबह से ही इस मौके पर मसाजिदों में खसूसी नमाज का एहतमाम किया गया, जिसके बाद कुर्बानी के फराइज अदा किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत गोरखपुर, आगरा, कौशाम्बी, कानपुर शहर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, इटावा, शामली, वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और सहारनपुर में हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नमाज अदा की गई। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले ही सभी सीनियर पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करके ये यकीनी करने को कहा है कि कोई नई रवायत शुरू न हो और न ही पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी दी जाए। दरियसना गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का सिलसिला कल भी जारी रहा। कई अजला में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से लू से राहत का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के कई हिस्सों में कल से आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का कयास जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, जालाबारी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। दरियसना मशरकी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। कुछ मकामात पर जालाबारी के भी इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सिरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: वेलकम बैक, आपके अपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ को और आपका अपना प्रोग्राम होठों पे तेरी बात चल रहा है और आज जो मौका है, जो खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है और हमने बस छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बात हो सकती है। खुशी क्योंकि बड़ी होती है और खुशी खूबसूरत होती है, तो आज छोटी सी बात आपके होठों पे जो आए आप हमसे साझा करें, वो बात इस बारे में होनी चाहिए कि त्योहार क्या होता है, आपकी नजर में त्योहार क्या है। बस ऐसी ही छोटी सी खुशियां आपको हम तक पहुंचानी है, आप बस एंजॉय करिए, खुश रहिए, अपनी होठों की बात हम तक पहुंचाइए। और मैं देख पा रही हूं कि कुछ होठों की बातें हम तक पहुंच भी चुकी हैं। शैलेश कुमार के हैंडल से हमें मेल आया है, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, अपनी हंसी के मालिक खुद बनो वरना यहाँ रुलाने वाले लोग बहुत बैठे हैं। और इन्होंने अनवारुल सर को नमस्कार सलाम आदाब लिखा है, आज मेरी बहन अपनी ससुराल लखनऊ चले गई, मेरे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बुखार भी आ गया और सारा पीहू स्नेहा सोनी मनु वंदना रोशनी बबीता यासिर भैया जी को मेरा नमस्कार। अच्छा नीलू जी, आप क्या कहना चाहती थी आप, मतलब आप बताइए, आपसे चंद्रकला बात कर रही हैं, आपने अनवारुल भैया को, ठीक है अनवारुल जी को हम आपको आपका जो है सलाम पहुंचा देंगे, लेकिन हमें भी तो आप कुछ सलाम कर लेती हैं, आपको बुखार है, हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं, आप सेहतमंद रहें, लेकिन होठों पे तेरी बात के हिसाब से जो बात है वो हुई नहीं मुझे लगता है। अगली मेल जो हमारे पास आई है वो है मोनू सेठ जी की, इनकी जो मेल हमारे पास आई है वो आज के मुद्दे पर ही है शायद, इन्होंने छोटी सी बात लिखी है, साफ सीधी, खुशियों के साथ खुश रखें और खुश रहें, ये मोनू सेठ जी ने मेल किया है। बिल्कुल, और खूबसूरत आपकी मेल और छोटी सी बात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान रजा जी का मेल आया हमारे पास, इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है, चंद्रकला मैं आपका और पूरी आकाशवाणी एफएम रेनबो का सुल्तान रजा की जानिब से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक। अच्छा इन्होंने मुबारकबाद दी है, इन्होंने लिखा है, जो इस वक्त एफएम रेनबो को सुन रहे हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से, सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल, मोनिश, सादिक, और इन्होंने ईद मुबारक लिखा है और इन्होंने लिखा है, हर त्यौहार अपने आप में खास होता है और त्योहार जो है आपसे भाईचारा प्रेम हमारे बिछड़े हुए लोग बसा लिए मिल जाते हैं और खुशियां बांटने में सब लोग साथ होते हैं, वरना तो इस जिंदगी में सब अपने कमरों में गुम हो चुके हैं, अपने मोबाइल्स में गुम हो चुके हैं, लेकिन त्योहार आते हैं तो सब लोग एक साथ होते हैं, घर में चाहे गुजिया दिवाली की बात हो या फिर सेवैयाँ की हो, जब साथ में बैठते हैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है, वो गले एक दूसरे से मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो आज वही कहीं ना कहीं हमारी पुरानी चीज़ों को याद दिलाता है जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। सुल्तान रजा जी, आपने जो बात कहनी चाही वो हमें क्लियरली समझ आ चुकी है, त्यौहार का मतलब मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए जो मन में गिले शिकवे हैं उनको भुला कर फिर से गले मिलना है। बहुत शुक्रिया सुल्तान रजा, आपका मेल हमें मिला और बहुत खुशियों भरा मेल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबू अंसारी जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखी है हमें मेल, कहाँ से, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से, और आपने हमें लिखा है, नमस्ते चंद्रकला जी, नमस्ते बाबू अंसारी जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने लिखा है, आप कैसी हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको पूरी आकाशवाणी टीम को ईद उल अधा की मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हम दुआ करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी जीवन में जो है सफलता आए, खुशियां आए। सुधाकर जाधव जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने टॉपिक के बारे में लिखा है, त्योहार खुशी का माहौल है, हम सभी भाई एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, चाहे हम हिंदू मुसलमान कोई भी हों, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दोनों समाजों को एक दूसरे से मिलजुल करके एक दूसरे की हंसी खुशी में सहभागी होते हैं। त्योहार एकता का संदेश है। सुधाकर जाधव जी ने हमें लिखा है काले गांव जाफराबाद मराठवाड़ा से, और बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, आपने बहुत दूर से हमें मेल पहुंचाया है और त्योहार पर बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी। और रामराज जी का मेल आया है, इन्होंने हमें लिखा है पहाड़ीपुर रायबरेली से, और इन्होंने लिखा है बकरीद का त्यौहार है, त्यौहार का मतलब सब कोई मिलजुल कर रहे और पिछली पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे से गले मिले। हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेल के लिए और आपके मुद्दे पर बात के लिए। रामेश्वर जी का मेल आया है, इन्होंने लिखा है होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन जी को सप्रेम नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, हम आपका प्रोग्राम प्रतिदिन सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं, खुशियों का त्योहार है, ईद है, सबसे बड़ी खुशी क्या होगी, ईद की शुभकामनाएं देता हूँ सभी श्रोताओं को और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्होंने हमें मुंगीसापुर कानपुर देहात से लिखा है, रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, इन सभी का नाम शामिल किया है। रामेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और चैनल है 100.7। ओ माय गॉड।

क्या खूबसूरत राइमिंग हो गई। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, और थोड़ा राइमिंग टूट गई क्योंकि सब राइमिंग नहीं मिल सकता। आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो खूबसूरत है और आपकी मेल्स भी खूबसूरत हैं। इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर आप हमें मेल पहुंचाइए कि त्यौहार आपकी नज़र में क्या है। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रही हूँ, कहीं खो ना जाइएगा इस खूबसूरत गाने की मोहब्बत में। मुझे क्योंकि ये गाना इतना पसंद है और मैं जानती हूँ कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और बिना देरी के ये गाना बस आपके रेडियो सेट पर ये भेजा। बस मुझे शुक्रिया ज़रूर बोलिएगा पक्का इस गाने के बाद।

और ये जीना जो हसीन है ना, ये खूबसूरत आपकी सेहत से, आपकी खुशियों से, आपके अपनों के साथ से है। और ये जो मौका है त्योहार का, ये हमें यही बताता है कि जो खुशियां हैं ना अपनों के साथ अगर बांटें तो अपनों का प्यार बढ़ता है, और अपने अगर साथ रहें तो फिर किस बात की चिंता है। और इन्हीं बातों के साथ हम मेल्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ को बढ़ते हैं। और ये जो प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात, ये खूबसूरत प्रोग्राम है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि आपके मन की बात, आपके होठों की बात यहाँ आती है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किसी के मन की बात जानने में। वकील अहमद जी की मेल हमारे पास आई है, इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, इनकी आवाज, इन्होंने लिखा है मेरी आवाज इनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। और इन्होंने लिखा है ईद उल अजहा की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, अर्ज मंजूर करने का कोई तो बहाना होगा, मेरी खुशियों की कसम आपको आना होगा। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया, शमा, रिंकी पिंकी, महक, गुलफशा, इन सभी का नाम लिखा है और साथ में अमन नवाब का भी नाम लिखा है। वकील साहब आपने ये नहीं लिखा है कि त्योहार का मतलब आप क्या समझते हैं, त्योहार क्या होता है। खैर, आपकी दुआओं के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ये जो दिन है आपका खुशियों भरा हो, खूबसूरत हो। और एक मेल हमारे पास है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी की, इन्होंने लिखा है प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, अच्छा इस हैंडल से आया है, पिंकू सोनी टिकैत नगर से, और सब लोग अपने आप को भीषण गर्मी से और अपने बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और यही कहना है सभी सुनने वालों से। अच्छा, सिर्फ आपने ये संदेश भेजा है, लेकिन जो होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम है वो ये है, प्रोग्राम में बात मुद्दे की ये है कि त्योहार आपकी नज़र में क्या है, इस बारे में आप हमें लिख भेजिए। और अगली मेल जो हमारे पास है वो जावेद अख्तर जी की है, इन्होंने लिखा है एफएम रेनबो की टीम को नेक ख्वाहिशों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, त्योहार हमारे जीवन में जब भी आता है एक नया जोश हमारे लिए, एक नया संदेश लेकर आता है, भाईचारगी पैगाम देता है, हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर कोई भी त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बरकरार रखते हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार तकीबा शाहीन का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, आपको बहुत मुबारक हो ईद की। अगली जो मेल हमारे पास है वो है महेंद्र देपन जी की, और इन्होंने हमें मेल किया है कहाँ से, आपने गांव रूण जिला, अच्छा आपने राजस्थान से हमें मेल किया है, और इन्होंने लिखा है सादर नमस्कार, इन्होंने साथ में लिखा है अब कैसे हो मैम जी, आशा करता हूँ आप पहले से बेहतर होंगे और जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। बस 15-20 दिन की और बात है महेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ख्याल रखा, मेरी सेहत अब ठीक है, बस वही बात है हड्डियां जुड़ने में थोड़ा समय लगता है, मैं वैसे फिलहाल ठीक हूँ। और इन्होंने लिखा है आज के विषय पर मेरा मानना है कि त्योहार वही है जिसमें खुशियां हो, साथ ही पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित हो, और जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखना, किसी भी बेजुबान को कष्ट न होना, प्रकृति का सम्मान, दया की भावना, वही त्योहार है। और बहुत शुक्रिया आपका, और आपने खूब सारी मंगल कामनाएं भेजी है महेंद्र जी, आपका बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। रितेश जी का मेल हमारे पास है, और रितेश जी ने लिखा है कि आपने क्या लिखा है रितेश जी, आपने लिखा है नमस्ते, कैसी हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। रितेश जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, और इन्होंने बकरीद की शुभकामनाएं दी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो आपने भेजी नहीं है ना। बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है आदरणीय प्रसारक चंद्रकला दीदी जी को नमस्कार, लिखा है नमस्कार बसंत जी आपको भी, इन्होंने लिखा है आज मेरी पोती नन्ही सी अन्विका की प्रथम जन्म दिवस पर आपकी दुआ आशीर्वाद की कामना करता हूँ। क्या बात है, आपकी पोती अन्विका को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, आपकी पोती खूब खुशी से झूमें, खेलें, हंसें, कूदें और स्वस्थ रहें, खूब खेलें और खूब नाम कमाएं। और बाकी आपने लिखा है नाम शामिल करने हेतु शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए तो आज डबल खुशी का दिन है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं
और मैं आपको वादा करती हूँ वो खूबसूरत सा गाना भी उसके बाद जो है

0: आपको सुनाऊंगी, और वो खूबसूरत सा गाना जो होगा उसके लिए भी आप मुझे शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि वो जो गाने हैं ना ये मेरे दिल के करीब हैं और मैं जानती हूँ कि ये जो गाने हैं ये बहुत पसंद आएंगे आपको। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, और ये छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम आते हैं वापस।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:39 और मैं यही सोच रही हूं कि इकरार इजहार होने का भी डर लगता है क्या, कहीं हो गया तो? हाँ वैसे हो सकता है, डर लग सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद क्या होगा इसका डर लग सकता है, मुझे पक्का पता है, यही वाला। हम 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ। मैं भाई बार बार याद दिला देती हूँ आपको, ताकि आप भूल ना जाएं, खो ना जाएं, गाने की मौज में कहीं और ना निकल जाएं। बस यही है, बस पल भर की जो खुशी है ना, वही सबसे जरूरी होती है। अब देखिए जितनी देर तक ये गाना चल रहा था, उतनी देर तक मैं किसी और दुनिया में थी, और यही सोच रही थी कि आप भी कहीं किसी और दुनिया में पहुंच गए तो प्रोग्राम का क्या होगा फिर। खैर, बसंत कुमार सिन्हा जी का फिर से मेल हमारे पास आया है, और उन्होंने मुझे लगता है कि हमें लिखा है। अच्छा बसंत कुमार सिन्हा जी, आप ये लिखना भूल गए कि आपने दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से लिखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उतनी दूर से हमें मेल पहुंचाई है। और सुल्तान रजा जी की मेल हमारे पास आया है, फिर से आई है, और आपने क्या भेजा है हमें पता नहीं है सुल्तान जी, और आपने बहुत शुक्रिया जो भी आपने लिखा है ये हमें। और बेनित कुमार जी का मेल हमारे पास है, मेरे दोस्तों को इन्होंने लिखा है, ईद की बहुत बहुत बधाई लिखा है। विनीत कुमार, अच्छा आपने इंग्लिश में बेनित कुमार लिखा है और हिंदी में विनीत कुमार, ओ हमसे गलती हो गई। विनीत कुमार जी ने लिखा है, ग्राम अर्थपुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, होठों पर मेरी बात कार्यक्रम करने वाली चंद्रकला बहन जी को और हमारे दोस्तों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हमारी तरफ से बधाई आज के त्योहार की। मेरा कहना है कि सभी को मिलजुल करके त्योहार मनाना चाहिए, कोई भी त्योहार हो। सभी हमारे दोस्तों को, भाई बहनों को, हमारे देशवासियों को भाईचारा निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका विनीत कुमार जी हमें मेल करने के लिए। और ये जो आज प्रोग्राम होठों पे तेरी बात कार्यक्रम में बात हो रही है, वो हो रही है कि आपकी नज़र में त्योहार क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्योहार क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि त्योहार क्या है? तो जावेद अख्तर साहब ने दोबारा लिखा है कि गुड आफ्टरनून चंद्रकला जी, कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में जो गाने आप तक हम हाँ आप हम तक पहुंचा रहे हैं, वाकई गीतों का कोई जवाब नहीं। आपकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में एक जान फूंक दी है। क्या शहद के जैसी मीठी आवाज है, जिसे सुनकर तबीयत शाद हो गई। आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इतनी तारीफ लिखी है ना कि अब हम यहीं स्टूडियो में बैठे बैठे लाल हो गए हैं, और हम भी खुश हो गए हैं, हम इसी को अपनी ईदी समझ ले रहे हैं और बहुत खुश हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी तारीफ के लिए, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरीके से सभी को तारीफ कर करके खुश करते रहें, और आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनके भी आप तारीफ कर दीजिएगा। और मेरी दुआ है दिल से कि आप का, बाकी सभी श्रोताओं का, सुनने वालों का त्योहार बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो। मैं सोच रही हूं कि एक बेहतरीन सा झमाझम गाना सुना जाए। आज बहुत दिनों बाद ये गाना सुन रही हूं, और इस तरीके के गाने सुनने का दिल मेरा आज इसलिए है क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जश्न का समय है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है सबको खुश देख के।

और 1:48 हो गए हैं, और जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ चल रहा है ना, ये खूबसूरत गाना, मतलब मेरा इतना दिल था इसको सुनने का अभी, और मैंने सोचा कि ये जो वाइब है ना, ये बरकरार रहनी चाहिए, और मेल्स का जो सिलसिला है वो चल रहा है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। अगली मेल हमारे पास रामेश्वर जी की आई है, इन्होंने लिखा है, अच्छा देखिए जो बीट है ना, मेरे मन से जा नहीं रही, मेरा दिल कर रहा है कि इसी को सुनते रहूं, लेकिन इसी वाइब के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ते रहना चाहिए ना। रामेश्वर जी ने लिखा है, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत करता चंद्रकला जी को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी रामेश्वर जी प्यार भरा नमस्कार। इन्होंने लिखा है, आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हॉटमेल, ये हॉटमेल नहीं है, होठों पे तेरी बात है, प्लीज प्लीज हमारा भी मेल शामिल कर लें। अच्छा इन्होंने लिखा है, ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर से, और रामेश्वर जी आप थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि जो समय है ना वो अभी बहुत ज़्यादा है, और समय जो है वो मतलब ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी हमें जो है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हॉटमेल तक पहुँचने के लिए। और ये जो खूबसूरत सा गाना है, इसी की वाइब मैं आपके रेडियो सेट पर बराबर बना करके रखूंगी, तो इसलिए आपको ट्यून इन करके रखना है 107.7 FM रेनबो। अगला जो मेल हमारे पास है गणेश दत्त जी का, इन्होंने लिखा है कि हेलो मैम, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त जी आपका, आपकी मेल के लिए। इन्होंने लिखा है, त्योहार का मतलब होता है आपसी प्रेम, बड़ों के प्रति आदर सिखाता है, और आप सभी श्रोताओं को ईद मुबारक हो। इन्होंने लिखा है, शिवा शर्मा गणेश दत्त आजमगढ़ से इन्होंने मेल की है। गणेश दत्त जी आपकी मेल के लिए बेहद शुक्रिया। और ये जो खूबसूरत वाइब हमारी चल रही थी, ये मैं सोच रही हूँ कि इसको बराबर मेंटेन करके रखा जाए, और बस मेंटेन करते हुए ये रहा अगला गाना आपके रेडियो सेट पर, और आप कहेंगे कि क्या गाना सुना दिया, एकदम वाइब बनी रही। और ये जो वाइब बनी रहेगी ना, इससे आपको और मजा आएगा, और मुझे लगता है कि बिना देरी के हमें इसे सुन लेना चाहिए।

अच्छा बताने, इस तरीके की वाइफ से आपने कभी रिलेट किया कि नहीं किया? और मैं तो नहीं जानती, लेकिन ये जो गाने हैं ना, इन दोनों की रिदम मुझे एक जैसी लगती है। खैर, प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को वाइंड अप करने का समय है। आपको फिर से आपके त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी खुशियां जो हैं ऐसे ही बनी रहें और आप खूब इंजॉय करें। और बस एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। लेकिन जो अगला प्रोग्राम है न्यूज ब्रेक के उस पार आएगा, वो है हॉटमेल, आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आप फरमाइश भेजते हैं हमें और आपकी फरमाइशें हम पूरी करते हैं। तो खैर, ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, इंजॉय करिए और तुरंत वापस आते हैं।

0: videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down 4 Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last 8 after Thailand's world number 2 Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
4: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
5: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया।

0: बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और

लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:33 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, हॉट हॉट मेल, और सच में गर्मी इतनी ज्यादा है कि प्रोग्राम हॉट मेल ही लग रहा है सुनकर के। खैर, आपकी फरमाइशें जो हैं बहुत सारी हैं, और इतनी सारी फरमाइशें हैं कि बहुत सारी, ढेर सारी। सुधन बाबा का मेल हमारे पास है और आपने हमें मेल किया है, किसी भी गीत में शामिल करें। और नरेश पंडित सुधन बाबा, आपने दो दो नाम लिखे हैं अपने भाई, आपने नाम क्लियर करिए। कोई लिसनर हमें लिख ही रहे थे सही कि अपना नाम गलत लिखते हैं, कुछ दूसरों का नाम गलत लिख करके भेजते हैं। खैर, संजय ढिंगिया जी की मेल हमारे पास है बागपत उत्तर प्रदेश से। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया जी का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है साथ में। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है निसार अली जी की। इन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है और किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। धनौरी टेलीवाला उत्तराखंड से आपने मेल किया है हमें। निसार, सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, अयान बाबू का नाम शामिल किया है। जो अगली मेल हमारे पास है वो है आर कुमार की और वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा का नाम शामिल किया है। और कोई भी गीत सुना दीजिए आपने साथ में लिखा है। और अगली मेल हमारे पास है वो है गणेश दत्त जी की मेल, और इन्होंने हमें मेल किया है। गणेश दत्त गोंड विशाल शर्मा, आपने लिखा है महरूपुर, अट्रोलिया, आजमगढ़। अच्छा, आपके यहाँ के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं, और इन्होंने लिखा है सुपरमार्केट चलाते हैं, लेकिन आपने फरमाइश तो लिखी नहीं है गणेश जी। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है बिट्टू गगनेजा जी की। बिट्टू गगनेजा जी ने लिखा है ईद मुबारक, और जलालाबाद वेस्ट से आपने मेल किया है। सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी, निमित का नाम शामिल किया है। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है सरफुद्दीन अंसारी की। इन्होंने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। बक्सर बिहार से आपकी मेल आई है। सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू का नाम शामिल किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अगली जो मेल हमारे पास है सुमेरा परवीन की, इन्होंने लिखा है ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी परिवार का नाम शामिल किया है। बेहद शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और मोहम्मद आमिर का मेल हमारे पास आया है करेली जिला बरेली से। करेली जिला बरेली, क्या बात है, राइम भी हो रहा है। मोहम्मद आमिर अंसारी, माहे नूर, शमीम, नसरीन, समा, इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। और अगला जो मेल हमारे पास है वो है तौहीद रहीम जी की, और तौहीद जी ने लिखा है कैसे हैं आप, मलिहाबाद से हैं ये, और इन्होंने हमें लिखा है प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और बकरीद मुबारक लिखा है। तो आपको भी बकरीद मुबारक हो, और आपने हमें भाई मतलब दोपहर के समय आपने जो है ललचवाने वाला काम किया है, सेवई की फोटो भेज दी है आपने और हमें जो है भूख लगने लगी है अब। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे काम मत किया करिए भाई आप, ये खाने की फोटो मत भेजा करिए। खैर, दोपहर के समय। और जो अगली मेल हमारे पास है पंजाजी नावकर जी की, और इन्होंने हमें मेल किया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल और नारायण सोपान, आशीष जी का नाम शामिल किया है गाने की फरमाइश के साथ। और अगली मेल जो हमारे पास है, हम आपको पहले बता रहे हैं कि जितने भी मेल्स हमारे पास रिपीटेड आएंगे हम उन मेल्स को शामिल नहीं करेंगे। जितेंद्र नामदेव जी का मेल हमारे पास है, पोस्ट खतरौधी, मैं तो पढ़ नहीं पा रही ये आपने क्या लिखा है, और शहडोल मध्य प्रदेश से आपने मेल किया है, गाने की फरमाइश की है। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक आरूही, सौम्या जी का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है एम के राज जी, मुनीश कुमार राज जी का, भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से मेल किया है। और शुभ दोपहरिया आपने लिखा है, एफएम टीम को नमस्कार लिखा है, हर घंटे लाजवाब, रोज सुनता हूँ, गानों का सिलेक्शन, आपकी बातें दिल जीत लेती हैं लिखा है। और गाने की फरमाइश के साथ आपने लिखा है आपका पक्का श्रोता मुनीश कुमार राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीताराम कांगड़ा जी की मेल हमारे पास है एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट नाम का नाम शामिल किए हैं। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है
मुकेश कश्यप जी की। मुकेश कश्यप जी ने जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल किया है। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलबीर का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है कि कोई सा भी गीत सुना दें। प्रकाश बोरगांवकर जी का मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश के साथ सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से मेल किया है। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, स्वीट, अंशुमन, आपने इन सब का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है, उस मेल तक पहुंचने के लिए हमें अगला पन्ना खोलना पड़ेगा। अगला नरेश जी की मेल हमारे पास है और नरेश जी ने गाने की फरमाइश की है खैल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल और शिवाजी रोहतक से पीयूष, कोयल, डुग्गू, इन सब का नाम शामिल किया है। महेंद्र देपन जी की मेल है हमारे पास, लेकिन वो देखिए देखते अगले पन्ने में खिसक गई। और महेंद्र देपन जी की मेल इन्होंने लिखी है, नमस्कार, गांव रूण, जिला नागौर, राजस्थान से एफएम रेनबो लखनऊ का नियमित श्रोता हूं और कार्यक्रम हॉटमेल पसंद है। आज इन्होंने विशेष फरमाइश तो नहीं करना चाहता, बस अपने परिवार के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहता हूं। और इन्होंने लिखा है, मंच के माध्यम से मेरे बच्चों राजवीर देपन, मोनिका देपन, मेरे भाई सुरेश प्रजापत और मेरी प्यारी बहनों सुमित्रा बंजारा, रोशनी रावत और बबीता राव जी का नाम लेते हुए उन तक मेरा स्नेह और प्यार पहुंचाने की कृपा करें। महेंद्र जी, आपकी मेल के लिए बेहद शुक्रिया, हमने बिल्कुल आपकी मेल पढ़ दी है। लाल गिरी जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और किसी भी गाने में फरमाइश शामिल करने के लिए लिखा है, रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से आपने मेल किया है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया लालगिरी जी आपका। और ये खूबसूरत सा गाना आपने फरमाइश की है, ये गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 2:46 हो गए हैं और समय बहुत तेजी से भागता जाता है, समय किसी का होता नहीं है। खैर, अगली जो मेल हमारे पास है वो है किसकी, सीताराम काकड़ा जी की। आपने एकता कॉलोनी रोहतक से मेल की है, गाने की फरमाइश की है आपने। ओ माय गॉड, ढेर सारी मेल्स हमारे पास, इतनी सारी मेल्स हैं कि क्या बताएं। महेश बोहरा जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, महेश बोहरा अजमेर राजस्थान से मेल किया है और नमस्कार प्रणाम लिखा है। इन्होंने लिखा है, आज मेरी भी अटेंडेंस लग जाए तो कम से कम ये मलाल नहीं रहेगा कि कभी एफएम लखनऊ से मुलाकात नहीं हुई, और किसी भी एवरग्रीन सॉन्ग में एडजस्ट कर लीजिएगा, इन्होंने लिखा है। महेश बोहरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। बिल्कुल, रेनबो लखनऊ ने आपकी अटेंडेंस ले ली है और आप जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी बार चाहें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। राजेश वर्मा जी का मेल हमारे पास है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण

0: एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेल किए हैं, इसीलिए आपका मेल तो हम आज नहीं ले पाएंगे। बार बार बोलने के बाद भी आप अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही मुश्किल काम है ये, तो फिर आपकी वजह से कई सारे इंपॉर्टेंट मेल्स दब गई होंगी। साई गायकवाड़ का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। हमें नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। अगली मेल जो हमारे पास है वो किन की है ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट जाना पड़ेगा। और अगली जो मेल हमारे पास है वो आई है, देखिए कितनी सारी मेल्स रिपीटेडली आपने भेजी हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, और कई सारे मेल्स हमने पढ़ लिए हैं। सुमेरा परवीन का भी मेल हमने पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान देने वाली होती हैं। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है दारा सिंह जी की, इन्होंने चौटाला हरियाणा से मेल किया है। दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अगली जो मेल हमारे पास है ये देखिए, सुमेरा परवीन ने हमें कम से कम 50 मेल्स किए हैं, तो सुमेरा जी आप भूल जाइए आप मेल करना हमें, क्योंकि आप बार बार इतनी इस तरह, ये तो बहुत ही खराब बात है। खैर, अगली जो मेल हमारे पास है वो है डी के रणधीर गुप्ता जी की मेल हमारे पास आई है, और इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, और शुभ दोपहरिया लिखा है इन्होंने, और ओखला संगम विहार दिल्ली से आपने मेल किया है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी का नाम शामिल किया है। और मोहम्मद रिजवान का मेल हमारे पास है, अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने लिखा है चंद्रकला सिस्टर आप कैसी हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ रिजवान जी, और आप कैसे हैं। इन्होंने लिखा है ईद उल अधा मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद रिजवान फरिंदा संडीला हरदोई से प्रोग्राम इन्होंने लिखा है और गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल हमें करने के लिए। अगली जो मेल हमारे पास है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी की है, और इन्होंने हिंदुस्तान रेडियो मित्र से बने बुजुर्ग पलेरा टीकामण मध्य प्रदेश से हमें मेल किया है, और गाने की फरमाइश में इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल करें। ब्रजेंद्र जी, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष जी का नाम इन्होंने शामिल किया है। और अगली जो मेल हमारे पास है कौशिक वाधवाना जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने राजकोट गुजरात से मेल किया है। कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा, महेश वडवाना परिवार इन्होंने लिखा है का नाम शामिल किया है। हेलो नमस्ते चंद्रकला जी, केम छो? कौशिक वाधवाना जी मजा मा, आप बताइए केम छो? और इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी हमें मेल करने के लिए। अशोक कुमार जी की मेल हमारे पास आ गई है, इन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून, रायपुर ओडाला मितौली लखीमपुर खीरी से मेल किया है और गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और मनोज बंसल जी की मेल हमारे पास है, मनोज बंसल हांसी हरियाणा से, नमस्कार लिखा है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। और अगली मेल जो हमारे पास है वो नरेश जी की है, और नरेश जी आपका हमें मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेल शामिल हो चुकी थी नरेश जी, हो सकता है आप सुन ना पाए हों। खैर, ढेर सारा शुक्रिया आपको हमें मेल करने के लिए, और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दो बजकर के 56:57 हो चुके हैं और बिल्कुल 57 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल समय नहीं है अपने पास, बस इसी बात के साथ कि अगर आपकी मेल कोई छूट गई हो, ढेर सारी मेल्स होती हैं और 10-10, 15-15 मेल्स के बीच अगर कहीं कोई मेल मिस हो गई हो तो निराश मत होइएगा। ढेर सारे प्रोग्राम्स हमारे कल फिर दिन आएगा और आपको फिर से त्यौहार की मुबारकबाद। न्यूज़ ब्रेक के उस पार आपका अपना प्रोग्राम सतरंगी दुनिया आपका कर रहा है इंतजार। ये खूबसूरत सा गाना, बाय बाय, टेक केयर।

102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, आ गई हूँ मैं स्टूडियो में आज महिमा लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम म्यूजिकार। दोस्तों, गर्मी जिसने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सूरज ऐसे बरस रहा है जैसे आग के गोले आसमान से गिर रहे हों, सड़कें तवे जैसी गर्म और टेम्परेचर अरे वो तो 45 के पार। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि अगले एक घंटे तक मैं लेकर आई हूँ म्यूजिक, मस्ती, इन्फॉर्मेशन और गर्मी से बचने के दमदार टिप्स। तो पानी की ठंडी बॉटल रखिए अपने पास और जुड़ जाइए मेरे साथ प्रोग्राम म्यूजिक आर्ट में और एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का ये फर्स्ट सॉन्ग।

हाय गर्मी। जी हाँ, वाकई बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने चेहरे पर हेयर ड्रायर चला दिया हो, क्योंकि सुबह 9 बजे से ही धूप अपना तेवर दिखाने लगती है। साथ ही ये गर्मी हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए करना क्या है कि खूब पानी पीजिए, खाली पेट धूप में मत जाइए, बाहर निकलना ज़रूरी हो तो सिर को ढक कर रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके पेय पदार्थों का सेवन करिए, और कोशिश करिए कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कम से कम धूप में बाहर निकलिए, क्योंकि दोस्तों हमें इस गर्मी से लड़ाई स्टाइल से नहीं बल्कि समझदारी से जीतनी है ना।

जी हाँ, अच्छा लगता है जब हम इस गर्मी में कूलर और एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि हर साल समर थोड़ा ज़्यादा गर्म होता जा रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे की वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, साथ ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, पॉल्यूशन और फॉरेस्ट कटिंग भी टेम्परेचर को एक्सिलरेट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में भी छोटे छोटे एक्शंस का असर होता है, जैसे बेवजह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, प्लास्टिक का इस्तेमाल और पानी का वेस्टेज। इसलिए अगर हम सब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं तो इस बढ़ती गर्मी और टेम्परेचर को रोक भी सकते हैं। फिलहाल आप मुझे बताइए कि इस भीषण गर्मी में आप खुद को कैसे कूल रखते हैं और इसके लिए क्या उपाय करते हैं, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ आपके आंसर का इंतजार। AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना आंसर। तब तक मैं प्ले कर रही हूँ प्रोग्राम म्यूजिक आर का ये नेक्स्ट सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, इस सॉन्ग के पहले मैंने आपसे पूछा था कि इस भीषण गर्मी में आप खुद को कूल रखने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो नाव से राघव का मैसेज आया है, आंसर दिया उन्होंने कि नमस्कार आरजे मैम, आपको भी नमस्कार राघव। और ये लिखते हैं कि गर्मी के मौसम में मैं खुद को कूल रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। घर से बाहर निकलते वक्त कैप और कॉटन के कपड़े यूज़ करता हूँ, साथ ही आम पन्ना और नींबू पानी भी रोज़ पीता हूँ, जिससे बॉडी फ्रेश और ठंडी रहती है। तो भाई, हम सबको भी यही ट्रिक अपनानी चाहिए खुद को कूल रखने के लिए। फिलहाल प्रोग्राम म्यूजिक आर में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम यूं ही कंटिन्यू रहेगा, और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। प्रोग्राम म्यूजिक आर में अभी हाजिर होते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मंजर 2.2 पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर, मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। दोस्तों, गर्मी हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों को भी परेशान करती है, इसलिए अपने घर के बाहर छत या बालकनी में पानी का एक बर्तन उन बेजुबानों के लिए ज़रूर रखें। आपका ये छोटा सा काम ना इनकी ज़िंदगी बचा सकता है, तो इसकी शुरुआत आज से ही करिए और अपने साथ साथ इस गर्मी में उन बेजुबानों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल तो एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग जो मैं प्ले कर रही हूँ। बने रहिए 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर एफएम रेनबो कानपुर के संग।

जी हाँ दोस्तों, गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन जब गाने दिल से बजते हैं ना, तो मौसम अपने आप कूल लगने लगता है। तो आप खुद को कैसे कूल रख रहे हैं फिल्म रेनबो कानपुर को 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर सुनकर या एसी कूलर की ठंडी हवा में? हमें लिख भेजिए, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। वैसे दोस्तों, गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन लोगों को जो दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय, ट्रैफिक पुलिस, रिक्शा चालक, मजदूर। इन लोगों को और इनकी मेहनत को हमारा सलाम। साथ ही अगर आप बाहर निकले और किसी को जरूरत लगे तो उसे एक पानी की बोतल देना न भूलिएगा, क्योंकि गाइस, इंसानियत का कोई मौसम नहीं होता।

जी हाँ, ये मस्ती चलती रहेगी क्योंकि आप जुड़ चुके हैं एफएम रेनबो कानपुर के साथ 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर आरजे महिमा के साथ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

की फ्रिक्वेंसी पर आप है एफएम रेनबो कानपुर के साथ और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर मेरे यानी आरजे महिमा के साथ। दोस्तों, गर्मी में सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारा दिमाग भी जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा चिल रहना भी जरूरी है और इसके लिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, खीरा तरबूज और मौसमी फल खाएं और नींद पूरी लें। साथ ही घर के बच्चों और बुजुर्गों का इस गर्मी में खास ख्याल रखिए और मेरे साथ कहिए जस्ट चिल।

0: जस्ट चिल।
1: जी हाँ, जस्ट चिल, क्योंकि गर्मी में मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे में किसी को तेज़ सिर दर्द, उल्टी या चक्कर महसूस हो तो तुरंत उसे ठंडी जगह पर ले जाएं, ओआरएस

घोल दें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से भी संपर्क करें। यानी इस गर्मी स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए।

जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि भाई इस भीषण गर्मी में आप खुद को कूल रखने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो लखीमपुर से रुखसार जी का हमें ईमेल मिला है और ये लिखती हैं कि हेलो रेडियो टीम। तो रुखसार जी आपको भी हेलो, और आगे लिखती हैं कि गर्मी में कूल रहने के लिए मैं दिन में हल्की एक्सरसाइज करती हूँ और दोपहर की तेज़ धूप से बचने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसके आगे लिखती हैं कि घर में ठंडी लस्सी और सीजनल फ्रूट्स खाती हूँ और म्यूज़िक सुनकर भी मूड फ्रेश और कूल रखती हूँ। भाई म्यूज़िक तो आप सुनती रहिए और FM रेनबो कानपुर के साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि म्यूज़िक हमारा हमदम, हमारा साथी है। और दोस्तों, गर्मी का मौसम हमें एक और बात सिखाता है कि पानी कितना कीमती है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहीं पानी इस्तेमाल करिए, पानी बचाइए, क्योंकि आने वाला टाइम और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। और अगर आपके घर के बाहर कोई पेड़ है तो उसे पानी देना मत भूलिए, क्योंकि एक पेड़ 1000 AC के बराबर सुकून देता है।

जी हाँ, यारिया मूवी का ट्रैक था ये योयो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में। दोस्तों, हर मौसम हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। जैसे गर्मी का ये मौसम हमें सिखाता है कि प्रकृति का संतुलन कितना जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और खुद को स्वस्थ रखिए। और इस मौसम का भी मजा कुछ इस अंदाज में लीजिए।

तो दोस्तों आज के इस तपते मौसम में हमने की ढेर सारी बातें, सॉन्ग्स एंजॉय किए और ये भी सीखा कि इस बार 45 डिग्री टेम्परेचर पार वाली गर्मी में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। वैसे गर्मी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर दिल में म्यूजिक हो, चेहरे पर स्माइल हो और साथ में अपनों का प्यार हो तो हर मौसम आसान लगने लगता है।

जी हाँ गाइज, ब्लू मूवी का सॉन्ग एंजॉय किया आपने। और अब वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं आरजे महिमा करती हूँ प्रोग्राम म्यूजिकार को वाइंड अप और बोलती हूँ आप सबसे टाटा बाय बाय, बट यू स्टे ट्यून्ड ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ,

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई

0: 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज सीआरपीएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है सीआरपीएफ। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे बीएसएफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, सीआईएसएफ वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो सीआरपीएफ ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक सीआरपीएफ ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज सीआरपीएफ ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का सीआरपीएफ ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूं कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस बल का पार्ट हूं, मैं इस बल का हिस्सा हूं और मुझे यहां कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ, पढ़ाई लिखाई ऐसा था। मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज ए चाइल्ड आपको कई बार ही लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे। वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू, आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नजर बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है।

0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कितनी वैकेंसीज है, उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: क्या बात है, घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकार का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों, उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और को छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था, खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था। तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम

0: स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था वो मुझे बहुत हैंडी रहा। सीआरपीएफ में भी यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपनी
0: हाँ बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो मेरे साथ ही अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किए और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी जी
1: जी, तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आपसे मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, तो आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन, रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 45 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
0: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं CRPF ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन-कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन-कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए CRPF में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक, अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा, फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है, तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
0: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
1: भावना।
0: क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक

0: नक्सल अभियान में मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा। अभी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया। तो गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअली और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी
1: बिल्कुल। तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे

0: मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ पीआरओ की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: वर्षों के जो ये कार्यकाल है यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ। मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसे कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे। तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज ऐसी एक्टिविटीज में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और सीआरपीएफ भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है, क्या ऐसा होता है?
0: बिल्कुल, रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जाम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो

सर प्रतीत, थोड़े से फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हर दम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं, ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPM ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: आप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल कर रहा है। तो एक उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निसंदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि I am getting best of the both worlds. मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हो या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। एक मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो FM रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध

0: भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे,
1: हाँ
0: और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे
1: हाँ
0: और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या
1: हाँ
0: गोल्डन
1: हाँ
0: वॉइस थी उनकी।
1: बिल्कुल
0: तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं FM रेनबो का, आपका आकाशवाणी का इस
1: बिल्कुल
0: मौके के
1: बिल्कुल
0: लिए।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप, खासतौर पर वो जो CRPF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का?

0: एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स से एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है।
0: संदेह
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। प्रदेश के सभी जनपदों में आज ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मस्जिदों में विशेष नवाज अदा की गई। हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि सभी जनपदों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, बरेली, सीतापुर, अयोध्या, फरुखाबाद, उन्नाव, चित्रकूट और इटावा सहित सभी जनपदों में लोगों ने निर्धारित स्थलों पर ही अपनी परंपराओं का निर्वाह कर त्यौहार मनाया। इटावा में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 301वें जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि हमें गर्व है कि लोक माता अहिल्याबाई ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है और सभी ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कर आध्यात्मिक रीति रिवाज और परम्पराओं को जीवित रखने का कार्य किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन नीट परीक्षा होने के कारण अब उसे 29 जून को आयोजित किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे, जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकान

0: लोगों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हेलो दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। सुन रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम एफएम टॉप 10। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका, जिसे आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 एफएम मेगाहर्ट्ज पर। तो अगले कुछ घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। जी हाँ, आज शाम 8 बजे तक श्वेता हाजिर है फुल इन्फोटेनमेंट लेके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब अपने रेडियो सेट्स का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए और खुद को गुनगुनाने दीजिए, थोड़ा गाने दीजिए। तो आज क्या है खास, आज के इस काउंटडाउन में स्पॉटलाइट उन अंडररेटेड सिंगर्स पर जिनके गाने तो भाई बहुत सुपरहिट हुए, टाइमलेस हिट्स हैं। ये गाने आज भी बारिश हो या लॉन्ग ड्राइव हो या लेट नाइट टाइम्स हो, कोई भी पास टाइम हो, आपका और हमारा परफेक्ट साउंडट्रैक ये है। तो आज हम सुनेंगे और जानेंगे उन आवाजों को जो दिल के प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना गए हैं, और वो थुने जो शोर में नहीं तन्हाई में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो फिर देर किस बात की, हम बढ़ते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम उस आवाज की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए ये प्यारा सा गीत और जरूर गुनगुनाइएगा। मैं जानती हूँ आप गीत तो पहचान जाएंगे, सॉन्ग तो आप पहचान जाएंगे, मगर क्या आप जानते हैं इसे गाया किसने है, कौन सी खूबसूरत आवाज है इस गाने के पीछे। चलिए सुनते हैं, ये उनकी आवाज है जो सुकून सा फील होता है जिन्हें सुन के, और साथ ही साथ यहाँ इनकी आवाज में ना रोमांस भी जैसे मेडिटेशन सा लगने लगता है। जी बिल्कुल, अब देर किस बात की, सुनते हैं हम लोग ये गाना।

रहने तो आ जाइए, मैं बताती हूँ इस खूबसूरत सी आवाज के पीछे कौन है वो सिंगर जो जिसने पूरे दिन और सभी के दिलों में, पूरे इनफैक्ट देश पे राज किया है। जी हाँ, तो ये है एक क्लासिकल सिंगर बॉम्बे जयश्री। ये उनकी आवाज है और उन्हीं के सॉफ्ट और सोलफुल अंदाज की वजह से ये सॉन्ग इतना आइकॉनिक बनता है। और ये जो सिंगर हैं बॉम्बे जयश्री, इनको गवर्नमेंट ने पद्मश्री से ऑनर भी किया है और साथ ही साथ ये क्लासिकल फील्ड में एंड इन्होंने कई इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भी गाना गाया है, जैसे कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कई सारी उन्होंने फिल्मों में और साथ ही साथ क्लासिकल सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं। और इतनी खूबसूरत आवाज़ है ना कि इनको गवर्नमेंट ने, सरकार ने ऑनर किया है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। और एक कर्नाटक क्लासिकल सिंगर होते हुए एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊंगी कि इनका कभी भी ना बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में मेन करियर फोकस था ही नहीं, फिर भी सोचिए कितनी मजेदार बात है कि एक गाने ने उन्हें पैन इंडिया कल्ट फेम दे दिया। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं आवाजों ने हमारी जिंदगी के कुछ सबसे इमोशनल मोमेंट्स को साउंड ट्रैक दिए हैं। ऐसे ही एक और सोलफुल आवाज आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर। बिल्कुल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

जी हाँ, तो ये खूबसूरत आवाज जो आप सुन रहे थे, क्या आप जानते हैं इसके पीछे ये आवाज किसकी है? मुझे लगता है आप नहीं जानते हैं, तो मैं आई हूं ना बताने के लिए आपको। ये खूबसूरत सी आवाज है स्वर्णलता की। स्वर्णलता ये एक सिंगर ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ही मेन स्ट्रीम उसमें सिंगिंग में फेमस नहीं है। ये इन्होंने रीजनल सॉन्ग्स बहुत से गाए हैं, कई लैंग्वेजेस इन्हें आती हैं और कई लैंग्वेजेस में इन्होंने गाए हैं। और इनके बारे में बताऊं तो इन्हें भी हमारी भारतीय सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा है। और साथ ही साथ मैं एक बात बताऊं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस का ज्ञान है और ये काफ़ी रीजनल मूवीज़ के लिए गाती हैं, तो इन्हें मतलब इनकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, जैसे कि इनको अवार्ड भी दिया गया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो मीडिया से काफ़ी प्राइवेट रही हैं। इसलिए जो इनके फैंस हैं, क्योंकि आप जानते हैं इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है, ये गाना इतना खूबसूरत है, तो इनके फैन फॉलोइंग तो अच्छी होगी। तो बिल्कुल इनके फैंस इन्हें मिस्टीरियस गोल्डन वॉइस बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ बहुत प्राइवेट रखती हैं। तो चलिए सुनते हैं आने वाले और कुछ खूबसूरत ट्रैक इसी तरीके से, जो गाने तो सुपर हिट हुए, हमारी प्लेलिस्ट में रहते हैं, हिट लिस्ट हैं ये, बट ये जो सिंगर्स हैं शायद ही कोई उनके नाम अच्छे से याद रखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अनकन्वेंशनल सिंगर्स रहे हैं, मेन स्ट्रीम तो नहीं, बट हाँ आवाज़ का जादू इनका चारों तरफ फैला है। चलिए बढ़ते हैं और सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग मेरी तरफ से आपके रेडियो सेट्स पर, ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा।

बिल्कुल, प्यार तो होना ही था इनकी आवाज से, खूबसूरत आवाज से। तो आप सुन रहे थे ये दो खूबसूरत आवाजें। क्या आप जानते हैं इनके नाम, क्या आप जानते हैं सिंगर्स कौन हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन ट्रैक दिया इतनी खूबसूरत आवाज में? चलिए कोई नहीं, फिकर नॉट, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। हाँ जी, तो ये आवाज थी रेमो फर्नांडिस की। इन्हें इंडियन पॉप म्यूजिक के पाइनियर कहा जाता है, और साथ ही साथ मैं बता दूं ये गोवन सिंगर हैं। आई मीन तो सही, ये गोवा के हैं और ये वहां के गोवन सिंगर हैं। इनकी वॉइस में आपको वो एक टच, वो एक फ्लुएंसी, एक वहां के रॉनेस सुनने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ये जो फीमेल वॉइस आपने सुनी, ये आपको पता है कौन है? ये बॉलीवुड की पावरफुल फीमेल प्लेबैक पंजाबी सिंगर जसविंदर नरूला। आई एम श्योर आपने ये दोनों नाम तो सुने होंगे। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन गाने हमें दिए हैं, और दोनों सिंगर की वॉइसेस आपने नोटिस की होगी बहुत ही अलग है, दोनों की एनर्जी बहुत ही अलग। और जहाँ रेमो, जैसे कि मैंने बताया कि एक वेस्टर्न रॉक स्टाइल में गाना पसंद करते हैं, वैसे पंजाबी जसविंदर जी ये क्लासिकल पावरफुल वोकल्स के साथ ये प्रस्तुत करती हैं अपने सॉन्ग्स। तो आप खुद देखिए ये बेहतरीन सा कॉन्ट्रास्ट, एक वेस्टर्न एंड देन क्लासिकल एंड देन रीजनल लैंग्वेजेस का एक इन्फ्लुएंस, गोवन एंड पंजाबी, व्हाट अ मिक्सचर, आई मीन टू से। एंड यही बेहतरीन जो कॉन्ट्रास्ट है उसने इस गाने को इतना यादगार बना दिया। कहते हैं ना कि कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं यादों में ट्रेंड करती हैं, वैसे ही ये रोमांटिक प्लेलिस्ट की जान और वो आवाज जो इंस्टेंटली हमारा मूड लिफ्ट करती है। क्या आप सुनने के लिए तैयार है वो गाना? आई एम श्योर ये आप लोगों का पसंदीदा गाना तो जरूर होगा, और हम वेट कर रहे हैं, यू नो, हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मॉनसून आए, मॉनसून में ये गाने तो जरूर बजते हैं। तो इसीलिए खास ये प्लेलिस्ट में आज आपके लिए प्ले कर रही हूँ। एंजॉय कीजिएगा। आपके रेडियो सेट पर श्वेता ने ये शेयर किया है आपके लिए ये प्लेलिस्ट, खूबसूरत सा ट्रैक, दिस सॉन्ग ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जिनका काम है सच को हूबहू आप तक पहुंचाना,
5: जिनकी कलम से निकले शब्द बनते हैं जनता की आवाज,
4: जो दिन के 24 घंटे रहते हैं सजग हर एक खबर के लिए,
5: उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे हम कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में,
4: हर बुधवार शाम 5:30 बजे विविध भारती 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर,
5: और हर गुरुवार शाम 5:30 बजे FM रेनबो 100.7 पर।
4: पत्रकार से संवाद।

0: श्रोताओ नमस्कार, आपका बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसा आपको पता ही है कि हर सप्ताह हम किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे पत्रकारिता से संबंधित व्यक्ति से बात करते हैं और जो उनकी जीवन का जो अनुभव है, जो उनकी जीवन यात्रा है, जो उनकी पत्रकारिता का जो निचोड़ है और जो उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनसे हम सबक ले सकें, जिनसे हम प्रेरणा ले सकें, ढेर सारी ऐसी बातें आज हम मेहमान से सीखेंगे। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रहीश सिंह। और डॉक्टर रहीश सिंह के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, विगत कई वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में भी थे, लगातार पत्रकारिता भी कर रहे थे और आज वो कई पुस्तकों की रचना कर रहे हैं, कई पुस्तकें लिख रहे हैं और लगातार पत्रकारिता की विधा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू
0: सर। हम जब कार्यक्रम की बात करते हैं, विशेष करके कि जब हम किसी यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई?
1: हमारा जो गृह जनपद है वो लखीमपुर खीरी है
0: जी,
1: और मैं वही प्राथमिक पाठशाला अपने गाँव की बहादुरपुर विकास खंड बेहजम पढ़ता है और कुछ मेरी ननिहाल में हुई, मोहम्मदी के पास गाँव है, तो प्राइमरी वहाँ से पढ़ा, जूनियर बेहजम हाई स्कूल पढ़ा, फिर लखीमपुर आ गया इंटरमीडिएट कॉलेज धर्मसभा कॉलेज में, वहां से फिर मैं लखनऊ आ गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो शिक्षा बहुत घूम घाम के नहीं, सीधी रेखा में चली है।
0: में चली जी। तो कैसे आपने ये डिसाइड किया कि हम शिक्षक बनेंगे या हम लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे आपकी रुचि भी है और हमने कई वर्षों में देखा भी कि आप लगातार शिक्षित करते रहे लोगों को।
1: देखिए, अगर ग्रामीण परिवेश को उस कालखंड में देखते जब हम बड़े हो रहे थे, दो नौकरियां सबसे पसंदीदा होती थी खास करके हम लोगों के परिवारों में, एक दरोगा की और एक इंटरमीडिएट के शिक्षक। तो मैंने करके एमएससी किया, बीएड किया और बीएड के बाद सोचा नौकरी करेंगे, मिली भी तो वो टीजीटी की मिली, पीजीटी नहीं मिली तो मैंने छोड़ दी। तो अब खुला आसमान था, उसी दौर में आया हमारे कुछ मित्रों ने कहा आप सिविल सर्विसेज दीजिए, वो देने लगा

0: तो उसके समानांतर मैंने हिस्ट्री से जो है वो पीजी कर लिया सेकंड, और बाद में पीएचडी कर लिया। तत्पश्चात हमारे एक छोटे भाई की तरह मित्र रहे और वो इस समय आईपीएस हैं, तो एक संस्थान ओपन हुआ एकेडमिशियंस आईएएस, और वो मेरे पीछे पड़े कि आप पढ़ाएं। तो मैंने कहा कि यार देखो, नंबर पा लेना किसी भी एग्जाम में अलग बात होती है, लेकिन शिक्षा देना और उसको सही से एक दिशा निर्देश देना किसी छात्र को, ये दूसरी बात होती है। तो मैं पारंगत नहीं हूँ उस विषय में, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब वो पुश करते रहे, उन्होंने ही वास्तव में मुझे भाषा का और लिखने का, वो मुझसे छोटे थे लेकिन मेरी जिंदगी में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, तो ये मेरी उपलब्धि ज्यादा पड़ी रही।
1: आपने इतिहास को चित्रित कर पढ़ाया, ना कि वो रटते रहे।
0: हाँ हाँ, वो शायद एमएससी मैथ्स का या मेरी साइंस बैकग्राउंड का इम्पैक्ट था कि वहाँ सब कुछ फॉर्मुलेशन पे चलता था।
1: जी जी,
0: वो चला।
1: किताबों का भी आपका जिक्र होता है, कई किताबें आपकी हैं, खासकर इतिहास की हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस की हैं। कैसा अनुभव रहा किताबों के साथ?
0: जैसे शुरुआत में एक चीज आई थी, मैं देखता था कि लोग किताब लिखते हैं तो फेमस हो जाते हैं, तो मुझे आया मैं भी लिखूं।
1: जी,
0: तो मेरी मुलाकात हुई परमधर मालवीय जी थे, उनके सुपुत्र विवेक मालवीय से। तो बोले क्या लिख रहे हो? मैंने कहा पुस्तक लिख रहा हूँ। बोले कौन छापेगा? मैंने कहा नहीं पता। कहा मैं छाप दूं? तो मैंने कहा आप छाप दीजिए। तो पहली पुस्तक 1997 में छापी थी, दूसरी पुस्तक 98 में छपी, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा या छात्रों का मेरे प्रति जो स्नेह है, मैंने सीधे उनके लिए किताबें लिखी। तो इस प्रकार से लेखकीय यात्रा चलती रही।
1: अगर बात की जाए कि भाई आप एक शिक्षक भी रहे, छात्र भी रहे, लेखक भी रहे, और तो कैसा अनुभव रहा तब की शिक्षा पद्धति, क्या विकास देखते हैं, क्या उसमें और बदलाव की आवश्यकता है?
0: देखिए, नो डाउट आज का जो युवा है उसके पास मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे जमाने के छात्र से ज्यादा तेज है।
1: जी,
0: लेकिन कभी कभी आप देखिए कि आपको एक ट्रैक पकड़ना होता है और उस ट्रैक पे आप जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी कर दें रेडियो का तो आवाज भरभराने लगती है। तो तेज चलने की आवश्यकता नहीं होती है, एक सधी हुई आपकी स्पीड होनी चाहिए और उसका समग्र ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा कंपटीशन था तो वो उन्हीं सीमित पुस्तकों से पढ़े हुए लोगों से था, लेकिन आज उनके अगले कंपटीटर के पास भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसकी स्ट्रेटजी आपसे बेहतर है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो आज के छात्र में जो मुझे एक चीज दिखी, बड़े किस्मत वालों को मिलता है आकाशवाणी, तो मैं चाहता हूं कि वो लिखना और पुस्तक को पढ़ना ना छोड़ें। पुस्तक जब बोलती है, उसका एक एक शब्द जब हमको शब्द चित्रात्मक ढंग से हम देखते हैं तो हमारे दिमाग से लेकर हृदय तक बैठ जाता है, और वो जब हमारी कॉपी में एग्जामिनेशन हॉल में अभिव्यक्त होता है तो एग्जामिनर नंबर देने के लिए विवश होता है। तो मैं ये मानता हूं नोट्स अपने सेल्फ से बनाएं, उनको कई बार लिखें, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें, उसके मर्म को समझें कि विश्लेषण क्या होता है, विवेचन क्या होता है, समीक्षा क्या होती है, अनुरेखण क्या होता है, समालोचना क्या होती है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है आज के छात्रों में।
1: तो श्रोताओं, आप अभी सुनी रहे हैं डॉक्टर रईस सिंह को, और आपने इतनी अच्छी बात कही कि भाई जो उसका विश्लेषण है हम शायद वो नहीं करते या हम अधकचरा सा ज्ञान लेते हैं, तो आपकी सलाह भी है कि भाई हम किताबें पढ़ें, उसका सही रूप में उपयोग करें। सर, हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात कर ही रहे हैं, क्या गीत संगीत में भी कोई रुचि रही, कोई अपना पसंदीदा गीत जो हम आज अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से सुनवा सकें?
0: मुझे किशोर दा का एक बहुत अच्छा गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम।

0: दोस्तों, एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है और हम सर से बात कर ही रहे हैं। एक शिक्षक से पत्रकार की यात्रा कैसी रही, कैसे इधर आप पहुंच गए?
1: दरअसल जब मैंने सिविल सर्विसेज में मैं असफल हुआ, मैं

0: कहीं पर कुछ बोल रहा था यूनिवर्सिटी के मालवीय हॉल में, वहां एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे निरंकार सिंह जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लिखते क्यों नहीं है अखबार में, अच्छा बोलते हैं। तो मैंने कहा कि सर मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान और मेरे जीवन में मेरे रिलेशन में कोई पत्रकार नहीं है। तो बोले कि देखो ये पॉलिटिक्स पे तो सब कोई लिखता है, यहाँ पर उसी का सजेशन लिया जाएगा जो वरिष्ठ होगा, आपका नहीं लिया जाएगा। आप ऐसे विषय अपनी पत्रकारिता के लिए चुनो जो अछूते हैं। उन्होंने कहा जैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय। धीरे धीरे मैं लेखन से घुसा, फिर मैंने डेस्क पे कुछ दिन काम किया। तो मैंने एक पत्रिका आती थी, वो मालिक उसके इंदौर में थे, दिल्ली से निकलती थी, उसमें काम किया। लेकिन मुझे बहुत रास इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मेरी सृजन क्षमता कम होने लगी थी जब डेस्क पे ज्यादा काम होता था, और मेरी अभिरुचि थी कि बहुत पहलुओं से उसको सोचे। जैसे मैं आपको बताऊं, लोग बहुत कम बिलीव करेंगे, अभी भी 2014-15 का अगर वो अंग मैगजीन का उठाएंगे तो मैंने मोदी नॉमिक्स पहली बार मैंने यूज किया था। और वो यूज किस लिए किया था, क्योंकि पढ़ रहा था तो उसमें रीगनो थैचरा मिक्स एक शब्द छपा था, रीगन और थैचर की इकोनॉमी का। तो मैंने कहा कि मैं क्यों किसी बाहर का नाम लूं, हम उसका इंडियनाइजेशन कर, और उनकी अपनी एक शैली है विकास की, उनका अपना एक मॉडल है। कोई भी इशू आता था तुरंत वो कहते थे कि इस पे आप बताइए, आपके ही शैली पर स्टोरी जाएगी, और बीच में मेरा कमेंट छपा होता था करीब 100 से 150 शब्दों। मैं समझता हूँ अखबार की दुनिया ने, छात्रों की या शिक्षक की दुनिया ने मुझे एक शक्ति दी जो आज भी संबल मेरा बने हुए, और अखबार की दुनिया ने मुझे इतना एनरिच किया अंतर्राष्ट्रीय विषय और आर्थिक विषयों से कि मैं छात्रों को और बेहतर बना सकूं, दे सकूं। तो ये दोनों जब अन्योन्याश्रित होकर के चले
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: मेरे लिए मुझे लगता था, मतलब जैसे नहीं रेनेशा में एक शब्द बोला जाता था मैन विद वर्टू, अ कंप्लीट मैन, उधर की ओर मुझे बढ़ने का एक अवसर मिल गया।
1: आपने डेस्क का जिक्र किया कि आपने डेस्क पे भी काम किया और भी कई विधाओं में आपने अखबार में लिखा, शब्द से वाक्य और वाक्य से आपने कहा कॉलम, ये सफर कैसे तय करते हैं, आप कैसे लिखते हैं?
0: आज के दिन पर तो देखिए अगर आप देखेंगे तो मैं मैक्सिमम विदेशी अखबार पढ़ता हूँ, मैं एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, इनको ज्यादा पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ। लेकिन आप देखिए आज भी अगर डेस्क पे, क्योंकि पत्रकारिता का तात्पर्य क्या होता है, पहला होता है कि आप सूचना प्राप्त करें
1: जी,
0: ठीक, दूसरा होता है कि उसको एनालाइजेशन करें, और तीसरा होता है दें। सामान्य शब्दों में कहें टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेन वाला पार्ट आज के दौर में थोड़ा ज्यादा हो। इन्फॉर्म हम आपको तब कर सकते हैं जब हम पहले इन्फॉर्मेशन खुद जुटाए हों, उसको एनालिसिस की हो कि ये इन्फॉर्मेशन देने योग्य है कि नहीं है। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए लाभकारी है, ये पब्लिक के लिए लाभकारी है, सरकार के लिए लाभकारी है, क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता तो दोनों के बीच का सेतु है। हमें सरकार को भी बताना है कि ये यहाँ प्रॉब्लम है, और हमें जनता को भी बताना है कि सरकार ने आपके लिए ये किया है और आप इसको ऐसे करिए। तो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम आप देखिए बहुत कमजोर हो गया। पत्रकार भी जब गूगल से देख करके खबर लिखने लगे तो फिर ये, मतलब मेरे दृष्टि से तो ये पतन है। दूसरा क्या है, टू एजुकेट, जब हम ही इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं रखते, हमने यही एक किताब पढ़ी नहीं और हम किसी को पढ़ाने बैठ जाएं, तो फिर तो ये अनएथिकल हो गया ना। और जहां ये इनकम्प्लीट और अनएथिकल आ जाता है तो शेष क्या बचता है, इंटरटेनमेंट, चिड़ियाघर से सुन ले। तो मेरा मानना है कि आज की मेधा और आज का जो टेक्निकल जो रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं कि पत्रकार जो नए आते हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस उनको गाइड करने की, उनको एक मार्ग निर्देशन देने की और उनको एक फलक देने की आवश्यकता है।
1: आपने सूचनाओं का और विश्लेषण का जिक्र किया कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप उसे एनालिसिस करते हैं कि क्या ये देने लायक है कि नहीं। आजकल हम देखते हैं कि ढेर सारा ऐसा सोशल मीडिया का संसार है जहां ढेर सारी ऐसी खबरें आती हैं, ढेर सारी ऐसी न्यूज आती है, कैसे उसका परीक्षण करते हैं कि ये सत्य है, और कैसे उसे जो लोग हैं उन तक वो बातें पहुंचाते हैं या परोसते हैं उस न्यूज को, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं और कैसे समाहित करते हैं?
0: अब तो देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें अगर आप यूज किया, डाल दिया कि यूपी गवर्नमेंट, तो जितनी पॉजिटिव और जितनी नेगेटिव खबरें हैं वो आपको निकाल लाएगा, सोशल मीडिया से भी ढूंढ लाएगा, प्रिंट मीडिया से भी ढूंढ लाएगा। तो जैसे वो आया कि भाई ये पॉजिटिव खबर है तो वो एक रिपोर्ट बना के चली गई, ये नेगेटिव खबर है तो जो नेगेटिव खबर जाती है उसको पहले काउंटर चेक कर लीजिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की छपी है तो वास्तव में ऐसा है कि ये फेक है, तो वहां के जिलाधिकारी से या उनके सूचना अधिकारी को भेज दिया गया, भाई इसको कंफर्म करो, अगर वो फेक है तो फिर उस पर फेक मोहर लग जाए, और अगर वो फेक नहीं है, कोई ऐसी घटना हुई है, तो शासन उस पर संज्ञान ले लेता है। तो

0: एक हर जगह हर गवर्नमेंट में हर डिपार्टमेंट में इस तरह का है कि सूचनाओं को फिल्टर करो, जहां उसको पहुंचाना है पॉजिटिव भी पहुंचाओ कि भाई सरकार अगर काम कर रही है तो मुझे लगता है वह भी एक सराहना करनी चाहिए कि भाई सरकार ने काम किया है। अगर कोई ऐसी घटना हुई या कोई खबर ऐसी है जो नहीं संज्ञान में आई, पहुंचाई जानी चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई उचित हो सके। तो दोनों पक्ष होते हैं और दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, खास करके तंत्र को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि कोई चीज जो है वो एक ग्रे एरिया भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही कोई नहीं पूछ सकता और कर सकता है। तो यही होता
1: कि मतलब विश्लेषण करिए और सही और गलत दोनों को समझते हुए।
0: बिल्कुल।
1: कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी यात्रा जिसे आप समझते हो कि पत्रकारिता जब आपने की तो वो आपको करियर की संतुष्टि दे जाए, या बहुत बार हम कहते हैं कि हम जिस काम को कर रहे हैं हमें बहुत मजा आया, या हमें लगा कि हमने शायद इसमें करियर बनाकर खुद को फील कराया कि मैंने बहुत बेहतर काम किया है।
0: देखिए कभी कभार क्या होता है कि 22 का चुनाव था
1: जी,
0: मैं गोरखपुर गया था, आगे थोड़ा बड़ा वनटांगिया गांव था, उसे पहले मैंने नहीं देखा था, तिकुनिया नंबर 3 उस। तो मेरे साथ एक बच्ची थी, मैंने कहा कि इससे तुम बात करो, कि महिला थी, दुर्गावती उनका नाम था। उनसे पूछा गया कि आपको क्या मिला और पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, तो उन्होंने जो शब्द बोले
1: जी,
0: हमें घर मिला, बिजली मिली, सड़क मिली, पानी मिला, तो बोले राशन में क्या मिला, तो सब बताया, कब मिला, किसने दिया, तो बोले बाबा ने दिया। तो आप जब ऐसे जगहों पर जाते हैं, मुझे याद है मैं झारखंड में गया था 2006 या 2007 का समय होगा, तो मुझे केवल समझना था कि वहां पर जो सिद्धू और कान्हू के गांव पर मैं रुका था, तो हम लोग एक स्कूल में रुके थे, वो स्कूल भी मिशनरियों का था। तो जैसे मान लिया कोई आया उससे पानी मांगा, पानी दे दो, वो ये नहीं बोलता था हम ला रहे हैं हम जा रहे हैं ना, वो चुपचाप सर झुका के चला जाता और लेकर के थोड़ी देर पानी आ जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि, तो बोले कि कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा फिर इनकी आवाज कैसे सुनी जाती है, तो बोले कोई नहीं सुनता है। वहां से हम आकर के जो है, फिर मैंने एक स्टोरी अपनी मैगजीन में ही लिखी थी कि बिना आवाज के भी जो काम होता है वो कैसे बोलता है। तो मैं 7-8 दिन वहां रुक करके क्या क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उनकी संवेदनाएं हैं, क्या स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति, मतलब बहुत खराब आर्थिक स्थिति में वो अपने अतिथि का ऐसा सत्कार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं कर पाएगा
1: जी।
0: तो यही भारत को जिंदा रखे हैं, तंत्र तो चलाता है उसको
1: जी,
0: भारत
1: जी,
0: की आत्मा यही लोग हैं। तो उस आत्मा को जब आप पढ़ते हैं, उस आत्मा को जब एक कैनवास पर आप उतारते हैं, उसका चित्रण करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी आत्माएं आपको बहुत साधुवाद दे रही होती, वो दिखे ना भले, अंदर से फील होता है। तो इस तरह की कुछ एक स्टोरी है, जैसे बस्तर में भी वो मुझे ले गए थे, वो ज्यादातर जल जंगल जमीन के लिए काम करते थे, तो मैं जानबूझ उनके साथ जाता था कि वो अपने आप चलता फिरता एक विश्वविद्यालय, इतना नॉलेज था उनको, तो उनसे सीखने के बहुत मिलता था। और उस समय वो कहते थे कि कैसे इनकी व्यवस्था को, इनको कैसे परिवर्तित करोगे, तो उसी पर काम करते थे। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी अपने जीवन में। बाकी तो ठीक है, कॉर्पोरेट को सब छापते हैं, आप कल किसी बहुत बड़े पद पर हो जाओ तो हम आपके लिए लिखने लगते हैं, तब उनको उस पहचान की जरूरत नहीं रह जाती है, खुद पहचान पा लिए हैं अपने कार्य और श्रम से। पहचान की जरूरत तब होती है जब वो नेपथ्य में होता।
1: आपने जिक्र किया 2004 का, 2006 का, पत्रकारिता है जो सकारात्मक बदलाव है या जो नकारात्मक बदलाव है, कैसे देखते हैं आप 2004 या 2000 के समय से आप 2026 तक की पत्रकारिता?
0: 2004-05 में देखिए पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता में जो एक ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उस बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब 24 आवर आपको चैनल चलाना है तो अब दौड़ है
1: जी।
0: और मैं कहता हूँ एक बड़ा अंग्रेजी का शब्द है, लाइक अ जगरनॉट, हिनाते हुए घोड़े हैं जिनकी आप लगाम पकड़े हैं, उन्हें खुद नहीं पता किधर जाना है। तो वर्क कम हो रहा है और उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया है वो अभी भी, उसने अपने चेंज आवश्यकता अनुरूप किए हैं। आज भी आप खबर देखने के बाद फिर आते हैं कि नहीं अखबार सवेरे पढ़ेंगे, उसमें सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को। प्रिंट मीडिया ने अपने आप को कमोबेश बनाए रखा है और उसमें बहुत कोई ऐसी क्रिटिक करने की संभावनाएं नहीं होती है। बाकी थोड़ा सा तो जैसे जनरेशन जी का दौर है और उन्हें लगता है कि इनको ये भी चाहिए, तो उन्हें देना ये व्यवस्था है, पाठक को पढ़ाने के लिए अखबार छप रहा है। लेकिन मुझे लगता है नहीं, उसकी आत्मा, मैं तब भी वही चीज लिखता था और अखबार तब भी पढ़ा जाता था, अखबार तब भी छाप रहा था, आज भी सारे हिंदी अखबार मुझे छापते हैं और मैं लिखता हूँ और लोग पढ़ते हैं, मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास मेल आते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका पाठक भी अभी है वैसा ही, और अखबारों ने अपनी आत्मा को मारा नहीं है, उसने अपनी आत्मा को स्पंदित कर रखा है, जिंदा कर रखा है। हाँ ठीक है, स्पेस कितना मिलता है कितना नहीं मिलता ये अलग बात।
1: आपने स्पेस की बात की, स्पेस कितना मिलता है, आजकल इनपुट बहुत

0: सारे मिल जाते हैं आप, क्योंकि हर आदमी के पास सोशल मीडिया है, फोन है, कंप्यूटर है, वो लगातार आपको सूचनाएं देते हैं। कैसे उस एक पेज में, या यूं कहें कि उस 12-13 पेज के उस अखबार में, वो सारी सूचनाएं कैसे आप फिल करते हैं, कैसे ये अनुमान लगाते हैं शामिल करना है इसे नहीं शामिल करना?
1: देखिए, अगर नो डाउट सोशल मीडिया आज के दौर में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही डायनामिक है
0: जी
1: और कहना चाहिए इम्प्रेसिव। दुनिया में अगर आप देख लीजिए पॉलिटिकल बदलावों में या तमाम चीजों में इसने बड़ा, लेकिन अखबार की अपनी एक व्यवस्था होती है।
0: जी
1: उसने अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर देखी तो वो सूत्र सोशल मीडिया को तो नहीं बनाएगा ना, फिर वो अपने रिपोर्टर को वहां भेज करके
0: जी
1: और
0: जी जी
1: उसको
0: जी
1: कंफर्म करेगा। नंबर

0: बदलावों में या तमाम चीजों में इसने बड़ा, लेकिन अखबार की अपनी एक व्यवस्था होती है
1: जी।
0: उसने अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर देखी तो वो सूत्र सोशल मीडिया को तो नहीं बनाएगा ना, फिर वो अपने रिपोर्टर को वहां भेज करके जी, और जी, उसको कंफर्म करेगा। नंबर वन, सोशल मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं बनती, लेकिन अखबार की जवाबदेही होती है। अगर वो गलत हो गई, सवेरे संपादक से पूछ दिया जाएगा कि भाई ये कैसे, तो वो एक काउंटर जो है वहां पर क्वेश्चन भी पूछेगा। अगर मान लिया कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो पुलिस से भी पूछेगा, वो जिलाधिकारी से भी पूछेगा कि कितने बजे हुआ था, कैसे हुआ था, वो पब्लिक से भी वहां पर पूछेगा। इसलिए उसका उस खबर की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर के। तो इसलिए अखबार का स्पेस वो सबको फिल्टर करेगा। अगर उसने 1000 दिन भर में सोशल मीडिया देखें तो वो 5 पाएगा कि ऐसी है जो अखबार में स्थान देने योग्य है, तो उनको स्थान दे, शेष को वो छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्थान नहीं देता, या सोशल मीडिया इररिलेवेंट हर जगह होती है, नहीं, वो रिलेवेंट है। लेकिन चूंकि जब खबरें बहुत हों तो ये आपके मस्तिष्क में भी एक विध्वंस पैदा करती हैं, क्योंकि आपको कूल रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। कोविड के समय कितना पैनिक है, लोग मर रहे हैं तो पता लगा कोविड हो गया तो हम और डर रहे हैं, नहीं, उस समय तो हमको और साहस बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो चीजें तो बिल्कुल दिखानी नहीं, ये दिखाना था कि नहीं इतने ठीक हो रहे हैं, आप धैर्य रखिए, आप शांत रहिए। तो मीडिया और सोशल मीडिया में ये अंतर है। अखबार तब भी शांत रहे थे, तब भी पॉजिटिव खबर दी थी, और आज भी वो एक पॉजिटिव खबर देते हैं, और मैं आज भी नंबर वन पे अखबार को ही रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक आधार भी रहा, और मेरे जीवन में जो कुछ है जो पत्रकारिता का, वो अखबार का है, इसलिए भी मैं देता।
1: अब चूंकि आपका इतना बहुआयामी व्यक्तित्व है कि आप शिक्षक भी रहे, मेंटर भी रहे, आप अखबार में भी लिखते रहे, आपकी कई पुस्तकें भी हैं और विभिन्न विषयों पर भी हैं, और लगातार आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं, ढेर सारा ऐसा ज्ञान जैसे अखबारों के कॉलम के माध्यम से भी आप देते हैं, अपनी पूरी जीवन यात्रा को कैसे देखते हैं आप, जो हमारे श्रोताओं को अगर इसका निचोड़ बताना चाहें सकारात्मक पहलुओं के संदर्भ में, कि वो अपने जीवन में इसे कैसे शामिल करें, कैसे आपसे प्रेरणा लें, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो शामिल करके वो भी बेहतर बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अपना करियर बेहतर बना सकते हैं।
0: देखिये, जीवन में पढ़ना, तब सरकार किताब देती थी और किताबें महंगी कितनी थी, मतलब 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, फीस माफ होती थी। अच्छा, तब चूंकि सरकारी स्कूल थे तो बड़े से बड़े आदमी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं
1: जी,
0: तो कंपटीशन तो हमारा पढ़ाई से था। जब कर्ण के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं द्रोणाचार्य, वो कहता है कि मैं किस घर में पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन प्रतियोगिता करना आज मेरे हाथ में
1: जी।
0: तो हर स्टूडेंट के अंदर वो मेधा है, वो कंपटीशन में आ सकता है और दूसरे को कंपीट कर सकता है, आगे निकल सकता है। पहले उसको अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा, दूसरों की बुराई करना, दूसरों में कमी देखना, उच्च और निम्न का ये एक जो तिरस्कृत भाव है त्यागना हो। दूसरा, मैं जब शिक्षण के तौर पर आया, मैंने कभी उसको व्यवसायिक नहीं किया, पर मेरा एक वहां बैठे हुए ऑफिस देखता था, एक रहता था, सीधा निर्देश कि किसी बच्चे का पढ़ना इस बात के लिए नहीं रुकना चाहिए कि उसके पास फीस नहीं है
1: जी।
0: वो ना पढ़ना चाहे, वो शरारत करता है, भगा दो बाहर, लेकिन अगर फीस नहीं है, हाँ एक बार पेरेंट्स आके कोई कह दे मेरे पास नहीं, क्यों, इसकी मेधा कल कहां ले जा सकती, हो सकता है ईश्वर मुझे माध्यम बना रहा। तो जो अगर हेल्प करने आप योग्य हैं, मदद जरूर करिए। द गिवन का जो आपको पुरस्कार मिलता है और जिन रूपों में मिलता है, उसकी कहीं किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। देने में बहुत सुख है, अगर हम देने योग्य हैं तो हम जरूर दें। तीसरी चीज, धन्यवाद या कृतज्ञता, हमें यहाँ तक लाए आप, ठीक है, आपने जो देखा होगा अलग, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ये इस प्लेटफॉर्म में पहली बार मैं जब आकाशवाणी में कार्यक्रम में आया था, भाषा पर मेरा था, और मैंने तब पहली लाइन कही थी, एक किताब पढ़ते हुए उसमें वो व्यक्ति कहता है कि अगर मुझे आवाज ही नहीं सुनाई देती तो कैसे पता चलता कि नक्कार खाने में तूती भी बजी है। तो ये शब्द अगर आप इनको बाहर नहीं भेजेंगे तो किसी को क्या पता कि हु आई एम। तो मुझे हर उस व्यक्ति की कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए जिसका मेरे जीवन में इतना सा भी पाठ रहा, और अगर हमने व्यक्त कर दी तो हमसे संसार में बड़ा कोई आदमी है ही नहीं, यही सब कुछ है। और अंतिम चीज जो है, अगर आपके नॉलेज है, आपके ज्ञान है, आप चीजों को जानते हैं, तो आप समाज को जरूर मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, कोई मांगता है, कोई नहीं मांगता, आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, इससे किसी का नुकसान ना हो, किसी की आलोचना ना हो, लेकिन इसका भला हो रहा, आप जरूर एक बार उसको बताएं। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझसे किसी और ने भी ये सवाल पूछ दिया था किसी कार्यक्रम में, अपने बारे में बताइए, मैंने कहा क्या बताऊं, मैं तो उस नदी की तरह हूं जिस घर में पैदा हुआ, माता पिता ने संस्कार दिया, उन्होंने अपने परिश्रम करके मुझे उस ढर्रे पे डाल दिया, तो मैं नदी की तरह बहता गया, मेरे साथ पत्थर भी

0: जुड़ते गए, मेरे साथ पेड़ भी जुड़ते गए, सब कुछ। अभी भी बहाव में हूँ, तो उसकी तरह से मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे भी निर्मल बनाए रहे, मुझे भी समाहित करने का एक जो जज्बा है वो दिए रहे, और किसी के लिए किसी काम आ सकूं अंतिम दौर तक, अंतिम क्षण तक, ये सबसे बड़ी बात होगी। बाकी तो आप कितने बड़े भी व्यक्ति बन जाइए, आपकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। और ये अच्छी बात है कि मुझे जो मेरे मेंटोर्स मिले, जो मेरे गाइड मिले, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, मुझे लिखना सिखाया, मुझे अखबारों में छापा, वो सब निर्मल थे। और मजेदार बात, कोई मेरी जाति का नहीं था, कोई मेरे वर्ग का नहीं था, कोई मुझे पहचानता नहीं था, और सबने मुझे मदद की।
1: तो दोस्तों, अभी आप रईस सिंह जी को सुन रहे थे और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, विशेष करके कि हर आयाम पर आपने हमें बातें बताई। आप जब छात्र थे तब आप क्या दृष्टिकोण रख रहे थे, आप जब शिक्षक थे तब आप कैसे पढ़ाते थे, कैसे लोगों को शिक्षित करते थे, खासकर आप पत्रकार के तौर पर भी वो सारे सूचनाएं संप्रेषित करते थे। अभी जब हमने ये बात की कि भाई आपने जो जीवन का है वो निचोड़ क्या आपने पाया, तो आपने भी हमारे श्रोताओं को बताया कि भाई मदद करते रहे, काम करते रहे, और आपके पास जो भी कुछ ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद सर।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप रईस सिंह जी को सुनकर प्रसन्न हुए होंगे और जो आपने बातें बताई हैं उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के नगर विकास एवं मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भसौरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन FCTS प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए के लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर में नियमित रूप से कूड़े का निस्तारण किया जाए। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इस बार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक या नकल की कोई घटना सामने नहीं आई। आज अयोध्या पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सर्किट हाउस में अयोध्या महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर नगर के विकास कार्यों पर चर्चा की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सके। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य संघ विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगियों, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी, शासन प्रक्रियाओं और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजनाएं बनाने को सक्षम बनाता है। ईद उल अजहा का त्यौहार बरेली में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह सहित शहर की सभी मस्जिदों में सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन के तहत दो शिफ्टों में ईद की नमाज अदा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शहर में पर्याप्त पुलिस बल, लगातार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन नीट परीक्षा होने के कारण अब उसे 29 जून को आयोजित किया जाएगा। आयोग की परीक्षा नियंत्रण ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे, जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहे।

0: बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब यारी।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

वेलकम बैक दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शहरे नवाब के लखनऊ। लखनऊ के लोगों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल, जी हाँ, 107 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है। और ये वक्त कितना हो रहा है, शाम के 6:12, जी शाम के 6:12 हो रहे हैं और मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम शामी अवध लेकर। ये वक्त होता है जब आप इंजॉय करते हैं हमारा शो, हमारा प्रोग्राम शामी अवध। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी इस घंटे एक बार फिर से आपकी खिदमत में आपके साथ रहूंगी और स्वागत करती हूँ फिर से आपको और आपके इस फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है शामे अवध, जहां लखनऊ का दिल धड़कता है। जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम में हम हर तरीके की बातें करते हैं, हम आपको काफी अपडेट्स देते हैं, काफी इंफोटेनमेंट से भरा हुआ प्रोग्राम होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ तहजीब भी है, त्योहार भी, इवेंट्स भी और ट्रैफिक भी। जी हाँ, यहाँ हम शेयर करते हैं आपसे हमारे शहर की मेजर सिटी हैपनिंग्स, इवेंट अपडेट्स, एंड इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये है शहर रौनक। यार चल गया रहा है हमारे शहर लखनऊ में। हाँ जी, बात होगी तमाम अपडेट्स की, उससे पहले लेट्स एंजॉय सम सॉन्ग, सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स जो मैंने आपके लिए क्यू करके रखे हैं। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM श्वेता के साथ। ऑलराइट, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली फॉर यू।

0: जी, इसी खूबसूरत से गाने के साथ मैं आपको ईद मुबारक कहती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे विशेज और मेरा प्यार आप सब तक पहुँचे और 100.7 FM के लिसनर्स तक हमारा ढेर सारा प्यार शामीवत प्रोग्राम के थ्रू मेरा यानी श्वेता राजवंशी का पहुँचे। ओके, तो अगर अब हम बात करें, ये महीना चल रहा है मई का और मई का महीना तो लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि माना गया है कि इस महीने में गर्मी का रिकॉर्ड टूट ही जाता है। और अगर हम मौसम के फिलहाल इस वक्त लखनऊ ही नहीं नॉर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पारा हाई हो रखा है और टेम्परेचर जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ ही रहा है। तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगी और आपको ये कहूंगी कि पानी पीते रहिएगा क्योंकि ये ऑफिशियली ये हमारा मंत्र इस महीने तो जरूर होना चाहिए कि आपको हर 15-20 मिनट और खासकर आधे घंटे में आपको ध्यान रखना है कि क्या आपने पानी पिया, क्या आप हाइड्रेटेड हैं प्रॉपर। आपको अपना तो ख्याल रखना ही रखना है, साथ में अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीबडी अराउंड यू, आप सबका ध्यान रखिए। और लखनऊ में भाई गर्मी तो अपने पीक पर है और हीट वेव कंडीशन कंटिन्यू ही रहेगी। आप निकल रहे होंगे, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप घूमने फिरने थोड़ा मार्केट घूमने के लिए या फिर हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बिल्कुल मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी सलाह जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ये सब तो करिए। जाहिर सी बात है कि समर वेकेशन है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बड़ों की भी आज तो स्पेशल हॉलीडे है ही, तो ये जरूर आप इंजॉय करिए। लेकिन आप ये इतिहास जरूर बरतिए कि थोड़ा सा अननेसेसरी जो आउटडोर एक्सपोजर होता है, स्पेशली जो दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक, उसके बीच में आप थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि इस वक्त धूप तो भाई प्रचंड सीमा पे है और अगर आपका हाइड्रेशन डाउन हुआ तो फिर वीकनेस होगी एंड फिर अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया तो फिर भाई मूड किरकिरा हो जाता है, राइट? तो बिल्कुल पूरा ध्यान रखिए अपना, पानी पीते रहिए, कैप और सनग्लासेस भी साथ रखिए क्योंकि अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो भाई मैं आपको याद दिला दूं, गर्मी फिलहाल फुल एटीट्यूड में चल रही है, पर आपको अपना ध्यान रखना और ध्यान तो हम भी आपका रख रहे हैं पूरी तरीके से। आपके लिए खूबसूरत से ट्रैक्स मैंने क्यू करके रखे हैं और उसे एंजॉय करेंगे पर एक छोटे से एड ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड 200.7 FM श्वेता के साथ।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
8: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
3: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
2: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
3: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
2: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
3: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
2: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
3: आओ के लखनऊ को जरा याद करें हम।
4: धड़कन लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।

तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 6:34 और आप सुन रहे हैं 100.7 FM श्वेता के साथ। तो शाम का वक्त हो चला है और आप एंजॉय कर रहे हैं हमारा शो। मे बी आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? और बिल्कुल मुझे बेसब्री से इंतजार है आपसे बात करने का, जो अगले कुछ मिनटों में हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मैं आपसे जुड़ूंगी, बात करूंगी। तो आपको पता है आपको क्या करना है? तो फिलहाल तो हम

प्रोग्राम की बात करते हैं शामे अवध। हाँ जी, तो दोस्तों इवेंट्स की अगर मैं बात करूं आपको कि हमारे शहर में इस वक्त क्या खास चल रहा है लखनऊ में, तो कल्चरल वाइब फुल ऑन है। देखिए, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 29-30 मई को उत्तर प्रदेश दर्शन समिट एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये टूरिज्म, कल्चर और बिजनेस का एक बड़ा शोकेस होने वाला है। सो अगर आप एग्जीबिशन और नेटवर्किंग इवेंट्स पसंद करते हैं तो डेफिनेटली चेकआउट जरूर करें। और साथ ही साथ म्यूजिक लवर्स के लिए भी एक एक्साइटिंग अपडेट है, क्योंकि 30 मई को लखनऊ में सिंगर पैपो का लाइव कॉन्सर्ट भी प्लान्ड है। आई एम श्योर बहुतों ने टिकट्स बुक कर ली होगी, बहुत लोगों ने प्लान कर लिया होगा। बिल्कुल है ही इतने गजब के सिंगर। और भाई, लखनऊ के वाइब्स तो दिन पर दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई, इस वक्त समर ब्रेक भी चल रहा है, इवेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बट साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है जो स्टूडेंट्स हैं, यस, इस वक्त स्टूडेंट्स अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। अब क्यों भाई, भला ऐसी क्या बात है? बिल्कुल, क्योंकि इसी वक्त यही टाइम होता है जब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोटिफिकेशंस, जो इस वक्त ये सीजन चल रहा है, इसी वक्त उनके एंट्रेंस फॉर्म्स, काउंसलिंग डेट्स और जितने भी एडमिट कार्ड के अपडेट्स होते हैं, वो इसी वक्त आपको रेगुलरली चेक करते रहते रहना होता है। ये टाइम होता है जब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, या आप कहाँ पे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कहाँ अपनी स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। सो करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए रिसेंटली सिटी में काफी एजुकेशन एंड करियर फेयर ऑर्गेनाइज हुए और अभी होते भी रहेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि आपको थोड़ा अपने आप को अपडेट रखना है, और साथ ही साथ कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन चेक करते रहना है कि आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, जैसा भी सब्जेक्ट है, आपको जो भी फील्ड परस्यू करना है, कोई भी स्ट्रीम, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च करते रहिए और देखते रहिए क्या आपको कोई मदद चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए। तो बिल्कुल, बहुत ढेर सारे फेयर्स एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे शहर में, तो करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल, अगर अपना फ्यूचर प्लान मोड इस वक्त आपका ऑन है, सो दिस इज योर साइन टू स्टे अपडेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इस घंटे आप बने रहेंगे श्वेता राजवंशी के साथ। टाइम हो रहा है इस वक्त 6:36 और हम किधर बढ़ते हैं? हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर। मैं होप करती हूँ कि आपको ये गाने पसंद जरूर आ रहे होंगे। तो बिल्कुल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर, आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर, ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

बिल्कुल, लव विल फाइंड अ वे, और आप तक पहुंचेगा ही। भाई वीकेंड वाइब्स तो ऑलरेडी सेट लग रहे हैं मुझे, इतने प्रोग्राम्स, इतने इवेंट्स हो रहे हैं हमारे शहर में, और साथ ही साथ जब आपको घूमना है, निकलना है, तो बात मेट्रो की हो जाए। सो मेट्रो कम्यूटर्स के लिए एक गुड न्यूज है कि सिटी का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर फ्यूचर एक्सपेंशन मोड में है, और अपकमिंग फेज में तो भाई ड्राइवरलेस ट्रेन का भी प्लान किया जा रहा है। भाई समर रश के चलते रेलवे स्टेशन की भी हम बात जरूर करते हैं। इस वक्त लोग बहुत ट्रैवल कर रहे होंगे, बाहर घूमने जा रहे होंगे, स्पेशली चारबाग और बादशाह नगर की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्राउड एक्सपेक्टेड है। जाहिर सी बात है इस वक्त लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। अगर आपका भी ट्रैवल प्लान है तो फिर जरूर पहले, निकलने से पहले आप ट्रेन स्टेटस को जरूर चेक करें और प्लेटफॉर्म डिटेल

बिल्स भी पहले चेक करके ही निकलिए। जी तो आप सुन रहे हैं कुछ बेहतरीन ट्रैक्स, लगातार ये कारवां जारी है और मैंने आपके लिए और खूबसूरत गाने लगा के रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आपके रेडियो सेट्स पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं कौन सा प्रोग्राम, जी बिल्कुल शामे अवध। शामे अवध का टाइम हो रहा है और ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे आप सुन रहे हैं बेहद खूबसूरत गाने और इसी के साथ मैं श्वेता आपके लिए एक और गाना प्ले करने वाली हूँ। आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए शाम की चुस्कियों के साथ और सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047

0: और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा।
1: जीर्णोद्धार कराकर आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को जीवित रखने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की क्रांतिकारी चेतना और संघर्षपूर्ण जीवन हमें सदैव राष्ट्रहित में समर्पण, साहस और अटूट संकल्प का अमूल्य संदेश देता रहेगा। प्रदेश के नगर विकास एवं मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसौरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन FCTS प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस प्लांट को प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। माफ कीजिएगा, इस दौरान महापौर सुषमा खरकवार भी मौजूद रहीं। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इस बार यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में करीबन 54 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक या नकल न होने के कारण कोई भी घटना सामने नहीं आई। आज अयोध्या पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश के सभी जनपदों में आज ईद अल अजहा का त्यौहार श्रद्धा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि सभी जनपदों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, सीतापुर, अयोध्या, फरुखाबाद, उन्नाव, चित्रकूट और इटावा सहित सभी जनपदों में लोगों ने निर्धारित स्थलों पर ही अपनी परंपराओं का निर्वाह कर त्यौहार मनाया। ईद उल अजहा का त्यौहार बरेली में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शहर में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियों और प्रवेश पत्र जारी करने का ऐलान किया। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा और अयोध्या में राम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन नीट परीक्षा होने के कारण ये परीक्षा अब 29 जून को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होते हैं। अगला समाचार बुलेटिन रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स

0: भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आपके रेडियो सेस पे ये अगले कुछ सॉन्ग्स जो बेहद खूबसूरत हैं और बहुतों के फेवरेट, ये शायद आपको उन लम्हों की याद दिला जाएं जो दो लोग एक ही ख्वाब देखते हुए सुनते हैं और देखते हैं जी. बिल्कुल टाइम हो रहा है 7:07 और प्रोग्राम चल रहा है हेलो FM. आपके साथ मैं बनी हुई हूँ श्वेता और मैं बनी रहूंगी रात के 8 तक और हम सुनते रहेंगे बेहतरीन गाने सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट चैनल 100.7 FM स्टेशन ऑफ द नेशन.

0: जी, तो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ यानी श्वेता की आवाज़। तो आपको पता है ना कि इस वक्त क्या होता है, आपको फोन मिलाना होता है, डायल करना होता है हमें, और हम तक पहुंचानी होती है अपनी फरमाइश, और फिर हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। आपके प्लेलिस्ट, आपके फेवरेट गाने हम प्ले करते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, हम उन्हें लाइन पे लेते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहती हैं। हेलो।
1: हेलो मेरी प्यारी सुप्रिय श्वेता मैम का प्यार भरा नमस्कार और
0: थैंक
1: गुड इवनिंग।
0: यू सो मच, गुड इवनिंग। आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं रिंग बात कर रही
0: हाँ जी
1: हूँ,
0: रिंकी,
1: दीवानों
0: हाय।
1: के शहर जिला रायबरेली से।
0: वाह, आपने तो मेरी शाम बना दी, इतनी प्यार भरे अंदाज में आपने मुझे हेलो
1: मैम
0: बोला।
1: रही है क्योंकि कार्यक्रम बहुत अच्छा कर रही है मैम, और मैम आपसे फर्स्ट टाइम हमारी बात हो रही है
0: जी, क्या बात है,
1: तो
0: पहली
1: मैम बड़ी
0: बार और
1: खुशी
0: पहली
1: हो रही
0: कॉलर।
1: है आपसे बात करके। जी
0: हाँ जी जी तो
1: मैम,
0: बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: मूवी का नाम है मीरा का मोहन, गीत के बोल है तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, और मैम आज ईद है तो सभी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम कुछ नाम लेना चाहेंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: जी मैम, मेरे भाई हैं दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही, मेरे सिस्टर है पिंकी और पू, और हमारे प्रिंस साहिबान सारी, महक अंसारी, मोहम्मद फैज भाई, ममता और वकील अहमद भाई, बबलू यादव भाई और विनीत भाई तिवारी अंकल, और मैम बाकी जितने सारे श्रोता सुन रहे हैं उन सभी के लिए और मैम आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच, और आपके सभी भाइयों बहनों और सभी को ईद मुबारक, और आपके लिए, आपकी फरमाइश, आपके रेडियो सेट पर। कीप
1: जी
0: लिसनिंग
1: मैम
0: टू
1: नमस्ते, बाय बाय।
0: बाय, स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

0: कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:20 पर। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी,
1: मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि 2 दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोडमैप तैयार करने में सहायक होगा।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
1: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.in nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
4: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके

0: देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
1: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
2: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए, और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
1: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
4: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: पर्सनल लोन ऑफर।
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई,
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ओके
2: मैं गाना है, मैं चाहता हूँ तुझे दिलो जान की तरह, तू छा गए हैं मुझसे आसमान की तरह।
1: अच्छा तो फिर भाई अब अपनी लिस्ट शेयर कर दीजिए, किस किस को शेयर करना चाहती हैं।
2: जी सबसे पहले आपको, आपने मेरी कॉल उठाई इसलिए
1: थैंक यू।
2: क्षमा परवीन है, साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी है, महक अंसारी है, निशा अंसारी है, ममता गौतम है, रोशनी रावत है और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को।
1: ऑल राइट बिल्कुल
2: मैम, आप बहुत दिनों के बाद आई हैं।
1: हाँ जी आप पहचान गई, मैं आई हूँ कई दिनों के बाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि
2: जब आप आई थी हमारी बात हुई थी, दो बार बात हो चुकी है, तीसरी बार बात हो रही है आपसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखिए प्यार है, मोहब्बत है आपकी हमसे और हमारी आपसे कि आपने हमें कॉल किया और हमने आपकी आवाज पहचान।
2: लेकिन बिजी डे है लेकिन फिर भी हमने आप कॉल लगाई है।
1: बिल्कुल आपको ईद की मुबारकबाद, ढेर सारी ढेर सारा प्यार,
2: बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: बिल्कुल, तो आपके लिए मैं प्ले करना चाहूंगी आपका ये गाना क्योंकि आपने भाई इतनी बेसब्री से इंतजार किया और इतना
2: जी इतना मिनट आज मैंने पहली बार इतना होल्ड किया है।
1: नहीं ये आपका प्यार है और भाई आपका जो रिक्वेस्ट है हमारे सर आंखों पर, आपके लिए ये प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर एंजॉय कीजिएगा।
2: थैंक यू।

0: बिल्कुल, मिले हैं तो नहीं बिछड़ेंगे हम। तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी फरमाइश और आपकी ख्वाहिश पूरी हो तो नंबर डायल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक कॉलर, चलिए जानते हैं उनके बारे में, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाय
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: सर। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम मेहगन अंसारी, उदनापुर कोरिया जिला सीतापुर से।
0: ओके, तो बताइए भाई, आज आपकी फरमाइश क्या है, हम पूरी करेंगे आपके लिए।
1: हमारी फरमाइश सौदागर मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: ओके, ये देखिए, गाना बजाने से पहले आपको ईद की बेहद शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो।
1: जी मैम, आपको भी।
0: थैंक यू सो मच।
1: और हम कुछ लोगों के नाम ले लें।
0: हाँ बिल्कुल, लीजिए।
1: साहिबा जी, साजिया अंसारी जी है, रिंकी पिंकी, वकील भाई, समा परवीन जी, गुलस्ता जी। और हमारे घर में हमारी अप्पी आई है ईद करने के लिए, हमारी
0: क्या बात है।
1: अम्मी है, और हमारे भाई जान जिसान,
0: ओके
1: हमारे अब्बू, हमारा भाई मोहम्मद सादाब, और
0: जी,
1: हमारे भांजे दो, बहुत क्यूट है मैम वो।
0: अरे वाह, क्या बात है। आपके पूरे परिवार को बहुत ही बहुत मुबारक हो ईद की, और आप सबके लिए ये प्यारा सा गाना आपकी फरमाइश में प्ले करने जा रही हूँ, ओनली ऑन 100.7 FM आपके रेडियो सच पर। चलिए एंजॉय कीजिएगा, बाय बाय।

0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सौदागर। और भाई, अभी किसी ने मुझे फिर से कॉल किया है, और कॉलर्स तो लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मगर मैं आज इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज फीमेल कॉलर्स बहुत ज़्यादा रीच आउट कर रही हैं, और मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं जिन्होंने कॉल किया है, और उन्होंने अपनी फरमाइश भाई बताई है, और वो चाहती हैं कि वो सॉन्ग प्ले हो शायद उनकी मदर के लिए। तो चलिए हम और ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से। हाय,
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, कैसी हो आप?
0: वेरी गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात हो गई तो पूछिए मत कितनी अच्छी हो गई हूँ।
0: क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके चेहरे पे खुशी लाई और आपकी ये फरमाइश पूरी कर पा रही हूँ।
1: हाँ जी मैम, मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ आज।
0: अच्छा, तो ये पहली बार कॉल लगने की खुशी है।

0: आपसे पहली बार बात हो रही, वैसे लगती रहती
1: क्या है। बात है, देखिए पहली बार आपने कॉल किया और पहली बार आपकी बात हो रही है मुझसे। आपको मेरा नाम पता है?
0: जी मैम बिल्कुल पता है।
1: क्या नाम है? बिल्कुल सही, श्वेता राजन जी
0: से सुन रही हूँ।
1: क्या बात है, तो आप हमारे रेगुलर लिसनर्स में से हैं।
0: हाँ जी,
1: बहुत खुशी हुई।
0: मेरा नाम है रोशनी रावत, ग्रामा पोस्ट बमना, कैसी सभी को जिला उन्नाव, और अभी मैं प्रोग्राम चंडीगढ़ से सुन रही हूँ आपका।
1: अरे वाह राखी रावत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके, और आप चंडीगढ़ से सुन रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है जानकर। आपकी मम्मी भी सुन रही होंगी शायद, ये गाना आपने उन्हीं को डेडिकेट किया है।
0: हाँ जी मैम।
1: तो पूरी फैमिली सुनती है।
0: हाँ जी, और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को, और कुछ नाम लेना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, शुरू हो जाइए।
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा ये सॉन्ग।
1: थैंक यू।
0: और हमारी बबीता रावत जी है जो गुसाई दल लखनऊ से सुन रही है।
1: ओके।
0: और नीलू शर्मा दीदी है जो रूपुर चंदेला से सुन रही है से। और अभी हमारी गुलक्ता सिद्दीकी दीदी से कॉल लगी थी, उनको भी डेडिकेट है।
1: क्या बात है, आप सबकी दोस्ती है।
0: हाँ जी,
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और बताइए मैम, और आपका क्या लगे, सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो गाने आपको पसंद आ रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: ओके, तो ये प्लेलिस्ट मैंने ऐसे ही सोच के लगाई है कि भाई, और मैंने साथ ही साथ उन सिंगर्स के बारे में बात की कि गाने तो भाई सुपर हिट है, हम जरूर सुनते हैं हमेशा उन गानों को, पर कुछ सिंगर्स के बारे में हम नहीं जानते क्योंकि वो मेन स्ट्रीम नहीं है, बट आवाज उनकी एक पहचान बना के गई है।
0: और रेडियो पे गाना सुनने की बात ही अलग होती है, ऐसे तो हम रोज सुनते ही है, लेकिन जब हम सुनते हैं रेडियो से तो उसकी अलग ही होती है,
1: एक अलग ही चार्म है रेडियो का। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बिल्कुल, आप
0: हमारे ऑफिस में मैम पूरा दिन चलता रहता है ऐसा रेनबो लखनऊ।
1: वाह, अरे वाह, काबिले तारीफ, आपके ऑफिस में हर वक्त चलता है एफएम रेनबो। हमें बहुत खुशी हुई और हमारे टीम में भी सबको जान के बहुत खुशी होगी। इसी तरीके से आप अपना प्यार बरसाते रहिए, सुनते रहिए हमें हमेशा, और हम आपके लिए फरमाइशें लाते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे। तो आपके लिए ये सॉन्ग आपके रेडियो सेट्स पर आपकी मम्मी के लिए, एंजॉय कीजिए। All right.
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय, सी यू।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: बिल्कुल, मुझे तुम याद आते हो और हमें आप याद आते हैं हर वक्त, तो मुझे भी पता है, हमें भी पता है कि आपको हम याद आते हैं। हाँ जी, तो इसी याद के सिलसिले में ना मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है भाई। ये मतलब बहुत ही प्यार करती हैं, बेहद प्यारी सी कॉलर हैं और इन्होंने हमसे बात की और ये चाहती हैं कि इनकी फरमाइश जरूर पूरी हो। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं इनकी ओर, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
1: मैं बोल रही हूँ, अपना बताइए आप कैसी हैं।
0: मैं भी बहुत बढ़िया भाई, सबको अपना नाम तो बताइए।
1: आपको ईद मुबारक हो।
0: ईद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन सबको दे दीजिए जल्दी से। ओके, और अभी एक छोटी सी भी आवाज मेरे कानों तक पहुंची थी जो आपके पीछे से छुप छुप के बात कर रही थी। जी, उसको भी ढेर सारा प्यार। और आपकी फरमाइश जो है मैंने क्यू करके रखी है, आप किस किस को सुनाना चाहेंगी गाना?
1: मैं सबसे पहले आप।
0: बेहद शुक्रिया। हाँ जी,
1: मोहम्मद आसिफ भाई है, मोहम्मद तेज भाई है, वकील अहमद भाई है, बाबू अंसारी भाई है, तालिब अंसारी भाई है, जावेद अख्तर भाई है, सत्यन कुमार भाई है, समा परवीन अंसारी अपनी है, गुलस्ता सिद्दीकी अपनी है, महक अंसारी है, साजी अंसारी है, रिंकी पिंकी है, निशा अंसारी है।
0: जी, बहुत लंबी लिस्ट है।
1: सुनने वाले को भी सुनाना चाहते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आपके सभी परिवार में सभी लोगों को
1: बात हो गया। हमें बात बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत

0: शुक्रिया कि मैं आपकी बात उनसे करा पाई।
1: मैं हमारा गाना में कोई बात नहीं बताइए कि हमारी छोटी बहन से बात कर लीजिए।
0: अच्छा, बात करा दीजिए जल्दी से।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम बेटा,
1: कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ। आपकी बहुत प्यारी आवाज है।
1: जी थैंक यू।
0: आई एम श्योर आप भी बहुत प्यारी हैं।
1: जी
0: जी, तो
1: आप
0: मैंने,
1: भी बहुत प्यारी आवाज है।
0: अरे शुक्रिया। तो चलिए, मैंने आपका जो सॉन्ग है ना प्यारा सा, वो मैंने लगा के रखा है और मैं चाहती हूँ आपकी पूरी फैमिली के साथ आप इंजॉय करें और इसी तरीके से अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहें। आप, मुझे पता है,
1: मैं
0: आप
1: बहुत छोटी।
0: मुझे पता है आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं और बहुत प्यार से सुनती हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप तक ये गाना पहुँचाती हूँ, ठीक है? आपके रेडियो सेट्स पर
1: थैंक
0: ओनली
1: यू।
0: ऑन 100.7 FM। थैंक यू फॉर कॉलिंग। टेक केयर। बाय बाय। ऑल राइट, तो कहते हैं ना कि ये क्या अजब है, सब अपने आप में गुम हैं। जबान मिली है मगर हम जबान ही मिलता। तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो।

0: जी, तो मैंने,
1: भी बहुत सारी आवाज है।
0: अरे शुक्रिया। तो चलिए, मैंने आपका जो सॉन्ग है ना प्यारा सा, वो मैंने लगा के रखा है, और मैं चाहती हूँ आपकी पूरी फैमिली के साथ आप इंजॉय करें और इसी तरीके से अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें। आप, मुझे पता है आप, मुझे पता है आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं और बहुत प्यार से सुनती हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप तक ये गाना पहुंचाती हूँ, ठीक है? आपके रेडियो सेट्स पर
1: थैंक
0: ओनली
1: यू।
0: ऑन 100.7 FM। थैंक यू फॉर कॉलिंग। टेक केयर। बाय बाय। ऑल राइट। तो कहते हैं ना कि ये क्या अजब है, सब अपने हैं, आप में गुम हैं, जबान मिली है मगर हम जबान नहीं मिलता। तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद है उसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। सभी ने सुना होगा, इतनी खूबसूरत लाइनें हैं। तो भाई, आज की शाम अगर आपको किसी अपने की याद दिला गई हो और हमारे इतने खूबसूरत ट्रैक अगर आपको पसंद आए हो, तो शायद दिल ने फिर से आपको हमारी याद दिलाई और हम तक ये वादा जो होता है ना कि पहुंचने का, हमें पहुंचाने का, ये पूरा हुआ। तो फिर अब हम इसी इंतजार में आप से फिर मिलने के लिए जल्दी से आएंगे, और मैं श्वेता आपसे इस प्रोग्राम में इजाजत देती हूँ, आपको छोड़ जाती हूँ इस प्यारे से गाने के साथ। और भाई, 8 बजे से जो नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आने वाली हैं, वो खूबसूरत सी इंसान, वो खूबसूरत सी आरजे आ चुकी हैं, आपसे बहुत जल्दी जुड़ेंगी उनकी खूबसूरत आवाज। तो चलिए, और सुनते रहिए और बने रहिए 100.7 ओनली ऑन लखनऊ की धड़कन। ओके, चलिए श्वेता को करिए बाय एंड एंजॉय।

साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आज के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यूपीएसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को आगरा के शिवपुरी कॉलोनी से करीब 1,22,00,000 रुपए के मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। एसटीएफ को काफी दिनों से आगरा व आसपास के जनपदों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी। प्रदेश की पॉलिटेक्निक में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली यूपी जेईई P2026 परीक्षा का आयोजन 2 से 9 जून तक किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 10 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मंदिर के शिखर पर कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी 3000 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं का समागम होगा। उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके परिवार के अनुसार उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें आज साय भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
3: शाम होने को है।
2: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

आदाब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग। शाम के 8:06 और ठीक 55 सेकंड हो रहे हैं। दिन भर की मसरूफियत के बाद उम्मीद है कि अब आप अपने आशियाने में अपनों के बीच सुकून के कुछ पल बिता रहे होंगे। वैसे भी आज का दिन है बड़ा खास, ईद उल अजहा का त्योहार, यानी कि अपनों से मिलने जुलने और उनके साथ खुशियां बांटने का दिन। तो ऐसे में अगर हम और आप भी मिल जाएं, तो फिर बस कहने ही क्या। तो चलिए अपनी मुलाकात को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह। जी हाँ, वो आवाज जिसमें शायरी की नमी, अल्फाज की तहजीब और एहसासों की गर्माहट भी है। बात ऐसी हो जो दिल से निकल कर रह जाए और जो कोई शेर भी कह दे तो अमर हो जाए। तो चलिए सुरों और अल्फाज के इसी खूबसूरत आबशार में एक साथ भीगने का सिलसिला शुरू करते हैं।

अच्छा, कभी कभी मुलाकात कुछ ऐसी क्यों होती है कि बहुत वक्त बिताने के बाद भी लगता है कि दिल नहीं भरा। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आप घंटों बातें करते रहे लेकिन फिर भी लगता है कि जो बात कहनी थी वो तो लफ्जों तक, वो लफ्ज मिल ही नहीं पाए, वो बात होठों तक पहुंच ही नहीं पाई। कभी महसूस किया है आपने भी कुछ ऐसा? बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी।

0: यूं तो इंसान जिंदगी में जाने क्या क्या चाहता है, ऐसे थोड़ी ना कहा गया है कि हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। फिर भी जाने क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक की खुशी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, बस यही काफी लगती है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। महसूस किया है क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा? धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो। 8 बजकर हमारी जनगणना
1: हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

ख्वाब बनकर मेरी आंखों में समा जाता है, मेरी सोई हुई रातों को जगा जाता है। जब भी मैं हाथ उठाती हूँ दुआ की खातिर, वो खुदा बन के मेरे सामने आ जाता है। मैंने उसके लिए दुनिया से बगावत की है, मैंने उसके लिए दुनिया से बगावत की है। वो मुझे छोड़ के हर रोज चला जाता है। अब तो हैरा भी होती नहीं आंखें मेरी, अब तो हैरा भी होती नहीं आंखें मेरी, जो भी आता है वो आईना दिखा जाता है। उसको मालूम नहीं रात का आलम आसमां, शाम होते ही मेरे घर से चला जाता है। यकीन है, भरोसा है, तभी तो है रिश्ता, है ना? जब आपको पता हो कि आपके बिना कहे सामने वाला सब समझ लेगा, तभी तो बात में मजा है ना? कुछ ऐसी ही अनकही अनसुनी बातें आज

कर रहे हैं हम आबशार में। आठ बजकर 26 मिनट और ठीक 45 सेकंड्स। ये खूबसूरत गजलें और आपका मेरा साथ FM रेनबो पर प्रोग्राम आबशार में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: धीरे धीरे जिसे इस दिल में बसाया मैंने, धीरे धीरे जिसे इस दिल में बसाया मैंने, उसकी खुशबू को जमाने से चुराया मैंने। सोचती हूँ जमाने के हवाले कर दूँ, सोचती हूँ जमाने के हवाले कर दूँ, मुद्दतों से जिसे दुनिया से छिपाया मैंने। एक आवाज पे दौड़ा हुआ आ जाएगा, एक आवाज पे दौड़ा हुआ आ जाएगा, मुझे मालूम था फिर भी ना बुलाया मैंने, फिर भी ना बुलाया मैंने।

8:39 और ठीक 12 सेकेंड्स हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप शार की इन गजलों के साथ ईद उल अजहा की ये शाम थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और मुलायम जरूर बनी होगी। आपसे इजाजत लेना चाहूंगी इस प्रोग्राम से, बस थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए, और समाचार संध्या के बाद फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिएगा FM रेनबो से, जहां पर ज्योति आपका बेसब्री से इंतजार करती मिलेगी।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने

0: बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान

0: कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की

0: चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
2: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जावेद अख्तर जी, मैं चंद्रकला नहीं हूँ। और यस, आपने ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद कही है, तो आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद। इन्होंने लिखा, मैं अपने वक्त की जिंदा कहानी छोड़ जाऊंगा, रहेगा सबके होठों पर हमेशा। ओके, कलम से निकली कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाऊंगा। पॉप टाइम कार्यक्रम में आपके मीठे लहजे का पूरा आनंद ले रहे हैं रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शशमल शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे हमारे सामने ईमेल है विवेक कश्यप का, लिख रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आवाज अच्छी लग रही। ओके, थैंक यू विवेक कश्यप फ्रॉम सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर से। और इन्होंने फरमाइश भी की है, फिलहाल तो आपके तक वो गाना पहुंच रहा है जिसने जमाने से धूम मचा दिया। मतलब इस गाने को सुनने वाले बच्चे जवान हो गए और जवान उस उम्र पर पहुंच गए कि अब वो क्या कहें। बट यस, इस गाने का जादू, इसका चार्म कहीं से भी कम नहीं पड़ा। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए।

वाह क्या स्वैग है। यस यस यस इसे ही कहते हैं असली स्वैग। अच्छा एक बात सच बताइए, आज जब आपने अपने दोस्तों के साथ अपने अपनों के साथ मिलकर जबरदस्त मीठा खाया या फिर जब पकवानों पर हाथ साफ किया तो 2 मिनट के लिए भी ये लगा कि भाई डाइट का क्या होगा, या थोड़ा सा भी लगा कि कैसे चलेगा बॉस कैसे चलेगा, इतने अच्छे अच्छे पकवान मेरे सामने और दूसरी तरफ ये टेंशन कि बड़ी मुश्किल से फिट हुए थे। तो भाई चिंता मत करिए, वंस इन अ व्हाइल तो चलता है, इसी को तो कहते हैं ना चीट डे। क्योंकि अगर आप त्योहार के दिन भी बैठ करके उबला हुआ खाना खा रहे हैं तो मतलब मेरे हिसाब से तो चलता नहीं है ये। तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि जम करके खाइए, जम करके नाचिए गाइए और धूम मचाइए, क्योंकि फिट रहने के लिए खाने पर कंट्रोल ही जरूर, यू नो उतना ही काफी नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत कुछ जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि आप एक्सरसाइज करते रहिए। तो आपको एक्सरसाइज ही कराने के लिए तो आज वो गाने खास तौर पर लेकर आई हूँ जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। एंड यस यस यस वो लोग जो कि आलस में खाने पीने के बाद हेडफोन लगाकर बेड पर लेते हैं, उन्हें बता दूं कि पॉप टाइम का मीटर अब धीमा नहीं होने वाला। अब आपको लेकर चलने वाली हूँ उस टाइम में जबकि ठंडे ठंडे पानी जैसी चीज पर गाने ना सिर्फ लिखे जाते थे बल्कि वो सुपर डुपर हिट भी होते थे। पहुंचा रही हूँ आप तक बाबा सहगल का वो गाना जिसने ठंडे ठंडे पानी जैसी बेसिक चीज को बना दिया सेंसेशन। बाबा सहगल, अरे अपने सदर वाले बाबा सहगल और कौन, हमारे गली मोहल्ले वाले बाबा सहगल कैसे बने नेशंस हार्ट थ्रोब, इस बारे में भी बात किसी और दिन जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल जमकर खाने के बाद ठंडा ठंडा पानी पीते हुए थोड़ा सा थिरक लीजिए जनाब।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन

जी 9:35 हो चुके हैं और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं सोच करके कि भाई हमारा ईमेल पढ़ा जाएगा या फिर नहीं। तो ऐसे में मैं बस यही कह सकती हूँ कि रिलैक्स, चिल, ऑफ कोर्स पढ़ा जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। विनीत कुमार का ईमेल है रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से। How sweet, बहुत मीठी मीठी बातें इन्होंने कही है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ अपने आप से, अपनी तारीफ कैसे करूँ, अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके मैसेज को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेज के लिए। विवेक कश्यप जी का भी ईमेल आया है, इन्होंने क्या लिखा है विजिबल नहीं है। गुड इवनिंग, पॉप टाइम प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। विवेक कश्यप सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर। ओके, गाने अच्छे बज रहे हैं, हम सब खाना खाने जा रहे हैं, आप भी आकर खा ले। How sweet. ईद उल अज़हा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सारी बातें कहने वाले हैं वकील अहमद मंसूरी कटका हतोरी जिला सीतापुर से, साहिब अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ शाह सिद्दीकी, अमन नवाब जो कि छत के ऊपर है, इन सबके साथ मिल करके इन्होंने ईमेल किया है। सतीश कुमार जी का भी ईमेल आया है फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। एंड आपकी मखमल ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। इतनी खूबसूरत बातें लिखने के लिए दोस्त आपका दिल से शुक्रिया। रजनीश पासवान जी रामपुर सीतापुर से, इन्होंने लिखा है कि गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी

ऐसे लाजवाब डांसिंग ट्रैक पर खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आबशार उमदारा, तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती नहीं कि आज आप रुके, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप इतना नाचे, इतना नाचे, इतना थिरके, इतना थिरके कि बस आपको आज की ये रात ईद उल अज़हा की रात हमेशा याद रह जाए। अरविंद कुमार जी ने लिखा है, अरविंद दुबे ग्राम धर्मदेवा छठा जिला मिर्जापुर से। मेरा फेवरेट गाना बज गया। अच्छा कौन सा? आगे लिख रहे हैं कि रेनबो लखनऊ से एक रिश्ता बन गया है, सारे प्रोग्राम भले ही ना सुन पाऊं तो भी पॉप टाइम एंड रेनबो कैफे कभी नहीं छोड़ता। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। एक्चुअली आज के वक्त में अगर आप हमें अपना वक्त देते हैं तो ये सबसे बड़ा तोहफा है ना। हम सभी अपने पूरे परिवार के साथ छत पर प्रोग्राम सुन रहे, चांदनी रात है, गाने सुन सुनकर छोटी भांजी कुछ ज्यादा थिरक रही है, माँ की मीठी डांट खा रही है, ये सब इसी प्रोग्राम की खासियत है। अरविंद दुबे, गोविंद प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। एंड जितेंद्र नामदेव का भी ईमेल आया है मेरे सामने। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खान का नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, पोस्ट खनौधी जिला शहडोल मध्य प्रदेश, इतनी दूर से। नमस्ते ज्योति जी, जी नमस्कार नमस्कार। तुमसे बात ना हो तो दिल उदास रहता है, तुम्हारी यादों में ही हर एहसास रहता है, तुम दूर होकर इतने करीब हो कि हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम रहता है। वाह वाह क्या बात है। इंद्रपाल मिश्रा जी ने लिखा है, ज्योति दीदी को प्यार भरा नमस्कार, आपके आने से श्रोताओं में खुशी की लहर, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप कितने खुश है या मतलब उसमें मैं नहीं जाना चाहती, बट यस आप अगर मेरी खुशी के मीटर की बात कहें तो वो बहुत ऊंचा चल रहा है, पारा एकदम हाई है। ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत ईमेल्स के लिए। एंड एंड एंड एंड एंड भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से एम के राज लिख रहे हैं कि आंधी के साथ साथ बारिश भी होने वाली है लखीमपुर खीरी में। हमारे लखीमपुर में तो मौसम ने भी पॉप टाइम शुरू कर दिया है, आंधी पानी बारिश तीनों मिलकर ऐसा धमाल मचा रहे हैं कि छतरी कह रही भाई मुझे छुट्टी चाहिए। हर रोज लाइव सुनता हूँ, सुनते सुनते चाय ठंडी हो जाती है। ओके बस गुजारिश है ये कि अगली बार बारिश के मौसम में कोई ऐसा गाना बजा देना कि बादल भी थिरकने लगे और बिजलियां भी तालियां बजाने लगे। लखीमपुर से आपका फैन मुनेश कुमार राज, ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा ओके कलम के साथ साथ रेडियो का भी दीवाना, बहुत बहुत शुक्रिया सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मौसम बदल गया है। और बस अभी इस वक्त का, इस बार का ये आखिरी ईमेल, चांद से कहूं मेरा पैगाम देना उनको, अपना चांद मानते हैं हम जिन दोस्तों को, मेरे प्यारे से दोस्त, ईद मुबारक हो आनंद तिवारी दारू कोहिया मल्लावा हरदोई यूपी से। लिखते हैं जबरदस्त प्रोग्राम जी, आपको पसंद आ गया और क्या चाहिए, क्योंकि श्रोताओं की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार भी हर किसी के नसीब में हो, जरूरी नहीं।

0: तो भी नसीब की बात तो सबसे बड़ी ये होती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको कभी भी तन्हा अकेला महसूस होने ही ना दे। अब देखिए ना, जैसे ही कोई त्योहार आता है ढेर सारे आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, जी ईद मुबारक, होली मुबारक, दिवाली मुबारक, होता है ना। तो आज भी सुबह से कुछ ऐसा ही आलम था। सुबह से इतने मुबारकबाद के मैसेजेस आए, इतने मुबारकबाद के मैसेजेस आए कि एक तरफ तो दिल एकदम खुश हो गया, दूसरी तरफ फोन बेचारा वो हैंग करने लगा। और एक चीज, वो थोड़ी सी हल्की सी चुभी, भाई हमारे बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं कि जब वो किसी और के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं तो वो ये भी नहीं देखते कि मैसेज में पहले वाले बंदे ने अपना नाम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ईद मुबारक ज्योति मिश्रा, अब आपने ये अपनी तरफ से भेज दिया किसी और को तो कैसा लगेगा। बट यस, ये होता है और हर त्योहार के मौके पर होता है। तो भाई दूसरों का फॉरवर्डेड मैसेज आगे खिसकाने से पहले एक बार चेक तो कर लो, इतना भी क्या आलस, कॉपी पेस्ट करते टाइम नाम तो बदल लो। वैसे अब कहो कुछ भी, आज की जेनरेशन का स्वैग एकदम अलग है। एक तरफ हाथ में फोन होगा मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए, और दूसरी तरफ नए नए कपड़े में एकदम माहौल बना करके जब तक इंस्टा पर चाचे रील्स और एस्थेटिक फोटोज पोस्ट ना हो जाएं, तब तक लगता है कि त्योहार ठीक से मन नहीं पाया है ना। तो बस इतना ही कहूंगी कि थोड़ी देर के लिए फोन को किनारे रखिए, स्क्रीन से अपनी आंखें हटाइए और इस रात की रौनक को महसूस करिए। वैसे जब फोन की बात आई है तो जाने क्यों बार बार मुझे ये गाना याद आ रहा है। वैसे मैंने प्लान कोई और सॉन्ग किया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फोन की बात करते करते मुझे ये गाना दिख गया। तो चलिए पहले यही वाला सॉन्ग आप तक पहुंचाती हूँ।
1: 02264008 95।
2: हेलो,
1: अकेले हो, दोस्ती करोगे?

बहुत ही चुलबुला गाना और अपने टाइम पर हुआ था ये बिल्कुल सुपर डुपर हिट। तो चलिए लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

तो जी मैं तो अपना वादा लगातार निभा रही हूँ आपको थिरकाने का। आपको भी अपना वादा निभाना है। अब ये नहीं कहना है कि भाई 9:51 हो गए हैं, अब हम थक गए हैं, त्योहार का दिन है, थोड़ा आराम करना है। ना ना ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई ऐसा तो मूड बना ही नहीं, क्योंकि अभी जो अगला गाना आ रहा है ना आपके तक, इसके बीट्स में कुछ ऐसा करंट है कि अगर आप सुस्त हैं तब भी थिरकने लगेंगे। एंड यस, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर पैर सीधे एक्सेलरेटर पर चले जाएंगे। ये गाना हमारे खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो इस वक्त गाड़ियों की एक्सेलरेटर बढ़ाकर, बेस बढ़ाते हुए गाना सुनते हुए लखनऊ की सड़कों का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन भाई बस यही कहूंगी कि सुरक्षित रहिए, एंजॉय करना बिल्कुल बनता है, लेकिन उसका

ये मतलब नहीं है कि आप सेफ ड्राइविंग नहीं करेंगे, बिल्कुल सेफ ड्राइव करते रहिए। और ये सभी भी हमारे पास काफी वक्त है, 9:52 और ठीक 36 सेकंड्स। आप है ज्योति के साथ और ज्योति आप तक पहुंचा रही है अखिल को।

तेरी आवाज से महक उठा है मेरा गांव, रेनबो पॉप टाइम सुनकर भूल जाते हैं हम सारे घाव। भाई वाह, मनीष कुमार राज ने ये लिखा है भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से। मोनू से जी, पॉप टाइम सबसे पॉपुलर प्रोग्राम बनता जा रहा है, थोड़ी व्यस्तता थी इसलिए देरी से मेल किया, सॉरी। कम ऑन, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं समझती हूँ मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का भी ईमेल आया है। एंड अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नाम और पढ़ लेते हैं। जयराम जी आपका नाम मैंने ले दिया, राजेश कुमार जी, ज्योति दीदी को प्यार भरा नमस्ते, प्रोग्राम बिंदास लग रहा है, आपको छत पर बैठ करके सुन रहा हूँ, हवा अच्छी चल रही है। आपका ईमेल कुर्सत हरदोई से भेज रहा हूँ राजेश विद्यार्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन नवाब ने लिखा है, कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब थोड़ा बेटर महसूस हो रहा है, दिल नहीं माना तो मेल कर दिया, बहुत अच्छा किया, और अपना मन बस हमारे साथ लगाते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, जल्दी से ठीक हो जाइए। धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी का भी ईमेल आया है, श्रृंगार लखीमपुर खीरी, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से बाबू अंसारी का ईमेल है, कैसे यहाँ प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, नसीम अंसारी, मुन्नन अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता और बाबू अंसारी, राजकमल यादव जी ने भी ईमेल किया है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतेश बहादुर यादव जी, ममता यादव जी के साथ इन्होंने ईमेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये खूबसूरत वक्त बिताकर, स्पेशली त्योहार का दिन। एक बार फिर कहना चाहूंगी आज के इस खास मौके की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। पॉप टाइम को तो वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि 9:58 ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन रजनीगंधा में बहुत जल्द फिर मिलने आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड यस कीप एंजॉयिंग, जय हो।

ममता यादव जी के साथ इन्होंने ईमेल किया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये खूबसूरत वक्त बिताकर, स्पेशली त्योहार का दिन। एक बार फिर कहना चाहूंगी आज के इस खास मौके की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। पॉप टाइम को तो वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि 9:58 ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन रजनीगंधा में बहुत जल्द फिर मिलने आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड यस, कीप एंजॉयिंग। जय हो।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 4,95,00,000 आवास के लक्ष्य के मुकाबले 3,91,00,000 आवास को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्री चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज अम्बेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर महानगर एवं देवरिया के जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिलीप देव पटेल को अम्बेडकर नगर, रामसकल पटेल को वाराणसी, काशीनाथ सिंह को चंदौली, रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगर एवं काली प्रसाद को देवरिया का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलते रुख से भीषण गर्मी और हीट वेव से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और गरज चमक वज्रपात होने की संभावना जताई है। ऐसा होने से तापमान गिरेगा और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम

विभाग ने आगरा, मेरठ, कानपुर, हमीरपुर, बांदा समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
2: रात के खामोश पहर में

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

नमस्कार दोस्तों, रात के 10:06 और ठीक 5 सेकंड्स हो रहे हैं। तेजी से भागते हुए शहर की रफ्तार अब धीमी धीमे थमने लगी है। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब यूं भी वक्त आ गया है थोड़ा सा ठहरने का, थम कर बैठने का और उन गीतों को महसूस करने का जो आज भी आपकी, मेरी, हम सब की धड़कनों में बसे हुए हैं। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति और अब मैं लेकर आई हूं आपके लिए रजनीगंधा के फूलों सा महकता प्रोग्राम, जिसका नाम है, जी हाँ, जिसका नाम भी है रजनीगंधा ही। आज है बकरीद का त्योहार। इस खूबसूरत रात हमारी तरफ से आपको और आपके अपनों को ढेर सारी मुबारकबाद। दुआ है आपके घरों में हमेशा मोहब्बत की रोशनी, रिश्तों की गर्माहट और दिलों का अपनापन बना रहे। तो आइए आज की इस मुलायम महकती रात में आपकी नजर करती हूँ कुछ सदाबहार नगमे, कुछ दिलकश किस्से और कुछ खूबसूरत एहसासात, कुछ महकते जज्बात। तो अगर ऐसे में आपका भी मन करे कि थोड़ी देर यही

कभी कभी बात जगह की नहीं होती, साथ की भी होती है ना? बशीर बद्र साहब ने क्या खूब कहा है, बेवफा रास्ते बदलते हैं, बेवफा रास्ते बदलते हैं, हम सफर साथ साथ चलते हैं। उसकी आंखों को गौर से देखो, उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिर में चिराग जलते हैं। क्यों किसी का साथ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है मानो आसमान में झिलमिल सितारे टिमटिमा रहे हों। ऐसे में दिल कुछ और चाहे तो कैसे चाहे, मन कुछ और मांगे तो कैसे मांगे।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. दस बजकर 19 मिनट और ठीक 47 सेकेंड्स आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा आज ज्योति मिश्रा के साथ।

कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनके आने भर से सब कुछ रोशन सा दिखने लगता है, हर तरफ नूर छा जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है और लगता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आसान हो ही जाएंगी। तेरी मोहब्बत में इतना असर देखा, तेरी मोहब्बत में इतना असर देखा कि तेरे ख्वाबों में ही अब सहर देखा। ये जादू मोहब्बत का होता है या किसी के वजूद का, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला गीत जो आप तक पहुंचा रही हूं वो है 1975 की फिल्म आंधी का। पंचम दा ने इस गीत की धुन को बहुत ही मिनिमल ऑर्केस्ट्रा के साथ कंपोज किया था ताकि शब्दों की नरमी और एहसासों की गर्माहट पूरी तरह उभर कर सुनने वालों के दिल तक पहुंच सके। शायद इसीलिए जब किशोर दा और लता जी ने आवाज दी इस गाने को तो सुनने वालों को आज भी ऐसा लगता है जैसे दो रूहें हमारी रूह से कुछ कह रही हैं। फिल्म की शूटिंग हुई थी श्रीनगर के ऐतिहासिक परी महल में और शायद यही वजह है कि एक तरफ ये गाना नूर की बात करता है और दूसरी तरफ एक अजीब सी ठंडी रूहानी खुशबू हम तक पहुंचाता है।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: आज भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार महबूब खान की पुण्यतिथि है। आन, अंदाज और मदर इंडिया जैसी कालजयी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा को न सिर्फ भव्यता दी, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की सच्चाई और इंसानी जज्बातों की गहराई भी हम तक पहुंचाई। उनकी फिल्मों में गांव की पगडंडियां भी थी, माँ की ममता भी, और टूटते बिखरते दिलों की खामोश कसक भी। अगला सॉन्ग उन्हीं की फिल्म सन ऑफ इंडिया से। हम सब जानते हैं कि जो चला गया उसका वापस आना मुमकिन नहीं, फिर भी जाने क्यों, कभी कभी दिल उसी को ढूंढता है जो हमारे पास नहीं है। हमारी श्रद्धांजलि महबूब खान साहब को। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, अपनी फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए और उस पहचान के जरिए जो उन्होंने हमारी फिल्मों को दी।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. बदकिस्मती को भी ये गवारा न हो सका, बदकिस्मती को भी ये गवारा हो न सका, हम जिस पे मर मिटे वो हमारा हो न सका। वक्त हुआ है 10:36:45 और आप डूब रहे हैं पुराने सदाबहार मदहोश करते नगमों के जादू में, ज्योति के साथ प्रोग्राम रजनी गंधा में।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दस बजकर 41 मिनट और 44 सेकंड्स हो चुके हैं और अब रजनीगंधा में जो सॉन्ग मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं वो है 1974 में रिलीज हुई फिल्म आरोप का गाना। आरोप फिल्म आत्मा राम ने निर्देशित की थी और आत्मा राम जी का नाम अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस किस कनेक्शन में आपने सुना है तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस फिल्म के निर्देशक आत्मा राम हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता गुरुदत्त के भाई थे। फिल्म में विनोद खन्ना, सायरा बानो और विनोद मेहरा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और संगीत दिया था भूपेन हजारिका ने। ये उन बेहद रेयर मौकों में से एक मौका था जब उन्होंने किसी हिंदी फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। जो गाना अब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ नैनों में दर्पण आज भी

इसे एक क्लासिक माना जाता है। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुनकर देख लीजिए। 1974 से आज 2026, लेकिन क्या इस गीत का जादू जरा सा भी कम हुआ? सवाल मेरा, जवाब आप तक, आपके लिए छोड़ती हूँ।

बहारों का ये मौसम यूं ही बना रहेगा। 10:54 हो चुके हैं। इस गीत के बाद एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी रजनीगंधा में। वादे के मुताबिक आपके साथ बनी रहने वाली हूँ मैं पूरे 12 बजे तक। सो स्टे ट्यून्ड।